0: निश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् एकपञ्चाशत्तमे प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्टप्रसंस्करणसंयन्त्राणि सहैव गोबर्धनसंयन्त्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्टप्रबन्धनसम्बद्धानाम् आधारभूतपरियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटिरूप्यकाणां 7 महत्वपूर्णपरियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युद्व्ययं न्यूनीकर्तुम्, ऊर्जासुरक्षां वर्धयितुं, गृहसामुदायिकस्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौरयोजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्माननमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वां राज्यं तथा उत्तरपूर्व क्षेत्रस्य 3वां राज्यं अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारणसेवायाः, सुदृढ अनुशासनस्य, राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चम् औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तन्त्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबन्ध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटलीय सन्देशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः, भ्रमात्मकः, तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्धप्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000-2,000 बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तरप्रदेशे सोत्साहं सोल्लासम् आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृता अस्ति। राज्यसर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षिप्रमुखाणां कृते सञ्चेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतनपरम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट् क्रीडायां IPL क्रिकेट् स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर् द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44,200 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96,100 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया।

0: बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlines that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plant.

0: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2103.5 MHz पर और मीडियम वेव 268.81 मीटर पर ये लाइव ट्रांसमिशन आप समाप्त कर रहे हैं पयाम सुबह, जो सुबह 7:10 से लेकर 11:30 बजे तक इसमें हम आपके साथ रहते हैं। और इस ट्रांसमिशन में हमारा मुद्दा व मकसद ये है कि आपको एंटरटेन किया जाए, बातें हों, मुलाकातें हों, मौसीकी हो, कशर मौसीकी थे अगर आज तम से तम दिल पहलान बस बैठन। आज जैस ईद मनावान और ईद का मतलब है खुशी। एक शायर लिखता है, ईद है तौरीद की, इंजील की, कुरान की, ईद है तौरीद की, इंजील की, कुरान की, ईद है हर दर्द के मारे हुए इंसान की।
1: क्या बात है।
0: ईद का मकसद खुशी का होता है। तो इस नगमे से पहले शबीर साहब हमने खुशी की ही बात की थी, और खुशी तब मिलती है जब सब मिलकर ईद मनाए।
1: बजा फरमाया रिफायत साहिबा आपने, खुशी का माहौल है, ईद मना रहे हैं हम पूरी वादी में, बल्कि पूरी दुनिया में हम ईद मना रहे हैं, खुशी का मौका है। हमें ख्याल रखना चाहिए ये जो हम खुशी मना रहे हैं, इशाक फ़र्ज इस बनान यथ ईद उल अज़हा किस मौके पर इस विषय सरी छा अत खुशी में शामिल कि ना, इशाक फ़र्ज इस बनान।
0: बिल्कुल।
1: और मज़ा आता है जब आप देखते हैं कि हर कोई आपके इर्द गिर्द, आपके हमसाए, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार अच्छे तरह से खुशियाँ मनाते हैं, आपको एक एक, एक, एक अच्छा मतलब महसूस करते हैं आप। वही साधन इसी मतलब बहुत पे जाए बहुत मनान आज ईद असल पे यह मतलब सबक दिवान अस ईद कि मनु तुम पान खुशी बांटो यह खुशी।
0: बिल्कुल।
1: खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं।
0: सही बात है। और गम बांटने से कम
1: हो जाता है। बिल्कुल
0: सही छुते वन वो जन लक ईद आसान तथ मज ये हल्क डिफरेंस ये कि सोचा इस मोबाइल निताम महदूद हो।
1: बिल्कुल।
0: मोबाइल का इस्तेमाल करके ईद मुबारक कह दिया, मैसेज डाल दी, बस हो गया हमारा फर्ज पूरा हो गया। और इस ईद हमें किसी हद तक जाने का मौका मिलता है, जहाँ जहाँ कुर्बानी हो वहाँ जाना पड़ता है, बांटना पड़ता है रिश्तेदारों को, हमसायों को। तो क्यों ना इस रवायत को हम आम करें आगे भी इसी तरह से, जो हमारे रिश्ते अब खोखले पड़ते जा रहे हैं उनको हम जिंदा करें।
1: बजा फरमाया रिफत साहिबा, वही मैंने भी किया।

0: अर्ज किया मैंने वही कि ईद उल अज़हा हमें सिखाता है कि आप खुशियां मनाओ, एक तो खुद मनाओ और अपने अपनों के साथ भी मनाओ, अपने दोस्तों के साथ मनाओ, अपने रिश्तेदारों के साथ मनाओ। यू अक्स मौके मिला इत तो फरमो कि अच्छ मिला ये वहर अख मौक पे रिश्तेदार निश गस पे यार दोस्तों सत समखनस और सबसे अहम बात हमें गले लगने का मौका मिलता है। बाकी जब हम आप खुद देख लो रिफत साहिबा, जब हम किसी फ्रेंड के साथ मिलते हैं मतलब ईद उल अज़हा को छोड़ के सलाम दुआ होती है, हैंड शेक होता है ओनली, वहीं तक लिमिट रहता है कि हैंड शेक हो जाता है, सलाम दुआ तुझो सीख से अच्छा सीख सलाम अलैकुम। लेकिन जब ये मौका आता है ये अल्लाह ताला सिन तरफ़ नियामत ऐसी वान और हमें अच्छे से इसको लेना चाहिए और अच्छे से लेना यही है कि ये साथ ब्रोह कुन यमान इवन अपना भाई गरस में अगर भाई होते हैं वो भी गले नहीं मिलते हैं बाकी दिनों में।
1: सही बात है।
0: और जब ईद का मौका आता है हमें अपने भाई के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ दोस्तों के साथ गले मिलने का मौका मिलता है और यानी ये दिल तो दिल छुट रलान और खुशियाँ भर जाती हैं, ये अच्छ वनान खुशियाँ प्यार बांटते चलो, खुशियाँ बांटते चलो। यो मौका सबक से हेचनवा ईद ईद उल अज़हा खसूस कि तुम करो वजह फरमो तो कि ईद ईद उल फितर इस लकट ही दस वन सह रोजान लिमिटेड टू अस हदस तान यीत आल बनम फोन से पे वह जान सी वह फोन से पे कर ईद मुबारक मे आई आज फुर्सत क्या बह बम कल क्या बहुत वह हफ्तन ग मगर ये जो ईद उल अज़हा का ये मौका मिलता है हमें अल्लाह ताला की तरफ से यह नियामत मिचमुच खुश नसीब और ये हमें इसमें हमें मौका मिलता है अपने रिश्तेदारों के पास जाने का क्योंकि यीशु त्रेन ईजन तो वात आपको जाना ही जाना है अपने रिश्तेदार के पास अपने भाई बहन के पास पहुंचाने के लिए ये तबरुकात।
1: सही बात है। और देखिए अगर ऐसे मौके मिलते हैं तो हमें इन मौकों को खोना नहीं चाहिए। वैसे भी आजकल लाइफ जो है हमारी बहुत ही बिजी हो गई है, बीच इस न्यूक्लियर फैमिली में रोजा प्रेफर करा हम लोग की न्यूक्लियर फैमिली मजी, वो जो कल्चर था हमारा जॉइंट फैमिली कहीं कहीं पर है आज हाँ, भी हाँ। है लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हम न्यूक्लियर फैमिली को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन ईद के मौके पर हम फैमिलीज मिलकर पकाते हैं,
0: बिल्कुल
1: जॉइंट फैमिली बन जाती है। अगर कोई कहीं पर रहता है कोई कहीं पर रहता है तो इस मौके पर ये मौका हमें इकट्ठा करता है, एक दस्तरखान पर बैठ के हम सब मिलकर खाना खाते हैं, महफिलें होती हैं, बातें होती हैं, तो इससे भी रिश्ते मजबूत होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है ईद का जिससे हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं क्योंकि सारी खुद इम्पोर्टेंट उस चीज़ जो सोचो इंसान है कि कौन जोन कहीं कस करे थन वन मैन आर्मी छन को नहीं जाए
0: दुकान
1: के बह कर सोरी चीज़ कर बह पाने इंसानस समाज मज रोज समाजी लवाजमात पूरे रिश्ते पानस सत पकना क्योंकि रिश्ते जो करीबी रिश्ते होते हैं वो बिल्कुल आपके हाथ पांव जैसे होते हैं, जैसे आप हाथ पांव का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आप अपने रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी परेशानी में तकलीफ में दिक्कत में होते हैं। तो मुझे लगता है कि ईद एक बहुत ही नेमत वाला अजमतों वाला दिन है जो हमें इकट्ठा करता है, हमें जोड़ता है, परिवारों को जोड़ता है।
0: बजा फरमाया रिफत साहिबा आपने यही यूहे फलसफ शौक ईज हुंद की हिचनावा कि कित पर रुजू तो मिल बांट के कैसे रहना है आपको और खुशियाँ कैसे आपको बांटनी है, यही फलसफा अगर हमें समझ आ जाए तो मुमकिन बजा फरमाया आपने कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली यम चीज बनान ना तेल कहीं अगर अमुक यह फलसफ समझो ईज हूँ यम चीज रोजन तेल कहें ना रोज ना दूर अस अक्स नश तो ना करो ना गि अस मज नफरत पद हम बिल्कुल जो ये जो पूरी दुनिया बिल्कुल ये रोज फ्लो अख रोज प्यार मोहब्बत का फ्लो बनता रहेगा अगर अमुक फलसफ समझो तो अपनाओ।
1: सही कहा आपने। अब आजकल के दौर में हम ये भी कह सकते हैं कि हम बहुत बिजी हो गए हैं, सही बात है, इंसान को अपने वक्त के हिसाब से ही जीना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का हम ख्याल रख सकते हैं। जहाँ हमें इतनी बड़ी दुनिया है, आज हर एक इंसान परेशानी में मुबतला है, किसी को रिज़्क की परेशानी है, किसी को बच्चों की परेशानी, किसी को कोई और सेहत की परेशानी है, तो इससे छुटकारा पाने का एक बेहतरीन जो एक ज़रिया है वो ये है कि आप उन लोगों के करीब आ जाएं जिनसे आपको खुशी मिलती है।
0: बजा फरमाया
1: जब आप آپ کا دل خوش ہوگا، آپ کا دل مطمئن ہوگا، تو آپ کے سارے کام صحیح سے انجام پائیں گے۔

0: खुशी पाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम चाहें तो हम छोटी छोटी चीजों में भी खुशी को तलाश कर सकते हैं। जैसे यही मौका, ईद का मौका एक बहुत बड़ी खुशी देता है।
1: वजह फरमाया रिफत साहब आपने शुना सो इंसान सुन दिल चु तेली असान गिंदान नचान तो गवान तम सुन दिल आस खुश तेल सुम चीज कर अदरवाइज वो जो पहली बात आपने की मतलब बांट के चलना है मैं मिल बांट के न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली उसमें एक चीज मैं ऐड और करना चाहूँगा ये साथ कह तो खुशी असान हेको ये कुन सी जन ये कमिस खुश ये कमिस वनो गम ये कमिस वनो जब तक आपके पास कोई दूसरा बंदा नहीं होगा आप साथ ही ना होगा आपको उसके बगैर अपनी अपनी फील अपनी फीलिंग्स आप शेयर नहीं कर सकते, पता ही नहीं चलेगा किसी को कि आप गम के अंदर हैं या खुशी के अंदर। और यीशु तो तेली मेला मौके जब आपके पास कोई कंपनी होगी आपकी किसी कंपनी में आप उठते बैठते हैं मेन चीज फैमिली हूँ पुन सात तथ मू पैमिली सत असल पे खलूस सान बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ चलते हैं अपने यारों दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ गरिश फैमिली गति तुम इजहार हेक गमुक तथा गमुक इजहार करा आपका गम कम हो जाता है। और जब खुशी का इजहार करते हैं तो आपकी भी खुशी बढ़ जाती है और आप जिन तक ये फीलिंग पहुँचाते हैं उनकी भी खुशी बढ़ जाती है।
0: सही बिल्कुल موسیقی تک اصل ذریعہ یمہ سنس خوشی ملان
1: بے شک।

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। समीन यही हमारा भी मकसद है और यही हम भी कहते चला रहे हैं और अपने सामाइन को बताते चले कि अभी आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। और जिन सामाइन ने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है उनके लिए हम बताते चले कि आप जुड़ चुके हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह के साथ और इस वक्त सुबह के 7:31:40 हो गए हैं। मैं हूं आपका मेजबान शबीर खान और मेरे साथ हैं रिफत आरा। रिफत, खुशी हो गई, बहुत हमने मनाई और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो समीन है उन्होंने भी कल से मना रहे हैं खुशी और इंशाल्लाह आज भी मनाएंगे, कल भी मनाएंगे। यहाँ पर एक पिछले कई दिनों से एक बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ।
1: जी जी।
0: वो बात ये है कि मैंने सोचा कि ये हम अपने समीन तक बताएं कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि भाई सपना देखते हैं कुछ बड़ा करने का।
1: जी जी।
0: फिर रुक जाते हैं कि कैसे किया जाए ये सब। उसने इतना कमाया, वो इस पोजीशन पे पहुंच चुका है, वो इस पोजीशन पे पहुंचा है, हम क्या किया जाए कि हम भी इस पोजीशन पे पहुंचे,
1: मतलब हम कामयाब कैसे,
0: हम कैसे कामयाब
1: हो? कामयाब लोगों की जिंदगी में हमें अगर हम देखें हमें ये सिखाते हैं कि कामयाबी अचानक नहीं मिलती।
0: बिल्कुल, उसके लिए बहुत कुछ हमें करना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: ईशन कहाँ बता इस वनों इस पर कि अच्छा बोर का चीज सो पाल छ फिर पहाड़ से फिर तो अति मिले से कहाँ कामयाबी बहुत सारी, मगर अत में क्या हल्क क्या आदत अगर इस यम अपनाओ अगर हम उनको अपनाएंगे तो हम कामयाबी हमारी कदम चूमेंगे। सबसे पहले उसमें आता है रीडिंग, मुताला जिसको हम कहते हैं। वो कहा जाता है कि जब हम रीडिंग करेंगे, जिस तरह हम सुबह अपने आप को खाना देते हैं, ब्रेकफास्ट में हम लेते हैं कुछ, मतलब खाली में सुबह वथान करान ब्रेकफास्ट,
1: सही बात है।
0: इसी तरह हमें दिमाग के लिए भी कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए। मंज ग मोबाइल फोन गसान हैंग करान रिस्टार्ट या रिफ्रेश करान यह गसान बूट यह चलान बी नॉर्मली। इथे पेट जब हम अपने दिमाग को मुताले की गजा देंगे, पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन ग्रैब करेंगे सुबह सुबह जब भी हमें टाइम मिलेगा, दिमाग के लिए एक ये नशो नुमा बनता है, मतलब यह गजा बना दिमाग के खतरे जो अपडेटेड रोजाना दिमाग। और यही मकसद है कहने का मेरा कि गॉडलुक चीज मुताला यानी इस पढ़ो किताब पढ़ो, इस जहां भी हमें जो भी कोई हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किताबों के जरिए मोबाइल फोन के जरिए जहां से भी वो हमें ग्रैब करना है।
1: सही कहा आपने, देखिए मुसलसल मेहनत नज्म ज़ब्त और नाकामियों से सीखने के बाद ही इंसान को कामयाबी हासिल होती है। शबीर, आपने देखा होगा कि दुनिया के तकरीबन हर कामयाब इंसान ने मुश्किलात देखी हैं मगर हिम्मत नहीं हारी।
0: बिल्कुल।
1: आपने मुताले की बात की तो बहुत और चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये कि हम उन लोगों को फॉलो करें जिन्होंने कामयाबी हासिल की।
0: बिल्कुल।
1: बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं हमारे पास जो लोग बहुत ज्यादा कामयाब हुए, जिन्होंने न सिर्फ अपने वालिदैन का बल्कि मुल्क व कौम का नाम रोशन किया।
0: बिल्कुल।
1: कुछ चीजों को उन्होंने अपनाया।
0: बिल्कुल।
1: जैसे आपने कहा कि रीडिंग एक अच्छी आदत है, मुताला करने से हमें बहुत सारी अच्छी आदतों हम में ढल जाती हैं, अच्छी आदतें, और अच्छी आदतों के साथ साथ वक्त का भी ख्याल रखना पड़ता है, मेहनत बहुत ज्यादा दरकार होती है, एक डेडिकेशन चाहिए आपको अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। तो कामयाबी कुछ मांगती है, आपका वक्त मांगती है, आपकी डेडिकेशन मांगती है, और अगर आपको इल्म हासिल करना है, कहते हैं कि अगर आपको इल्म हासिल करना है तो उसके लिए आपको मुताले की जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: मुताले से ही आपको
0: इल्म हासिल हो सकता है। बिल्कुल।
1: और जब आप में इल्म आ जाता है,
0: बिल्कुल,
1: जब आप हर एक चीज को समझने लगते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो आप जाहिर सी बात है आपका जो पहला कदम होता है वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा होता
0: बढ़ने लगता है। बिल्कुल सही बात है।
1: बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है और बहुत सारे लोग हैं और जिन्होंने एक मिसाल कायम की। अगर हम ये देखें कि APJ अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने बचपन में ही एक मोटिव अपना बनाया था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है।
0: बिल्कुल।
1: तो कितनी उनको कामयाबी हासिल हुई, लेकिन उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की।
0: सही।
1: मेहनत बहुत ज्यादा दरकार है कामयाब होने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: आजकल क्या हम देखते हैं, आजकल हम शॉर्टकट्स की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल, बेशक
1: हम शॉर्टकट्स की तरफ जाके हम कहते हैं कि ये हमारे लिए

0: आसान रास्ता होगा और हमें इस पॉइंट पे हमें कामयाबी मिल जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर हम थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा देखें कि क्या ये रास्ता हमारे लिए सही है, अगर हम इस रास्ते से जाएं तो क्या हम उस मंजिल को पा सकते हैं जो हमारा मकसद है, और क्या वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा कि नहीं, इस पर सोचने की जरूरत है।
1: सही वजह फरमाया रिफत साहब आपने। अगर हम बात करेंगे इसी पर, मैं आपने जो फरमाया उस पर एक और बात ऐड करना चाहूँगा। ये केरला का एक सिक्योरिटी गार्ड था
0: जी जी,
1: ये न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने, मतलब बहुत पहले। वो सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ पर, शाम के वक्त वो मुताला करता था, किताबें पढ़ता था, इन्फॉर्मेशन ग्रैब करता था रात के वक्त
0: जी जी जी
1: ड्यूटी के बाद। आज उसकी पोजीशन क्या है, उस मुताले का फायदा उनको क्या हुआ है, आज वो असिस्टेंट, आज वो प्रोफेसर है, कॉलेज के प्रोफेसर है, एक सिक्योरिटी गार्ड। अगर दूसरा बंदा उसको, मतलब जिसने उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते देखा है, आज की डेट में वो बोलने लगेगा, वो बोल भी सकता है भाई इसने ये कैसे पहुंच गया वहां पे।
0: जी जी जी, जी।
1: लेकिन उसकी जो डेडिकेशन है, उसकी जो मेहनत थी, उसने मुताला किया रात के वक्त, वो कोई नहीं बताएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं किसी को। मगर वो छुपा रुस्तम निकला, हम ऐसा कह सकते हैं। मगर उसने इतनी मेहनत की, मुताला किया, ताकि वो आज वो जिस मकाम पे है उस मेहनत की वजह से है, जैसा आपने भी फरमाया अभी, मुताले की वजह से वो उस मकाम पे आज पहुंचा है। दूसरी बात, वंचन पारणियोत की, हमें इसमें एक डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन की जरूरत है। डिसिप्लिन ये नहीं है कि हमने अपने लाइफस्टाइल को, अपनी जिंदगी को जेल बनाना है, अशीत पेट करो ना, आज ये मिशु गसुम अश बच शिवान स्कूल सुबह गो तिरंता वो स्कूल त्रे बज को ट्यूशन चोर बज को दर्ज गए, मतलब मिशो सही जेल असुम बन जो डिसिप्लिन, ये हमें सिखाना है उनको, ऐसा ही करना है। हमने अपने आप को जेल नहीं बनाना है, मतलब अपनी जिंदगी को जेल नहीं बनाना है। अश करुण कम अश अख डिसिप्लिन बनाऊन, अगर हमने एक काम करना है अच्छा टाइम खुद टाइम अख्तूम, हमने एक टाइम रखा मुकर टाइम, ये मुझे 5 बजे सुबह उठकर करना है।
0: बिल्कुल,
1: ये डेली करना है। ये सुन आज में मूड या आज में निंदर, आज मैं सोना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, कल देर तक मुझे नींद नहीं आई, मैं सोना चाहता हूँ,
0: वक्त का सही इस्तेमाल करना।
1: हाँ, नहीं, एक तो हो गया वो वक्त का सही इस्तेमाल करना, दूसरा ये है कि डिसिप्लिन उसको बोलते हैं जो हम कंटिन्यूसली एक चीज को फॉलो करते हैं, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं हम। यानी कि आज दुश्मन ये काम पगह थी कल, अगर मेरा मूड हो ना हो, मुझे करना ही करना है, मैं कौन पे काम त्रावन मिशी की इशू डिसिप्लिन। सुबह शिनार दुकानदार शिनार एमिश आसान रूटीन रूद आ शीन आ
0: शिनार
1: मजूर शिनार मजूर ये जाता है एमस जो सी डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज वर्क, ये एमस अख कामयाब इंसान बना।
0: सही बात है,
1: इसी का नाम है डिसिप्लिन।
0: बिल्कुल सही छुट्टी वाला नहीं, लाइफ में मसाक डिसिप्लिन छुईवान हम कामयाब हो ही जाते हैं। लेकिन इसमें आपने बहुत अच्छी बात यही कही कि हमें वक्त का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अगर इस सुबह नस यवान के ये टाइम इस बनो इस करो 5 बजे वो इस पद करो एक्सरसाइज, मिसाल ये एक्सरसाइज एक दो कारण की ये हमें कंटिन्यू करनी है, तब जाके हमें ये एक्सरसाइज भी फायदा देगी।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह से और कोई काम हम करते हैं, कहते हैं आज हम करेंगे, चलिए आज हो गया, अब कल हमारा वो मूड नहीं रहता है, तो अपने मूड को भी बरकरार रखना है। मुस्तकिल मिजाजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मुस्तकिल मिजाज इंसान ही कामयाबी के जीने चढ़ता है। जब तक आप में डेडिकेशन ना हो, आप वक्त के पाबंद ना हो, आपको अगर कोई चीज अचीव करनी है, कोई आपका गोल है कि मुझे इस तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको नाकामी भी मिलेगी, किसी मोड़ पर आपको नाकामी मिलती है, लेकिन वही नाकामी आपके लिए कामयाबी का सबब बनती है, उसी नाकामी से आप सीखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सारे ऐसे हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो पहले नाकाम हुए, लेकिन नाकामी से ही उन्होंने सीखा कि वो उस मकाम पे पहुंचे जहां कभी इंसान सोच भी नहीं सकता कि इस मकाम पे ये शख्स गिर गया, फिर इसने अपने आप को संभाला, फिर ये उस मकाम पे चढ़ गया जहां पूरी दुनिया ने इसको जाना।
1: वजह फरमाया रिफत साहब आपने, इसी का नाम है, अगर उसने कभी फेलियर फेस किया होगा, किसी भी बंदे ने भी, हम सब फेलियर फेस करते हैं जब हम किसी मंजिल की तरफ जाते हैं, पहले फेलियर फेस करते हैं, उसके बाद ही कामयाबी का सिला हमें मिलता है। अगर हम फेलियर देखते रुक जाते हैं, अपना डिसिप्लिन खराब करते हैं, हमारी जो डेस्टिनी है, हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर फेलियर हम फेस करते हैं, लेकिन हमारी जो डेडिकेशन है, हमारा जो डिसिप्लिन, जो मैंने आपको अभी बताया कि अश सुबह 5 बजे उठना, ये काम हमने करना है, मूड हो ना हो, हमें फेलियर भी फेस करना पड़ा है पहली बार, लेकिन अगली बार इंशाल्लाह अच्छा होने वाला है। लेकिन तभी होगा जब हम दोबारा कोशिश करेंगे, अपना हर्ट नहीं होंगे इस फेलियर से,

समीन आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पायामी सुबह। इसमें आप 8:45 पर सेहत से मुतलिक कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की तरफ से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम समाप्त करेंगे 8:45 पर। शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर का तैयार करदा प्रोग्राम शहर शहर मंजर आप तक पहुंचेगा 9:30 पर। प्रोग्राम सूफी सदा हर रोज की तरह आज भी 10 नश होगा। आज के प्रोग्राम में मारूफ सूफी शायर सनाउला क्रीरी से मुतलिक बात होगी।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग दे जिमा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशिद सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज। सुबह के 8 बजने वाले हैं समीन। अब हम आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप समाचार सुनेंगे।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी।

0: ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया।

0: और तीसरा फैसला टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
3: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
4: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का

0: पंद्रहवा और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है, ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सामिन, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2103.5 MHz पर और मीडियम 268.81 पर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी सुन सकते हैं। शबीर सर, आज जैस ईद मनावा।
3: बिल्कुल,
2: ईद हिंद मौकस पर गच्छे ईद रुफ जरूरी आसो।
3: बेशक, योतान ईद रुफ रेडियोस पर बोजो ईद तो तान छन ईद बासा के।
2: बिल्कुल।

0: नवीन, हम बात कर रहे थे कामयाब लोगों की ज़िंदगी के राज के हवाले से, जो हम वक्त की कमी की वजह से आप तक पूरा पहुंचा नहीं पाए, समेट नहीं पाए उस टाइम। तो हमें इस वक्त थोड़ा सा टाइम मिल गया है आप तक पूरी बात पहुंचाने का। तो पूरी बात यह है, तो हमने बात की थी मुताले की, उसके बाद हमने बात की डिसिप्लिन की, और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी चीज़, वो है सब्र। सब्र जब तक हमारे पास है, तब तक हम किसी भी चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। यानी कोई भी हर्डल हो, हम टैकल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पेशेंस। पेशेंस आपके पास है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सुच कहावत आशुतोषु बुजमुत या आम तौर से बनानिए द पंचो, जब आपने सुना होगा कि पानी पत्थर को काटती है, इम साथ अख नलकस छुआ था आब टुक टुक किस कैनी पेट छुआ था, वो बूंद जो गिर जाता है वो छेद करता है, सुचु अख गोद कराना अथ कैने, यानी अख मोमूली कोशिश आब कतर कूत आसा। यही मिसाल है एक सब्र की। मिसाल है सब्र सान कह चीज़ करो, यानी हल्क मेहनत रोजो करान, मगर कंसिस्टेंसी मेन चीज़, डिसिप्लिन। तथ सुच पत उस पर रंग देता है सो वो सब्र। मगर हमारा जो रिफल साहिबा, आज का जो आज की जो दुनिया है, आज का जो माहौल है, एआई का ज़माना आ गया है। क्लिक करान अति आसन चीज़, यह गई आसन एटेंटिव अति कह मे बसा ब्रो कु वा सू चीज़ कि असो बिहित असन रोबोट्स ब्रो कम ब्रो कमो बटन अमस दबो चल हु चान यह पान बिहन कि पान पत्थर बिहन करना रोबोटन सोरे कह। ऐसा ही कुछ दौर आज कल भी देखने को मिल रहा है कि अच्छे क्लिक कर ब्रो कु चीज़ आसन हाजिर करो कह इनफॉर्मेशन ग्रैब कर नेटस पा कर क्लिक इनफॉर्मेशन अत खर मेहनत कर पान वथान अत ख मेहनत कर कह सू चीज़ अगर मेहनत ये सात करो तथ सब्र जरूरत सब्र ये करो तेल हम पन कामयाबी हिज वथ प्रवित।
1: बिल्कुल, सब्र और शुक्र से नेमतों को बढ़ाया जाता है। अल्लाह बहुत खुश होता है अगर आप सब्र करते हैं किसी चीज़ पर। कोई तकलीफ हुई आपको तो आपने सब्र किया और उसके साथ साथ आपने शुक्र भी अदा किया अल्लाह का कि आपने हमें इस चीज़ के लिए नवाजा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हल्की सी भी खरोच आ जाए तो वो बिल्कुल तड़प उठते हैं, वो अपनी जिंदगी को जीना छोड़ देते हैं। लेकिन सब्र और शुक्र करना बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़ में। अगर आप कामयाब ज़िंदगी चाहते हैं तो सब्र आपको हर एक मोड़ पर करना ही चाहिए। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हमारे कुछ दोस्त हमसे मिलते हैं, हमें अच्छी नसीहत करते हैं, मगर अच्छम सो नसीहत बोन कुन वसान किन अच्छे वन वन लोग पन दंदर ऐसे वन पन दलील वन। हमें एक आदत हम में पनप गई है कि हम बोलना चाहते हैं लेकिन सुनना बहुत कम चाहते हैं। सुनने का जो सब्र है वो हमें नहीं है। कह नसीहत कर बसान कुन सात दपान है वह क्या बोन बह क्या बोज अमिस गुजरमुत तो गुजरमुत लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी एक्सपीरियंस भी बयान कर रहा होता है। तो इसलिए सब्र बहुत ज़रूरी है। और कोई अगर आपको डीमोटिवेट कर रहा है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो आपका मकसद है, तो उस पर भी सब्र कीजिए और अपनी मेहनत जारी रखिए। एक ना एक दिन आएगा जब आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक डिसिप्लिन लाइफ में इख्तियार किया, वक्त के पाबंद रहे, सब्र किया, कंसिस्टेंसी रखी, तभी आप उस मकाम पर जा पहुँचेंगे।
0: क्या बात है, बजा फरमाया रिफत साहब। आपने एक मिसाल देना चाहूँगा मैं अपने समयन तक, उसके बाद हम इनके लिए एक प्यारा सा कश्मीरी नगमा पेश करेंगे। सोश ये मिसाल आपकी, ये मैं आँखों देखा है। मेरा एक बंदा है मेरी पहचान का, वो एक दुकान चलाता था, मतलब यहाँ से ग्रोसरी स्टोर से बनान, ग्रोसरी स्टोर बहुत बड़ा होता है। तेम सो कश्मीर में लकुट किरियान दुकान अख, वो दुकान पर बैठता था, इतने सब्र के साथ पाँचों टाइम नमाज पढ़ता था, हल्की फुल्की मतलब तीचा कम तो कहीं, मगर पाँच छः साल उसने वहाँ पर सब्र किया। जो हमने बात की कंसिस्टेंसी, यानी सो कंटिन्यूसली दुकान खोलान, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, सुबह वाता बराबर 10 बजे तो या 9 बजे, तमें पतन पाँच वक्त नमाज, चाहे खरीदार सो त्रावान शटर वो बंद करके रखता था नमाज के टाइम, यानी कंसिस्टेंसी। उसके बाद सब्र, यानी बैठा था वो अपनी दुकान पे, कमाए कुछ ना कमाए, कम कमाए ज़्यादा कमाए, बैठा रहता था। उसके बाद एक दिन आ गया, मैं कह रहा हूँ कि मेरा आंखों देखा है, एक दिन आ गया उसको एक इतनी अच्छी ऑफर आ गई, तेम सुंद सब्र छो वो रंग लाया, तेम सा ऑफर सुच लॉजिस्टिक कंपनी से ऑनलाइन कर डिलीवरी तथ मज सज मैनेजर, आज की डेट में वो मैनेजर है और 1 लाख तक उसकी सैलरी है। ये उसकी डेडिकेशन,

उसकी मेहनत, उसका जो मुताला है, प्लस डेडिकेशन, प्लस सब्र, ये सब चीज़ें जब हम मिलाते हैं उसके बाद ही एक बंदा, एक इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ता है। यही हमारा मकसद है आज के टॉपिक का। और अब हम अपने समय को एक प्यारा सा कश्मीरी नगमा सुनाएंगे।

0: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज 8:30 हो रहे हैं और आप इस वक्त जुट चुके हैं पयाम सुबह की लाइव नशरियात के साथ और ये समय हो चला है खबरों का। आइए समाचार सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के साथ अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुक्काम से बैन-उल-अक़वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाली मशरकी हिस्सों में अगले 2 दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। आज पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा का त्यौहार जोशो-खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने

0: स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमल आवरी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे है। असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकत दारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोवर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में रफ्तार लाएं। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवेज, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने शहरी इलाकों, खासतौर पर शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफ टॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि वाधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहां हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक इको निज़ाम के साथ मजबूत किया जा सके। वजीर आजम ने दरिया को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट के इन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तआवुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निज़ाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हुकाम को हिदायत दी है कि मुल्क की सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गैरकानूनी तामीर के सिलसिले में कतई अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाएं और गुज़िश्ता बरसों में तामीर किए गए ऐसे तमाम ढांचों को मुनहदम कर दिया जाए। बीकानेर में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद के करीब राजस्थान के सरहदी जिलों में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। वजारत दाखिला ने जिला मजिस्ट्रेट्स को यह इजाफी जिम्मेदारी सौंपी है कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि सभी बैंक सरहदी इलाकों में बैंकिंग ट्रांजेक्शन की कानूनी और माली तकमील करें, बड़े कारोबारी कंपनियों की तस्दीक करें और उनके मालियाती जराए का पता लगाएं, फर्जी खातों यानी म्यूल अकाउंट और कंपनियों का पता लगाएं, फर्जी आधार कार्ड की शनाख्त करें और सरहद पार स्मगलिंग को रोकें। एक बयान में वजारत दाखिला ने कहा है कि सरहदी जिलों को हिदायत दी गई है कि वह जराइम और मनशियात की स्मगलिंग के जराए, तौर तरीकों और नेटवर्क का गहराई से जायजा लें और इस हतमी हल तलाश करें ताकि सरहदी इलाकों में इस तरह के मसले फिर से पैदा ना हों। मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर मौसूफ अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में अवामी सहूलियात से मुतालिक खिदमात, तालीम और देही बुनियादी ढांचे के तकरीबन एक दर्जन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला गांधीनगर की कलोल तहसील से अपने दौरे का आगाज करेंगे और कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के इकदामात के तहत तैयार की गई अवामी सहूलियात को वक्फ करेंगे, जिनमें जेठवा गांव की झील, नौ तामीर शुदा 3 लाइब्रेरियां और प्राइमरी स्कूल की नई इमारतें शामिल हैं। शाम को जनाब शाह अहमदाबाद में प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और 16 और भीमजीपुरा भारत माता स्क्वायर, माता उमिया धाम कॉम्प्लेक्स के हॉस्टल की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वजीर दाखिला आइंदा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी का जायजा लेने के लिए शाही बाग सर्किट हाउस में एक आला सतही मीटिंग में शिरकत करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
0: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबिना कमेटी CCEA ने PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान काबीना के फैसले से मुतालिक ये ऐलान किया।
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो

0: वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा या बकरीद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में ईद की खसूसी नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुनक़िद हो रही है। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहिम की उस अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है जब वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त और वसी इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ये त्यौहार खुद को वक्फ करने, ईसार और बेलौस जज्बे की अलामत है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि ये त्यौहार मुल्क के शहरियों को खास तौर पर माली तौर पर कमज़ोर अफराद के लिए इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत करने की तलकीन करता है। उन्होंने अवाम से माशरे में मोहब्बत व इत्तेफाक को फ़रोग़ देने के जज्बे को मुस्तहकम करने की अपील की। उत्तर प्रदेश में ईद उल अज़हा का त्यौहार पूरी रियासत में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इंतजामिया ने आज बकरीद त्यौहार के खुशुसलूबी से मनाए जाने के तनाजुर में बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लोग नज़दीकी मसाजिद में ईद उल अज़हा की खुसूसी नमाज अदा कर रहे हैं। फरीज़ा कुर्बानी नमाज के बाद अदा किया जाएगा। रियासती सरकार ने किसी भी नई रिवायत के शुरू ना होने और ममनू जानवरों की कुर्बानी ना होने देने को यकीनी बनाने के लिए पहले ही सभी जिला पुलिस सरबराहान को एडवाइजरी जारी की हुई है। DGP राजीव कृष्ण की हिदायत के बाद त्यौहार को पुरअमन तौर पर मनाए जाने को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने हसास इलाकों में मार्च किया। पुलिस कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे हस्सा शहरों में मजीद निगरानी बरत रही है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमुना।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटॉक के पलजोव स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के बावकार पुलिस कलर से सरफराज करेंगी। सिक्किम ये अवार्ड हासिल करने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शिमाल मशरक की 3री रियासत होगा। सदर की पुलिस कलर मुल्क में पुलिस फोर्स की गैर मामूली खिदमात, ज़बरदस्त नज़्म व ज़ब्त और कौम के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ होने के एतराफ़ में दिया जाने वाला आला तरीन एजाज़ है। SSP सतह के अफसर की क़्यादत में 400 सिक्किम पुलिस एहलकारों का दस्ता सदर जमहूरिया की मौजूदगी में परेड में हिस्सा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खसूसी पहल के तौर पर यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम सांची स्तूपा के मुकद्दस बाकियात को मंगोलिया भेजा जा रहा है। ये बाकियात भगवान बुद्ध के दो अहम पैरोकार सरीपुत्रा और मोदगलियाना से ताल्लुक रखते हैं। आज इन बाकियात को पूरे एजाज के साथ भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से दिल्ली भेजा जाएगा। कल ये बाकियात आवाम के लिए नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे जाएंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय फजाइया का खसूसी तैयारा उन्हें मंगोलिया लेकर जाएगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ से वाबस्ता ज़राअत मुहिम मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस 2026 का इफ्तिताह करेंगे। दो रोज़ा प्रोग्राम में ज़राअत और मुतालिका शोबों से मुतालिक मौजूआती तबादला ख्याल, रियासतवार शराकत, ग्रुप गौर वखोस जैसे अहम मामलात शामिल होंगे। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकसद पायदार ज़राअत, पैदावार में इजाफा, आबो हवा में लचक है, बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने और किसानों की खुशहाली पर तवज्जो मरकूज करते हुए आने वाले खरीफ सीज़न से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर वखोस किया जाएगा। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से मरकज़ी हुकूमत, रियासती सरकारों, ICAR, ज़रई इदारों और दीगर मुतालिका फरीकों को खरीफ सीज़न के लिए मरबूत कार्रवाई और कलीदी तरजीहात पर तबादला ख्याल के लिए यकजा होने का मौका फराहम होगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि मरकज़ी और शमाल मगरबी भारत में अगले दो रोज़ के दौरान शदीद गर्मी और लू के हालात रहने की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में आज शदीद गर्मी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज तेज से बहुत तेज़ बारिश की भी पेशगोई की है। مغربی بنگال حکومت نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر چوکیاں بنانے اور خاردار باڑ لگانے کے بنیادی ڈھانچے کے قیام کے لیے 142.79 ایکڑ اراضی

0: ईएसएफ के हवाले कर दी है। यह हवालगी बीजेपी हुकूमत के इस फैसले का हिस्सा है जो 11 मई को काबीना की पहली मीटिंग में किया गया था, जिसमें सरहद पर बाड़ लगाने और मुतालिका बुनियादी ढांचे के मंसूबों के लिए 45 दिन के अंदर अंदर 600 एकड़ जमीन की मुंतकली की गई थी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने हैदराबाद की एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी कोएम्ट एडुटेक को इम्तहानात की कॉपियां जांचने का कॉन्ट्रैक्ट देने से मुतालिक इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीबीएसई ने कहा कि इल्ज़ामात गलत, गुमराहकुन और हकायक पर मबनी नहीं हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 244 रन का निशाना रखा था, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 19 ओवर्स और दो गेंदों में महज 196 रन ही बना पाई। नॉर्वे चेस के तीसरे राउंड में भारत के आर प्रगनंदा ने आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कैर्सलेन को शिकस्त दी और इस तरह उन्होंने 3 पॉइंट्स हासिल किए। इस जीत के बरक्स आलमी चैंपियन डी कोकेश को एलरिस फिरोजिया ने शिकस्त का सामना करना पड़ा। सख्त मुकाबले में हुए ड्रॉ के बाद फाइनल गेम में उन्हें इस हार का सामना करना पड़ा। प्रगनंदा अब कुल 4.5 पॉइंट्स के साथ नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में दूसरे मकाम पर पहुंच गए हैं और वो सिर्फ फिरोजशाह से पीछे हैं, जो 7.5 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। अफ्रीका और अब अखबारात के आईने के साथ हैं नितिका।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के एसआईआर अमल को दुरुस्त और आईनी करार दिया। मुल्क में शदीद गर्मी के दरमियान वजीर आजम की शहरियों से मुहतात रहने की अपील से मुतालिक खबर को भी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, शदीद गर्मी और हीट वेव के दरमियान वजीर आजम की शहरियों से तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। आज मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाए जाने से मुतालिक खबर को तमाम अखबारों ने अव्वलियत के साथ शाई किया है। अखबार प्रताप की सुर्खी है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हमवतनों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। मुल्क में अनाज की पैदावार में रिकॉर्ड तारीखी इजाफा, 3,765.63 लाख टन का तखमीना, इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर चलेगी, ये खबर भी अखबारों में नुमाया है।
0: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वज़ीर आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के साथ अहम प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुकाम से बैनुल-अक़वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शुमाल मशरक़ी हिस्सों में अगले 2 दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। और आज पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा का त्यौहार जोश व खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। 8:45 हुए हैं। समीन, पेश है सेहत से मुतालिक कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की तरफ से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम।

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद अज़हा के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की है कि ये दिन भाईचारा, तंदरुस्ती, कामयाबी और खुशी की नवीद लेकर आए। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इसी साल हज के दौरान भारतीय आज़मीन हज को सहूलियत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह मुकद्दस सफर तमाम इंसानियत के माबैन मोहब्बत, हम आहंगी और इत्तेहाद की अकदार को मजीद मुस्तहकम करेगा। ईद उल अज़हा के तनाजुर में बुजुर्गों को भी एहतियात से काम लेने की जरूरत है। इस हवाले से बुजुर्गों के अमराज के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ

0: जरूरत है। मैंने कहा हैफजर्ड मैनर में जो है हमारी डेवलपमेंट हुई है सिटी की, ग्रोथ हुई है सिटी की, जो कि एंटिसिपेट नहीं किया था प्लानर्स ने वो हो रहा है। और इसमें अब जो है ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि हमने जो इस वक्त बनाया हुआ है उसको डिसमेंटल करना भी मुश्किल है। सपोज मैं आप एग्जांपल आपको देता हूँ, एसएमएचएस की आप बात करें, एसएमएचएस में स्पेशलिटी अब बन गया है, साथ साथ में वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है, तो वहाँ पर जो है ये पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए एसएमएचएस को इस जगह से किसी दूसरी जगह इमिडिएटली उठाना। वो एक लॉन्ग टर्म में हो सकता है, लेकिन अब उसकी वजह से ये बना है कि वहां पर जो है एम्बुलेंसेज जो है वो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उस रोड पे जो बाकी ट्रैफिक है वो भी उसी रोड पे चलता है जिस रोड पे इस एम्बुलेंस को चलना होता है।
1: जाहिर है इसके लिए क्या आप मुनासिब समझते हैं कि जो आगे के लॉन्ग टर्म प्लान होंगे उसमें कॉरिडोर बने, फायर इमरजेंसी और एम्बुलेंस के भी कॉरिडोर बने?
0: बिल्कुल, ये डिस्कशन हो रहा है, हम इस पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अब यह है कि इसमें काम लगने में और फिर उसमें जो है
1: इम्प्लीमेंट
0: करने में टाइम लगता है, तो लोगों को ये मतलब ये एक या दो दिन में नहीं होने वाला है। जो अब बिगाड़ आ चुका है इसको अब सुधारने में थोड़ा टाइम तो लगेगा।
1: ये मंसूबा बंदी जो हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई है, उसको वी हैव टू अनवाइंड सर्टेन थिंग्स।
0: आपने अच्छा टर्म कहा, अनवाइंड करने की जरूरत है और अनवाइंड और रिवाइंड करने की भी जरूरत है। आपको थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा, आपने सोचना है कि ये देखें, यू कैन नॉट ब्लेम गेम पे अगर हम आ जाएंगे तो ये गलत बात होगी, क्योंकि प्लानर्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर जो है पीरियड के लिए प्लानिंग करते हैं। इट इज़ नॉट दैट कि इट विल बी अ सेट प्लान फॉर अदर 100 ईयर्स, और इसमें डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पाता था कोई श्रीनगर में, इतने जा रहे जो है पॉपुलेशन बढ़ने का, और पॉपुलेशन श्रीनगर में जो है मकीन आने का ये सोचा भी नहीं था किसी ने। देखें जो हमें रोड्स अवेलेबल थे, ट्रेडिशनल रोड्स, कई रोड्स ऐसे हैं जो लोग अब वो इस्तेमाल भी नहीं करने लगे इंटीरियर रोड्स में। उसकी वजह यह है कि अब जो है वाइडनिंग हो चुकी है, मेन रोड को हिट सभी करना चाहता है। डाउनटाउन में ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट डाउनटाउन इज कि बहुत सारे रोड्स हैं, फीडर रोड्स हैं, इसलिए वहां चोकिंग कभी नहीं हो जाती। अलबत्ता जो मेन मार्केट जो नौहटा का है, इतना कोई सोच भी, जैसे मैंने कहा जो ग्रोथ उसकी हुई है इस वक्त, जो पहले हमारा ट्रेडिशनली लाल चौक रेजिडेंसी रोड में शॉपिंग करने के एरिया आ जाते थे, आज की डेट में वो लोग सभी डाउनटाउन में नौहटा जाते हैं। मार्केट बहुत बना है और वहाँ पर जो है रिजनेबल रेट्स भी मिलती हैं लोगों को, और वहाँ पर हर एक किस्म का जो है चीज आपको अवेलेबल होती है। उस वजह से ये होता है कि वहाँ पर काफी सारा फुटफॉल आ जाता है। फुटफॉल मीन्स कि बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं वहाँ। एक तजवीज़ हमारी जहन में है, इन कमिंग डेज इंशाल्लाह अगर हो पाया तो नौहटा सेक्टर में आपको काफी सुधार मिलेगा।
2: सामईन, गुज़श्ता हफ्ते वादी कश्मीर के कई इलाकों में कहर अंगेज जालाबारी हुई, जिसके नतीजे में कई फसलों और मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। इस सूरत हाल के नतीजे में किसान और मेवा बाग मालिकान सख्त तशवीश में मुबतला हो गए हैं। किसानों ने सरकार से मुतालबा किया है कि फसलों को हुए नुकसान का सही तखमीना लगाकर उन्हें मुनासिब मुआवजा और इमदाद दी जानी चाहिए। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये डेस्क रिपोर्ट।
3: समीन, वादी कश्मीर के सरसब्ज व शादाब बागात जो हमेशा खुशहाली और उम्मीद की अलामत समझे जाते हैं, गुज़श्ता हफ्ते हुई तबाहकुन जालाबारी के बाद एक दर्दनाक मंजर पेश कर रहे हैं। सेब, चरी, नाशपाती और अखरोट के बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जिसके बाइस वादी भर के बाग मालकान और किसान शदीद फिक्रमंदी में मुब्तला है। शुपियां, कुलगाम, पुलवामा, बारामूला और अनंतनाग समेत कई अजला से मौसूला इत्तला के मुताबिक तेज हवाओं के साथ होने वाली शदीद जालाबारी ने चंद ही मिनटों में बागात को तबाह कर दिया। किसानों का कहना है कि इस वक्त होने वाली जालाबारी ने नुकसान को मजीद संगीन बना दिया, क्योंकि फलों के दरख्त इस वक्त शगुफों और इब्तदाई फल बनने के मरहले में थे। मुतासिर बाग मालका ने इस कुदरती आफत को हालिया बरसों की बदतरीन मौसमी तबाहियों में से एक करार दिया है। कई देहातों में अब भी टूटी हुई शाखें, जमीन पर गिरे फल और बिखरे हुए शगुफे साफ दिखाई दे रहे हैं। किसानों को खदशा है कि इस नुकसान से कश्मीर की सालाना फल पैदावार बुरी तरह मुतासिर होगी, जो जम्मू कश्मीर की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। वादी में सेब की काश्त लाखों खानदानों की रोजी रोटी का बुनियादी जरिया है। छोटे बाग मालकान से लेकर मजदूरों, ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद और ताजरों तक हजारों लोग फ्रूट इंडस्ट्री पर इन्हिसार करते हैं। किसानों का कहना है कि खाद, अद्वियात, आपाशी और बागात की देखभाल पर भारी सरमाया खर्च करने के बाद अचानक आने वाली जालाबारी ने उन्हें शदीद شدید مالی بحران میں دھکیل دیا ہے۔ متاثرہ کسان اب حکومت سے فوری معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ جلد از جلد

0: डेवलपमेंट की निगरानी में सफाई या सैनिटेशन के हवाले से अपना कूड़ा करकट सुबह जमा करते हैं, शल्स भी नहीं आते हैं। दूसरा, जो म्युनिसिपैलिटीज की ज्यूरिसडिक्शंस है, यहाँ पर सीरियसनेस से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मेरे साथ अशमुकाम के एक बाशिंदे फयाज अहमद, जो पेशे से एक बिजनेसमैन है, बात करने के लिए मौजूद है। फयाज साहब, बताइए कितनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है।
1: तसल्लु साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बार हमने हायर ऑफिस से गुजारिश की है कि यहाँ पे बहुत सारे कूड़े करकट जमा हो रहे हैं, उठाने के लिए कोई भी महकमा तैयार नहीं है, जबकि हमने बहुत बार

0: पेशे से एक बिजनेसमैन है, बात करने के लिए मौजूद है। फयाज साहब बताइए कितनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है।
1: तसव्वुर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बार हमने हायर ऑफिस से गुजारिश की है कि यहाँ पे बहुत सारे कूड़े करकट जमा हो रहे हैं, उठाने के लिए कोई भी महकमा तैयार नहीं है। जबकि हमने बहुत बार डिप्टी कमिश्नर और कंसर्न डिपार्टमेंट से ये अर्ज किया है कि जो भी डस्टबिन है उसमें सफाई करने के लिए अशद जरूरी है, क्योंकि वहां से हर एक घर वाले अपने 50-50 रुपया जो कि महाना उनसे लिया जाता है, मगर जब सफाई की बारी आती है तो वो उसी तरीके से करते हैं।
0: फयाज साहब वहाँ पे कोई स्वीपर नहीं आता है?
1: स्वीपर तो आते हैं, मगर वो कभी एक घंटे के लिए हफ्ते में एक बार दो बार आते हैं, बाकी वो अपना अपना काम करते हैं, जो कि स्वीपर ना के बराबर वहाँ पे अवेलेबल है।
0: सर क्या डस्टबिन नस्ब किए गए हैं?
1: नहीं, वो ना के बराबर है। मैंने बहुत बार कोशिश किया है कि कंसर्न डिपार्टमेंट से ये गुजारिश की है कि जहाँ 100 डस्टबिन लगना चाहिए इलाके में, वहाँ 6 या 7 डस्टबिन खाली नस्ब किया गया, वो भी जला के तोड़फोड़ करके कुत्ते उसमें पार रहे हैं। कि जितना
0: कितना पॉलिथीन जमा होता है आपके इलाके में, क्या पॉलिथीन के खात्मे के लिए म्युनिसिपैलिटीज इकदाम कर रही है? खास मुतालबा जो आप सरकार से म्युनिसिपैलिटीज के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से करना चाहेंगे?
1: मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, इसमें देखिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है।
0: इस वक्त सैनिटेशन के हवाले से अशमुकाम के लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या लगता है आपको कि ये प्रॉब्लम्स कैसे हल हो सकती है?
1: खाली अगर कंसर्न डिपार्टमेंट इसमें तवज्जो दे सकते हैं, ये 5-6 दिन में पूरा सफाई हो सकती है।
0: तो ये सैनिटेशन के हवाले से बहुत सारी म्युनिसिपल कमिटीज में प्रॉब्लम्स हो रही है, और आपको मैं बता दूं ये जो प्रॉब्लम्स है ये कैसे हल हो सकती है। कोशिश होनी चाहिए कि जो ऑफिशियल्स है उनके साथ बात की जाए, ताकि जो म्युनिसिपैलिटीज की ज्यूरिसडिक्शंस है वो बाकायदा साफ हो और लोगों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
2: इस वक्त सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल अनंतराग असदुल्ला साहब जुड़ गए हैं। असदुल्ला साहब, रोजमर्रा जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन है, कितना काम हो रहा है और क्या सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट लाने की काफी जरूरत है, और क्या इसमें एडिशनल मैन पावर आपने इस्तेमाल किया है? जी
3: बिल्कुल तसदुक साहब, आपकी बात सही है कि हमने जो हमारा सैनिटेशन स्टाफ है, आपको पता है कि पूरा टाउन बहुत बड़ा है, दिन ब दिन एक्सपेंड हो रहा है। इस सिलसिले में हमने 100 लेबर्स इस साल फिर हायर किए हैं, ताकि बेटर सैनिटेशन हम प्रोवाइड करेंगे टाउन को। इस सिलसिले में हमारे और भी जो हमारे रेगुलर स्वीपर्स हैं वो भी 100 है, कम से कम 220 स्वीपर वो भी है। उनमें से कई बंदे जो रिसेंटली रिटायरमेंट भी लिए हैं, उनके यूज भी हमने कुछ हायर लेबर उसको लगाए हैं उनकी जगह पे।
2: ये शिफ्ट कितने बजे शुरू होता है और क्या नाइट शिफ्ट भी आप करते हैं?
3: जी मैं बताऊंगा आपको। सुबह हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स है, सुबह 5 बजे स्टार्ट करते हैं, अप टू 8 PM दे विल कंप्लीट देयर जॉब। उसके बाद जो हमारे होपर्स होते हैं टाउन में, वो आते हैं घर के घर, ताकि जो कूड़ा करकट घर से निकलते हैं वो उनके हवाले करते हैं, ताकि वो अप्रोप्रिएट प्लेस पे वो डंप करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा दूसरा शिफ्ट होता है वो 12 बजे के बाद होता है 3 बजे तक। उसके लिए हमारे 2 सेंट्रल इंस्पेक्टर जो इनको मॉनिटर कर रहे हैं, और 8 सेंट्रल सुपरवाइजर है।
2: अगर किसी इलाके से कोई शिकायत मिलती है तो उस शिकायत को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं?
3: उसके लिए हमारी ऑफिस में एक हेल्पलाइन जो हमने रखी है, उसमें जब भी कोई ग्रीवेंस हमारे पास आती है या किसी रिटर्न पे आते हैं, देन हमारा एक टीम, इसको हम टास्क फोर्स के नाम से जाने जाते हैं, 15 रुकन का स्क्वाड होता है, वो इमीडिएटली वहाँ पहुँचते हैं, तो जो भी ग्रीवेंस होते हैं वो रिजॉल्व करते हैं ऑन स्पॉट। हमारी यही रिक्वेस्ट है जो सीनियर सिटीजन ऑफ द टाउन अनंतनाग है, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, जो कूड़ा करकट वो सड़कों पे या गली कूचों में डालते हैं उनसे परहेज करें, जो हमारी गाड़ी का पावर इस्तेमाल करें उन्हीं का, जो हमारे सैनिटेशन स्टाफ सुबह सवेरे उनके घर तक दस्तक दे रहे हैं प्रॉपरली के साथ कार्डिनेशन करिए।
0: शहर शहर मंजर के लिए अनंतनाग से मैं तसद्दुक रशीद।
4: अब रुख करते हैं जिले कुलगाम का, जहां के बाशिंदों का कहना है कि जिले के बेशतर इलाकों में सड़कों के किनारे वेस्ट डंपिंग साइट्स बनाई गई हैं। जिले के बाशिंदों का कहना है कि कचरे के इन ढेरों से अफूनत फैलती है, बीमारियां पैदा होने के खतरात लाहिक रहते हैं, और आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ने से लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं। पेश है इस सिलसिले में कुलगाम के हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू की ये रिपोर्ट।
5: जिला कुलगाम में गांव देहात में दीही तरक्यात और पंचायती राज महकमे ने कूड़ा करकट को जमा करने के लिए सेग्रीगेशन शेडों को अहम सड़कों पर तामीर किया है, जबकि नदी नालों और नहरों के करीब भी सेग्रीगेशन शेडों की तामीर की वजह से इन मुकामात पर फजले को गलत तरीके से ठिकाने लगाने से करीबी आबी जखायर और माहौलियात को शदीद खतरा लाहक है। کلگام ضلع کی اہم سڑکوں جن میں اہربل کلگام، یاری پورہ کلگام۔

0: गाम और दीगर शहराओं समेत अहम रास्तों पर कई शेडों पर घरों का कचरा खुलेआम फेंका जा रहा है। इन मसरूफ सड़कों पर कचरे के जमा होने से गैर सेहतमंद हालात पैदा हो रहे हैं और पैदल चलने वालों और मुसाफिरों के लिए सेहत को खतरा लाहक हो रहा है। मुकामी लोगों ने शहर शहर मंजर के साथ बात करते हुए कहा,
1: एक तो ये गंदगी है, ये बच्चे सफर हो जाते हैं, कई कुत्तों का डर रहता है, सुबह शाम यहाँ हजारों की तादाद में कुत्ते जमा होते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कुत्तों की वजह से, बच्चे को काट खाते फिर वैक्सीन लगाने पड़ते हैं, यहाँ लोगों का आना जाना मुश्किल रहता है, दुकानदार यहाँ वो भी सफर होता है, हर कोई इंसान इस बुरी मुश्किल से सफर ही होता है।
2: अब क्या चाहते हैं?
1: हम यही चाहते हैं कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कदम उठाए, अगर ये फैब्रिकेशन शेड कहीं दूसरी जगह किसी सेपरेट जगह पे लेके जाए वो ठीक रहता, हमारे समाज के लिए भी ठीक रहता, रोड साइड पे ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बंद होने चाहिए।
3: डर सुबह शाम ये हर हमेशा बिहत तुम प्रेथ गाड़ वलिस लाड़ान बाइक वलिस लाड़ान पायदल वलिस लाड़ान गोम सो बदबू ये नरुन कह तुम अंद पे बाग बाग गर वो कुछ बसान ये अपील कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोड साइडस पे डस्टबिन ट्रेन गन पूरी तौर बंद गलाक मे प्रति जो रोड साइडस पे डस्टबिन
4: मे ना आजिब रसूल भट भाई लारी रोजान अच्छी हमसाय गोम प्रॉब्लम अच्छे बनो शुड़ बुड़ सकूल सोजन कम सब गई जबरदस्त प्रॉब्लम अच्छे पेशेंट तमिस इन्फेक्शन कारण तमें मूजूब अहल हुकाम कर गुजारिश या तो करो यह बंद या करो यह साफ।
0: इस हवाले से जब आकाशवाणी श्रीनगर ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम से बात की तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एसीडी कुलगाम और बीडीओस को पहले ही सेग्रीगेशन शेडों में जमा कूड़ा करकट को साफ करने और जिला भर में कचरे के मुनासिब इंतजाम को यकीनी बनाने की हदायत दी गई है।
5: सो इसमें जो है दो बातें हैं, एक तो जो रूरल एरिया में आप देखे होंगे जितने भी सेग्रीगेशन शेड बने हैं वो जो है वहाँ पे लोग डंपिंग करते हैं, उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने हैं, उस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में हमें जो है जोन बनाने हैं, दो तीन पंचायत को मिलाकर जोन बनाने हैं जिसका जिम्मेवारी किसी को देनी है एंड वो वहां के सेग्रीगेशन शेड और कंपोस्ट पीट को जो है वो मैनेज करेंगे। उसके अलावा जो हमारे 6 प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट है उसका भी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन के लिए जो है हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनानी है। ये तो हो गई रूरल एरिया की बात, बट एक बहुत ज्यादा मसला जो है जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली था कि जो फीकल जो वेस्ट होते थे, कई दफा क्या होता था कि लोग जो है उसको इकट्ठा करके जो है कभी ऐसे ही नदी में फेंकते देते थे और यहाँ की पानी काफी ज्यादा जो है आपको ही पता है साफ है तो उसमें फेंक देते थे, उससे पूरा जो है वो नहर और नाला जो है वो गंदा होता था। उसके अलावा कुछ लोग जो थोड़े से समझदार थे वो उनको उन तरह के फीकल स्लज को लेके अनंतनाग में वहां पे एक फैसिलिटी है वहां पे डिपॉजिट करना पड़ता था। इसमें जो है भारत सरकार के हेल्प से और यहाँ पे जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने जो है एक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो है हमारा लीरो में बनाया है और वो जो है उसमें पूरी तरीके से जो ये वेस्ट है उसको ड्रेन करने का जो है ऑप्शंस है एंड इसमें जो है पिछले दिन उसको रिव्यू किया गया और उसमें जो है डेडिकेटेड मैन पावर को डिप्लॉय करके उसको जो है ऑपरेशनल किया गया। उसमें जो है दो तीन टैंकर को जो है वहाँ पे डंप भी किया गया और वो नाउ अब पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, उसकी टेस्टिंग हो गई सारी तरीके से। तो अब किसी को भी अगर इस तरीके के अगर फीकल स्लज को जो है डंप करना है और उसको जो है क्लियर करनी है तो वो कृपया करके ये करे कि उसको नदी नालों इन सब में ना फेंके और उनको इस डिस्ट्रिक्ट से भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पे कॉल करें। जो हमारे इसके जो ऑफिसर्स हैं जो इसको डिप्यूट किया गया उसका भी जो है मीडिया में फोन नंबर दिया गया उसको जो है वो कॉल करें और सबसे आसान है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में कॉल करें, वहां से जो है सीधा जो है सभी लोगों तक ये बातें पहुंच जाएंगी। और आप सभी लोगों को जैसे पता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का जो नंबर है वो है 9103424365, तो ये नंबर पे आप कॉल करें और वहां पे आप बुकिंग करा सकते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल की जो गाड़ी है वहां जाएगी, उसको आपको कलेक्ट करेगी और फिर जो है हमारा जो फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बना है वहां पे डंप करेगी। ये जम्मू कश्मीर में रूरल एरिया में बना हुआ सबसे पहला जो है ये इस तरह का ये प्लांट है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स ने जो है इसको पर्सनली मॉनिटर करके और पर्सनल इसमें इंटरवेंशन देके जो है इसको पॉइंट टू पॉइंट जो है एग्जीक्यूशन करके फाइनली अब जो है ये ऑपरेशनल पॉइंट में है।
6: प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं शहर शहर मंजर को मौसूल हुई कुछ मजीद फोन कॉल्स।
2: میں ڈانگر پورا تیل بل سے ادھر رشید لون، یہاں سے ایک سڑک گزرتی ہے جو بٹ پورا سے آتی ہے، پھر گاسو وانیاما استان پورا تیل بل اور پھر ڈانگر پورا تیل بل سے ہوتے ہوئے شالیمار جاتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے اس سڑک کو بنایا گیا اور

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो कशीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे ताम नश सब्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।
2: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है मून SWR PVC पाइप्स एंड।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोझान सूफी सदा ये प्रोग्राम छु प्रत दो आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे ताम नश्र सब्दा।
2: समय मोहतरम तो इस सूफी ते ऋषि वचारण पेठी मबनी प्रोग्राम बोझान सूफी सदा तहरीर निषाद अंसारी इच आकाशवाणी श्रीनगर सान्य दुमालानु करु हना इंतजार। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज पर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। पयाम सुब प्रोग्राम जारी है। अगली सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं रिफत आरा के साथ
3: और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
4: और साथ ही खेल सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु पयामे सुब।
5: यारो यारो
3: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से
4: मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। पयामे सुब
6: सुनो सजना
4: पयामे सुब।
7: जी हां सामीन, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2103.5 मेगाहर्ट्ज पर और मीडियम 268.8 मीटर पर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आप इस वक्त सुबह की नशरियात समाप्त कर रहे हैं पयाम सुबह। ये लाइव ट्रांसमिशन है जो सुबह 7:10 से शुरू होकर 11:30 तक होता है और इसमें हमारी कोशिश रहती है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, अच्छी मौसीकी हो, अच्छी बातें आप तक पहुंचे। और आज का जो दिन है, अगर आज के दिन के हवाले से हम बात करें तो आज हर दिन हमारा एक थीम होता है और आज का जो थीम है हमारा इस दिन के हवाले से, आज हम लेडीज़ के हवाले से बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेडीज़ एम्पावरमेंट, लेडीज़ अपलिफ्टमेंट, ख़वातीन की सेहत के हवाले से बात होती है, तालीम के हवाले से, तरक्की के हवाले से, बाइख्तियारी के हवाले

से हम आज के दिन प्रोग्राम में बात करते हैं और आज हम ईद भी बना रहे हैं, इस हवाले से बात हुई भी और बात करनी भी है, लेकिन उससे पहले एक सौगात हम आप तक पहुंचाएंगे। सौगात के उस पार हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आज के दिन के हवाले से भी और आज ईद है इस हवाले से भी।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजमा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी। सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी के जरिए।

जी हाँ सामीन, आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह में आपकी मेज़बान रिफत आरा। आज ईद का दूसरा दिन है, ईद हम मना रहे हैं और इसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ता है। एक और जो बात हमारे जहन में आ रही है वो ये है कि फिजूल ख़र्ची, ईद पर बहुत ज़्यादा फिजूल ख़र्ची भी होती है, लेकिन अब बहुत हद तक हमने इस चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं फिजूल ख़र्ची में जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिस और वैसे भी इसराफ़ करना बहुत गलत माना जाता है, गलत समझा जाता है। इसराफ़ कहीं पर भी नहीं, अगर इस्लाम की भी बात करें तब भी हमें इसराफ़ से मना किया गया है, और फिजूल ख़र्ची की जहाँ पर बात आती है वो भी उसकी भी सख्त मनाही है। अब हम अगर बात करें जो हमारे बच्चे हैं वो भी ईद के दिन बहुत सारी फिजूल ख़र्ची करते हैं, जैसे पटाखे फोड़ना, जैसे बाहर का खाना खाना और बहुत ज़्यादा वो चीज़ें खाना जो सेहत के लिए मुज़िर है, जो नहीं खानी चाहिए। ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से अगर बात करें, उनको ईदी मिलती है तो ईदी कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं इसका भी ख्याल रखना चाहिए, चूँकि ये उनका हक है, ईदी उनको देनी है और ये उन्हीं का हक है कि वो कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम थोड़ा सा देखें जाके कि अगर उनके पास पैसे हैं तो वो किस चीज़ पर खर्च कर रहे हैं। पटाखों की बात करें तो पटाखे जलाना अगर शौकिया तौर पर आप जलाते भी हैं तब भी किसी बड़े का होना बिल्कुल लाजमी है, बड़ा साथ हो तो पटाखे जलाए भी जा सकते हैं। इस तरह से बच्चों पर एतबार ना करें, बहुत सारे हादसात वैसे भी होते हैं, सड़कों पर पटाखे जलते हैं, कहीं पर ऐसा भी हुआ कि कोई पटाखा किसी के घर में चला गया तो वहाँ पर आग लगने का भी ख़तरा रहता है, बल्कि आग भी लग गई है, कई बार ऐसा भी हुआ है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को जब हम ईदी देते हैं, पैसे उनके हाथ में आ जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं बाहर, और बाहर का खाना वैसे भी मुज़िर है, ख़ास तौर पर बच्चों की अगर बात करें, वो खाने जो जंक फूड्स में आते हैं और जंक फूड्स की मनाही की गई है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा जंक फूड की तरफ माइल मत कीजिए, लेकिन जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो फिजूल में वो चीज़ लाते हैं जो उनके लिए मुनासिब नहीं होती है। ख़ास तौर पर अगर हम बच्चियों की बात करें, ये जो लड़कियाँ होती हैं चलती रहती हैं हमारे सड़कों पर और बिल्कुल तितलियों की मानंद ये खूबसूरत सी लड़कियाँ ड्रेसेस पहने हुए, कलरफुल ड्रेसेस, तो बहुत प्यारी लगती हैं। बच्चियों को प्यार करना बहुत ज़रूरी है और प्यार किए बगैर बच्चियों को हम रह भी नहीं सकते हैं। चुना वना इमन कोरन हिंसी थी शिशु बासान अगर गरस मजन सोर पाँच कोर आसन बड़ जोश छ आसान गरस मजन और सफाई सुथराई का भी बड़ा इंतज़ाम रहता है। यमन अल्लाह ताला कोरन नेचुरली यम चीज़ दिन कि यम ठ करान बर्दाश्त, यम गलत चीज़ बर्दाश्त कर, हर कह चीज़ मेनटेन आसान। ख़ास तौर पर अगर अस तिम गर मो यन मज जो त्रे कोर आसान सो गर पज पे फलान वन गो यम लक्चन लक्चन इन बच्चन पोंस दिवान अथस मं जंक फूड खेवान सो गजा खेवान उस मुनासिब कहें सेहत की रंग तारे प्रॉब्लम्स गसान, चूँकि इस पे बहुत डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं कि ख़ास तौर पर लड़कियों को मैं आजकल PCOD PCOS पाया जाता है जो जंक फूड की वजह से ही होता है, तो इसलिए जंक को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। गरीब बनबुक असल असल डिश यन खुश कर मगर इम रुकुक ईदान में नीवुक सोरी क्या ईदान से युद्ध हक ईदान दीवुक तिजी हन दीवुक यहां इन मुनासिब रोज इंद खर यूतः यम असल पे खर्च हकन तो बाकी फ्रूट इन खर वह इम्पॉर्टेंट सो वन फ्रूट खेव अगर तम खर खर्च कर मसल क्या मगर जंक फूड ज्यादा सेहत खर ठीक क्या।

आपने गुरदास मान और दिलजीत दोसांझ की आवाज़ों में ये नगमा पंजाबी नगमा सुना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2 103.5 MHz पर और मीडियम वेव 268.8 मीटर पर। ये लाइव ट्रांसमिशन है, सुबह की नशरियात आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं जो सुबह 7:10 से शुरू होती है और हम इसे अख्ताम करते हैं 11:30 तक। अभी हमारे पास बिल्कुल 15 मिनट हैं और इन 15 मिनटों में हम चाहेंगे कि आपके साथ बात हो। हमने आज हम ईद मना रहे हैं और कुछ चीज़ों का जिक्र हमने किया, कुछ बातों का जिक्र हुआ आपसे, जैसे स्पीड के बारे में कि स्पीड हमें कंट्रोल में रखनी चाहिए और इसके साथ साथ हमें ट्रैफिक जाम का भी ख्याल रखना चाहिए। ट्रैफिक जामिंग जो होती है बहुत ज़्यादा होती है इस वक्त। अगर आप सुबह निकलते हैं, मॉर्निंग में निकलते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो ठीक है, उसमें ज़्यादा आपको ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी आप अपनी स्पीड को थोड़ा हद में रखिए, कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं होता है कि किस गली किस कूचे से कौन सा बंदा निकले, कौन सा शख्स निकले। क्योंकि सुबह सब निकलते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, कुछ अपने काम से निकलते हैं, जो बहुत अर्ली निकलते हैं, तो हम ये दिमाग में रख कर निकलते हैं कि कोई सड़क पर होगा ही नहीं, सिर्फ हम चल रहे हैं, तो ये बात सही नहीं है। अब अगर आप थोड़ा लेट निकलते हैं तो ट्रैफिक जाम का ख्याल रखिए कि ट्रैफिक जामिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको कहीं जाना है तो थोड़ा सा आप घर में भी सर्च कर सकते हैं कि कौन सा रूट आपके लिए सही रहेगा जिस पे आपको ट्रैफिक जाम का सामना ना करना पड़े, और क्या वो रूट इख्तियार करने से आप खुद ट्रैफिक जाम से बच सकते हैं, तो वही इख्तियार कर लीजिए। और उससे ये भी फ़ायदा होगा कि आप ट्रैफिक जाम में इजाफा भी नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए, थोड़ा सा सर्च कीजिए, अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं तो पूछ लीजिए कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही रहेगा और क्या इस रूट पर अभी है, क्योंकि आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो हर एक चीज़ हमें अपडेट बिल्कुल घर बैठे मिल जाता है ना। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए इन चीज़ों का, ताकि आप मुश्किलात से बचें।

आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 203.5 MHz मीडियम में 268.81 मीटर। मैं आपकी मेज़बान रिफत आरा लाइव ट्रांसमिशन इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं पयाम सुबह। और आज ईद के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा जो बच्चों के हवाले से हमने बात की कि उनको ज़्यादा जो जंक फूड की तरफ हम मायल ना करें बल्कि उन्हें उतना ही पैसा दिया जाए जितने में वो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें ख़रीद लें, वो ज़्यादा ओवर ईट भी ना करें। जंक फूड खाने के साथ साथ ये भी है कि ओवर ईट हो जाती है अगर इस निबरकन बच्चन यात्रा में पचस निबरकन कह चीज़ खाँ पचस घर बे पत जोर करें तब बचस ना वाकई ये चीज़ से वाकई ये चीज़ से, क्योंकि हमने खाना जो पकाया होता है जो हमने पकवान बनाए होते हैं हमें ये डर रहता है कि तिम गसन पत जाए पत गसन तिम पत कुछ खे तिम, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अस तिमो तिमन सू चीज़ घर से मन उस तिमन निबर खान आदत हाँ घर बनाओ असल पे जन तिमन वायवन तक बे करो ना ज्यादा ओवर ईट कर कोशिश कह तेज वन किस ईज हंदिस मौकस पे अक्सर आमुत वे कि खास कर बच्चे पे वामटिंग गसान इनको उल्टियाँ हो जाती हैं फिर हमें हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है पे हस्पताल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए, ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में दो

0: दो मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में एक एक मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Mr. Modi stated this while chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees across the railways, power and road sectors covering 9 states. President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Gala on the Sikkim police during Alankaran Parade held in Gangtok.
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
1: Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the Ullas Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. India and China reviewed the situation in border areas and expressed satisfaction with progress made in maintaining peace and tranquility. The two countries reviewed the situation during the 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, which was held in Beijing yesterday. The Ministry of External Affairs said the discussions were constructive and forward-looking. The two sides discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building and cross-border cooperation. The ministry said the Indian side stressed on early meeting of the next expert-level mechanism on transborder rivers. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah today held a breakfast meeting with cabinet colleagues at his residence in Bengaluru amid reports of a possible leadership change in the state. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar, who is reportedly being considered for the top post, was also present at the meeting. Cabinet ministers who attended the meeting said they would abide by any decision taken by the Congress High Command regarding a change in leadership in the state. In Bihar, 8 people were killed across the state following a wave of severe thunderstorms, lightning strikes and hailstorms. Chief Minister Samrat Chaudhary expressed grief at the loss of lives and announced ex gratia compensation of 4 lakh rupees each to the next of kin of the deceased. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar, popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. Prime Minister Modi in his message said the courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people. The Home Minister said a fearless warrior of the freedom

समय आपको बताते चले, फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। अब आइए अदनान सामी को सुनते हैं, यह है फिल्म बजरंगी भाईजान।

आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमई, आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़, मीडियम वे 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। 12:30 हो रहे हैं। समाप्त कीजिए खबरें पहले और दोस्त के फ़ौरन बाद कश्मीरी में।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दिन के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आरिफ हुसैन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमल आवरी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील के साथ साथ मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकत दारी और मुख्तलिफ फरीकीन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोबर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील जल्द मुकम्मल करें। वजीर आजम ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपये मालियत के रेलवेज, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हुकाम को हिदायत दी है कि मुल्क की सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गैर कानूनी तामीर के सिलसिले में कतई अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाए और गुज़श्ता बरसों में तामीर किए गए ऐसे तमाम ढांचों को मुनहदिम कर दिया जाए। बीकानेर में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सरहद के करीब सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। वजारत दाखिला ने सरहदी जिलों की इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो जराइम और मुनशियात की स्मगलिंग के जराए, तौर तरीकों और नेटवर्क का गहराई से जायजा लें। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। लोग ईद नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी की सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं। उधर सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में भी ईद उल अजहा मनाई जा रही है। हुजाज किराम आज भी मिन्ना में शैतान पर अलामती तौर कंकरिया मार रहे हैं, नीज जानवरों की कुर्बानी पेश करके हलक करते हैं। शैतान पर कंकरिया मारने का सिलसिला कल भी जारी रहेगा और यूं इस साल के मनासिक हज अपने इख्तिताम को पहुँच जाएंगे।

0: क्या ये चेंज बच्चों में आया है कि पेरेंट्स में आया है?
1: देखिए शहनाज जी, आज के हिसाब से बहुत ही मौजू टॉपिक आपने चुना है, बहुत अच्छी बात है और मैं मुबारकबादी देता हूँ आपको। जैसा आपने बोला कि चेंज क्यों आया है और ये पेरेंटिंग पे बात करनी क्यों ज़रूरी हो गई है आज, तो मैं अपने ऑब्जर्वेशंस को मद्देनज़र रखकर कहना चाहता हूँ कि लाइफ बहुत वसी हो गई है। एक ज़माना था कि एक होमोजेनियस सोसाइटी में रहते थे, जहाँ सब लोग एक कास्ट के एक मोहल्ले में, एक ही कारोबार करने वाले लोग,
0: रहा
1: एक
0: करते थे।
1: ही कम्युनिटी से रहने वाले लोग जो है रहते थे। आज ज़माना हेटेरोजेनियस सोसाइटी का है, चाहे आप शहर में रहे हो, गांवों में रह रहे हो, देहात में रह रहे हो या किसी सिटी में रह रहे हो, आप देखोगे कि डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पीपल आपके आसपास रहते हैं, आपके समाज में, आपके नेबरहुड में, आपकी कम्युनिटी में। जैसे अगर आप एक जगह रह रहे हो तो वहाँ पर एक मद्रासी भी रह रहा है, कश्मीरी भी रह रहा है, गुजराती भी रह रहा है, एक फॉरेनर भी रह रहा है। तो ये सब कुछ जो है एक हेटेरोजेनियस सोसाइटी, जिसको हम इल्मी समाजवाद में कहते हैं, इसका मतलब है कि हमें डाइवर्सिटी बहुत बढ़ गई है और यहाँ से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, हमारे मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ रही है। हालांकि कुछ थेरीज के हिसाब से जितनी पिछली जमाने में बढ़ती थी, आज उतनी नहीं बढ़ रही है। एक्सपोनेंशियल फेज था हमारा 1981 से 2001 तक, लेकिन आज दूसरे मसाइल है। जैसे हमने लाइफ के बहुत शोबों में बहुत तरक्की की है, आप देखिए कि हमारा मटीरियल कल्चर कहाँ पहुंच गया है। हमारे पास पहले मोबाइल फोन्स नहीं होते थे,
0: जी
1: लैंडलाइन
0: जी
1: गांव में शायद एक घर में एक हुआ था, करता था,
0: बिल्कुल
1: टीवी एक साथ था, तो उसमें भी एक अगर कट जाते थे हम, लेकिन एक फायदा था, सब लोग एक साथ देखते
0: चैनल
1: थे।
0: भी एक ही
1: जी,
0: हुआ करते
1: चैनल भी
0: थे।
1: एक हुआ करते थे। अपने ज़माने की बात जब हम करें, आज देखेंगे आप चैनल्स का, अब मैं नहीं दोष दूंगा सिर्फ स्क्रीन को ही, लेकिन चैनल्स का एक सैकड़ों की तादाद में आपकी चैनल्स घर में आती हैं।
0: जी
1: आपके बच्चे का जो बचपन था अक्सर खेत खलियान में गुजरता था, मैदानों में गुजरता था, आज घर में एक कमरे में बंद गुजरता है।
0: बिल्कुल
1: तो दूसरी बात यह है कि आज स्कूलिंग भी जो है अच्छी बात है, लिटरेसी रेट बढ़ गई है, स्कूल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। कोई ऐसा पेरेंट नहीं है जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता, लेकिन स्कूलिंग के लिए जब सेचुरेशन हो गई है तो चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं बहुत। मैं ऐसा कहूँ आपको कि स्कूलिंग में जो हमारा निसाब है, क्योंकि स्कूल का निसाब वही होता है जो समाज में दरपेश चैलेंज आते हैं आगे लाइफ में, वही तो पढ़ाया जाएगा उनको।
0: बिल्कुल
1: तो जब चैलेंजेस बढ़ गए तो निसाब में भी कम्प्लेक्सिटीज आ गई। तो इन सब को देखकर और एक समाज में बहुत कम वक्त हमें मिलता है एक दूसरे के मिलजुल कर रहने के लिए, जिस तरह हम पुराने वक्त में देते थे। मैं अपने बचपन की अगर बात करूं तो शाम को 4-5 बजे के बाद सारे मोहल्ले की खवातीन मेरी माँ को लेकर जमा होती थी हमारे बरामदे पर, हमारे कंपाउंड में, और बच्चे खेलते रहते थे वहाँ पर। एक मिक्सिंग होता था, एक इंट्रैक्शन होता था, आज वो नहीं है। तो जब इंसान इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ जो है बसर करता है, हालांकि बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपके वसादत से भी, बाकी प्रोग्राम के वसादत से भी ये सुनने को मिलता है, एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में हम रह रहे हैं जहां बच्चा खुद अकेला है, एक या दो बच्चे हैं घर में, वो अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं, माँ बाप के पास लाइफ को वसी होने के बाद टाइम नहीं है बच्चे को अटेंड करने का, स्कूल्स में भी चैलेंज है, फ्रेंडशिप में भी चैलेंज है। इस सब को लेकर बच्चे के जहन पर काफ़ी स्ट्रेस बढ़ गया है और पेरेंट्स अभी समझ ही नहीं पा रहे है कि इस बदलाव को, जैसे एक साइंसदान ने कहा था कि पुराने 200 साल में उतना बदलाव समाज ने नहीं देखा जितना पिछले 20 साल ने देखा। ये बात है असल में, यानी पुराने वक्त में 100 साल में इतनी चेंज आती थी जितनी आज 10 साल में आती है,
0: बिकॉज ऑफ
1: फास्ट
0: टेक्नोलॉजी।
1: टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। हाँ, तो ये जब चेंज आती है ना, इस चेंज को लेकर हमें ये देखना है, हमें ये समझना है कि ये चेंज जो है, इस चेंज को कैसे टैकल किया जाए, इस चेंज में खुद को कैसे अडॉप्ट किया जाए, इस चेंज में खुद को कैसे अकोमोडेट किया जाए। ये सब चीज़ें जब होती है समाज में रोनुमा, तो बच्चे हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, उनके साथ भी तो ऐसा ही होता होगा कि वो खुद को कैसे एडजस्ट करें, खुद को कैसे अकोमोडेट करें। और उनके पेरेंट्स पर तो बहुत दबाव और भी है कि वो बच्चे की परवरिश कैसे अच्छी तरह से करे, वो बच्चे का ध्यान कैसे रखे, क्योंकि खुद जो है बिजी है घर में, फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है शहना जी, जो फैमिली का स्ट्रक्चर है घर में, पहले एक्सटेंडेड फैमिलीज थी, ज्वाइंट फैमिलीज थी, आज न्यूक्लियर फैमिलीज है। अगर कुछ फवायद है भी, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान है, घर में बच्चे को संभालने के लिए कोई नहीं है, माँ काम पे गई है, बाप काम पे गया है, तो बच्चे पे चूंकि दबाव है, पेरेंट्स पे भी दबाव है कि बच्चे के साथ कैसे गुजारा जाए वक्त, क्या ऑफिस में गुजारा जाए ज़्यादा वक्त, घर में गुजारा जाए, रिश्तेदार के यहाँ गुजारा जाए, जिसको हम इनमें समाज में रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कितना प्रेशर तारी करते हैं बच्चे के मन पे भी, तो माँ बाप के मन पे भी, कि परवरिश कैसी की जाए। असल में हम वही पेरेंटिंग पे ही आ जाते
0: जी
1: हैं।
0: पॉजिटिव पेरेंटिंग
1: हाँ,
0: पे।
1: अब ये है कि पेरेंटिंग कैसे की जाए।

0: कैसे लगाते हैं।
1: अल्लाह
0: और ये
1: जी।
0: डाउन टाउन में हमारे शहरी खास इलाके में ये वाकया पेश आया, तो उसने खुद को फांसी लगा दी। अब आप देखिए कि ECCE जो इल्म समाजियात का भी और महकमे समाजी बहबूद का भी एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट पे कितना जोर देता है। आज हमारे बच्चे कितने जज्बाती हो गए हैं, कितने हसास बन गए हैं, इस चीज को भी माँ बाप महसूस करते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। बहुत सारे सवाल जहन में उभरते हैं, इंसान उलझ के रहता है सवालों में। तो इसके लिए एक मॉडल पेश किया गया था पॉजिटिव पेरेंटिंग। जैसे मैं भी आपको बोल रहा था कि पुराने वक्त में डांट डपट के बच्चे को कंट्रोल किया जाता था, आज वो थोड़ी कर सकते आप, वो आज नहीं कर सकते। तो दूसरा मॉडल हमारा है, ये तो था हमारा ऑटोक्रेटिक मॉडल जो हम पुराने वक्त में करते थे यूज। अक्सर हमारे बचपन में भी छड़ी देख कर ही भाग जाते थे।
1: जी, कहते
0: तो
1: थे ना ये
0: हाँ
1: अक्लनुमा है।
0: जी, उस्ताद का मुंह कहीं से देखा सड़क पे चलते हुए, शायद 2 घंटे में वहां उस रास्ते से कोई गुजरता ही नहीं था। तो दूसरी बात ये थी कि डांट डपट पिला कर भी अगर होश ना आए तो इतनी पनिशमेंट मिलती थी कि शायद उम्र भर इंसान उसको नहीं बोलता था, कोरिसू पनिशमेंट आपकी जबान में बोला जाए
1: सही है,
0: तो।
1: क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ शहजादा सलीम साहब कि बहुत सारे बच्चों ने फिर स्कूल जाना ही छोड़ दिया,
0: जी
1: जो कि आज के वक्त में ऑफेंस है।
0: जी ड्रॉप आउट्स हमारे पुराने वक्त में ज्यादा इसीलिए थी क्योंकि बच्चा घबराता था स्कूल जाने में, जब उसको डांट पिलाई जाती, डांट के पनिशमेंट दी जाती थी।
1: जी
0: मुझे एक जमाना याद आता कि एक वक्त में जब मैं गालिबन 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो एक लड़के को एक ऐसे संदूक में सुलाया गया जहाँ पर ऐसी ग्रास, कश्मीरी में सोई कहते हैं शायद उसको,
1: अच्छा, जी।
0: तो रखी गई थी। तो उस पे सुलाया गया, पूरे बदन पे उसके इतने फेफड़े निकल आए तो इंसान मतलब ना वो फिर कभी स्कूल आया ही नहीं। उसको शायद ट्रॉमा ट्रॉमा की सूरत जो है उस वाक्य ने इख्तियार की।
1: जी
0: तो खुदा ना खास्ता मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करना है और ऐसा मॉडल आज चलेगा भी नहीं। बच्चे हसास है, अगर आपने किसी को मामूली सी डांट पिलाई आप देखेंगे कि वो, मैं कहूँगा कि कभी आपकी तरफ देखेगा क्या बात है कि शायद पूरी उम्र उसको वो ट्रामा रहेगा जिसको हम चाइल्ड अब्यूज़ भी कहते हैं। क्योंकि आप साइकोलॉजिकली, हाँ लीगल इसकी डिफिनेशन अलग हो सकती है, लेकिन अगर इस किसी को इतना आप बातों से परेशान करेंगे कि उसके साइकोलॉजी पे असर पड़ेगा तो ये साइकोलॉजिकल अब्यूज़ में भी शुमार हो सकता
1: पता नहीं,
0: है।
1: इमोशनल अब्यूज भी तो
0: हाँ
1: है।
0: इमोशनल अब्यूज़ भी होता है। तो अब दूसरा मॉडल था हमारा लिबरल मॉडल जहाँ पर आप बिल्कुल खुला छोड़े बच्चे को, जो वो करें जो वो मांगे। पैम्परिंग का जमाना जमाना मैं आज भी बहुत सारे घरानों में ऐसा देखा जाता है, बच्चा अभी फरमाइश नहीं करता कि घर में चीज़ें ला के रखते हैं। ये बच्चे आगे चलकर जिंदगी में बहुत परेशान रहेंगे, मैं नहीं कहूँगा रहते हैं बल्कि रहेंगे, दावा से कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने लाइफ की वो स्ट्रगल्स नहीं देखी है। एक बच्चा साइकिल मांगता है, उसको बोलते जब आप पास हो जाए फिर देंगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद इस बच्चे को उस साइकिल की कीमत भी पता चलती है क्या है। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट करके माँ बाप से ये हासिल करनी पड़ती है। अब ये ज़माना कि बच्चा मांगता भी नहीं, हम उसके घर में ला के रखते हैं। खुदा ना खास्ता लाइफ में तो तगीर तबदुल होते रहते हैं। कल आपको इंस्टेबिलिटी लाइफ में हो जाए, आपके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे, आपने तो एक गोल्डन फेज देखा माँ बाप का, आप पैम्परिंग फेज देखा, तो कैसे उसको चैलेंज को फेस करेंगे आप। तो लिबरल मॉडल भी कुछ लोगों का कहना है कि ज़्यादा देर काम कारामत नहीं हो
1: कामयाब
0: सक
1: नहीं
0: नहीं
1: रहा।
0: रह रहेगा। अब एक मॉडल है डेमोक्रेटिक मॉडल, बच्चे को अगर अच्छा किया तो रिवार्ड दीजिए, अगर गलत किया तो पनिशमेंट की दीजिए, लेकिन पनिशमेंट भी ऐसी हो कि ऐसी कोरेसिव पनिशमेंट ना हो कि बच्चे को हमेशा ये ट्रॉमा की सूरत में याद आए। ये एक डेमोक्रेटिक मॉडल है, कुछ लोग उसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि आप आज करेक्शन के बजाय कनेक्शन का ज़माना है। ये अहम बात यहाँ पर है कि आप बच्चे को करेक्ट करते रहेंगे करेक्ट करते रहेंगे, बच्चा है दोहराता रहेगा, एक बार आप भी तंग आ जाएंगे, एक बार वो भी तंग आ जाएगा, फिर पेरेंटिंग पे बात आएगी कैसी की जाए पेरेंटिंग। लेकिन आज ज़माना जो है वो कनेक्शन का है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका बच्चा, छोटा बच्चा जो है 4th 3rd 2nd में पढ़ता है उसमें भी जज्बात है, नेचुरली ह्यूमन तो है, लेकिन अब ज़माने की तगीर तबदुल से तो ज़्यादा हसास बन गया है। खुदा ना खासा चाइल्ड एब्यूज होता हो, आप करेक्शन में लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और अल्लाह ताला बचाए कि आज का ड्रग्स का ज़माना जो है जोर पकड़ता रहा है, क्योंकि बहुत सारे समाज दुश्मन
1: ये
0: अनासर ऐसे
1: बिदत
0: हैं,
1: काफी बढ़ चुकी है हमारे माशरे में।
0: समाज दुश्मन अनासर ऐसे हैं जो इस ताक में बैठे होते हैं कि बच्चे की लत कैसे लग जाए और उनको उसे जो है नाजायज़ फ़ायदा हासिल हो। तो मैं कहता हूँ कि ये ज़माना जो है कनेक्शन के बजाय कनेक्शन का, जैसे मैं फिर से ये वर्ड रिपीट करता, अब कनेक्शन क्या है? अगर कनेक्शन है तो क्या ऐसा हो कि बच्चे का दोस्त बन के रहा जाए, कुछ लोग तो बोलते अगर गैप आपने खत्म की तो उससे

0: बच्चा जो है
1: करेंगे।
0: फिर इज्जत नहीं करेंगे, यानी एक पीछेदा मसला है
1: जी,
0: कि पेरेंटिंग कैसी हो। और आजकल ये रिलेशनशिप साइंस में आ गया है, क्योंकि अभी पूरी साइंस में हमारे पास पहले बुनियादी साइंस जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री हुआ करते थे, आज तो रिलेशनशिप साइंस है, आज तो काउंसलिंग साइंस है, आज तो इवन पेरेंटिंग भी हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है यूरोप वगैरह में एक फैकल्टी के तौर पर है। पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है और पेरेंटिंग अब पढ़नी पड़ती है कैसे किया जाए। जैसे इसके बहुत सारे और टाइप्स मैं बताऊंगा आपको। आप कोई स्टब बॉर्न चाइल्ड है जो बहुत जिद्दी है, फितरतन जिद्दी है, क्या करेंगे आप उस बच्चे का, कितनी डांट पिलाएंगे, कैसे पनिश करेंगे उसको, ये भी एक मसला है। हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट बच्चे हैं, बोलते ही नहीं है कुछ, क्या है, क्या जरूरत है, क्या पेशा है। अब इंट्रोवर्ट बच्चों से भी जो है उलझने का जो है क्या करें,
1: मसला उसमें भी है।
0: हाँ,
1: अब कुछ आउटस्पोकन भी बहुत ज्यादा,
0: हाँ एक्सट्रोवर्ट बच्चे भी है जो बहुत आउटस्पोकन है और माँ बाप के पास शायद टाइम नहीं है उनकी बातें उनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। और अब ये मसला भी है कि अब स्कूलिंग का कुछ एक जमाना ऐसा था, इमैनुअल डर्कैम जो बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि मॉडर्नाइजेशन जो सिविलाइजेशन हमारी है, मॉडर्न जो एज है, इसमें माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी स्कूल अथॉरिटीज पे डाली है। लेकिन अब पोस्ट मॉडर्न जमा, माँबादी जदीदियत जिसको कहा जाता है, पस जदीदियत, अब उस जमाने से भी हम गुजर गए हैं, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी से। अगर मेरे सामीन को ये दुश्वारी होगी इस चीज़ को समझने के लिए, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जब ट्रेडिशनल ज़माने में जो हमारा कल्चर था, जब उसका बोलबाला था, उसके बाद मॉडर्न ज़माना आया, जब हमें नई वैल्यूज़ नई कदरें इख्तियार की, अब तो मॉडर्न से भी आगे हम बढ़ गए हैं, हमारे पास मॉडर्न ज़माना भी पीछे गुजर गया है।
1: आपको नहीं लगता शहजादा सलीम साहब जो पिछला ज़माना था उसमें ज़्यादा कामयाब तरीन इंसान रहे, हालांकि उनके पास इतनी सारी असाशें नहीं थी। आजकल हम पेरेंटिंग टिप्स देते हैं या जितना ख्याल रखा जाता है बच्चों का उतना तो होता नहीं था, लेकिन फिर भी आप देखिए बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े साइंसदान, जितने भी बड़े नाम है ना पिछले दौर में आपको मिलेंगे, आज के दौर में हमें ये नाम नहीं मिलते जबकि इनके पास सब कुछ है। तो क्या करना चाहिए हमारे इन बच्चों में भी वो अवसाफ आ जाए।
0: देखिए ये आपने जो कहा, बहुत सारे लोग इस चीज़ के भी हाँ में हैं कि पुराने वक्त में हमारी कदरें बहुत अच्छी थी, लेकिन वो तो है, कदरों पे तो कोई उंगली नहीं उठा सकता है, लेकिन कि पुराने वक्त में ही लोग शायद ऐसे आते थे, आज नहीं आ रहे, ये काबिल बहस मौजू है। क्योंकि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आज हमारा बच्चा जब यूनिवर्सिटी में आता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो उसको नेट भी चाहिए, उसको एमफिल भी चाहिए, उसको पीएचडी भी चाहिए। तो उस वक्त उस ज़माने में जो आज हमारे एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट प्रोफेसर थे, उन्हें खाली मास्टर्स डिग्री की थी, फिर पीएचडी भी उनका एज पर यूजीसी गाइडलाइंस हुआ। इसी तरह आपके पूरे गाँव में एक इंजीनियर बनता था
1: जी,
0: तो पूरे लोग जमा होते, उसको मुबारकबादी देते। आज तो हर घर में दो तीन इंजीनियर बैठे हुए हैं। पॉपुलेशन जो आबादी बढ़ गई, उसमें हालांकि लाइफ के शोबे भी बढ़ गए, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि पुराने वक्त में लोग काबिल थे, आज नहीं। हाँ, एक फर्क जरूर है, फर्क ये है कि सादा जिंदगी थी, बच्चों को बचपन से ही कुछ ऐसे दर्स मिलते थे अन इंटेंशनली। मैं कहूँगा कि जैसे बच्चे के माँ बाप के पास असासा नहीं होता था ज़्यादा, बच्चा कोशिश करता था, ख्वाहिश करता था, तड़पता रहता था, फिर उसको चीज़ मिलती थी, वो लाइफ में एक सक्सेसफुल आदमी के तौर उभरता था, एक सक्सेसफुल औरत के तौर उभरती थी। तो उसकी वजह ये थी कि उसको लाइफ चैलेंजेस का पता था, और उसको ये भी पता था कि सादा लाइफ कैसे गुजारनी, और ज़्यादा अपनी निगाहें किस चीज़ पर मरकूज़ करती हैं। जैसे मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, जब मैं बचपन में बैठा था, मेरे वालिद साहब मुझे बताते थे कि आप खाली बैठे हो, कोई किताब हाथ में होनी चाहिए। तो मुझे तो मतलब परसों तक और आज भी, मैं अभी तालीम हासिल बाकी सोर्सों से कर रहा हूँ, मुझे पता था कि तालीम ही एक ऐसा जेवर है जो इंसान को हमेशा पहने हुए होना चाहिए, और ये हाँ रास्ता करना चाहिए। और ये भी ये तो बात सही है आज के दौर में भी, लेकिन आज बच्चे की निगाहें बहुत चीज़ों पर है। कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो बच्चे को तालीम नहीं देना चाहता है, लेकिन अब बच्चा जो है सोसाइटी, मैंने कहा चाहे, चूंकि मैंने शुरुआत इस बात से की, लाइफ बहुत वसी हो गई है, आज मौके बहुत है, आज शोबे बहुत, हाँ चॉइसेस ज़्यादा है, आज स्पोर्ट्स है, उस ज़माने में भी था, कुछ चंद गेम्स थी, और डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा स्पोर्ट्स थे, यहाँ कम। आज कल्चरल एक्टिविटीज़ है, आज ड्रामेटिक्स है, आज मॉडलिंग है, आज आर्ट है,
1: तो यानी
0: आज साइंस है।
1: आज के दौर में भी हमारे जो बच्चे हैं कम नहीं है, लेकिन उनको चैलेंजेस ज़्यादा है।
0: हाँ हाँ चैलेंजेस ज़्यादा है, कम नहीं है किसी से वो, और उनको गौर खोज करने के लिए जो है काफ़ी टाइम दरकार भी है, और

0: माँ बाप को भी उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मदद करने के लिए।
1: तो इसके साथ ही सामीन कराम, आज के इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है इंशाल्लाह रहमान, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर।
2: आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम बज़्म-ए-निस्वा, ये आवाज़ है आकाशवाणी श्रीनगर की। दिन का एक बजा जाता है, थोड़ी देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेज़ी खबरों का बुलेटिन नशर होगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
4: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है, इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
0: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
0: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
0: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
0: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है।
2: जी,
0: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
0: जी,
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
0: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुश

0: वो को दूर तक फैलाती है।
1: जी ये बात तो है।
0: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
0: जी
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
0: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद

0: विवाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
1: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।
0: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
2: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
3: बहन जी, डाकिया।
2: अच्छा, खोलते हैं भैया।
4: जी कहिए।
3: आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
4: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
3: तो कोई बड़ा है घर में?
4: हाँ, घर पर माता जी है ना।
3: जी बुलाइए।
5: माँ।
2: हाँ।
5: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
2: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
3: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
2: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
5: माँ, माँ।
6: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
2: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
6: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखूं तो।
2: हाँ।
6: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
4: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
4: ऐसे नहीं,
5: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
6: अरे योगेंद्र।
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
6: माँ,
4: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा, जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
4: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
1: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
0: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
1: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
0: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर

0: ने कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
1: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
0: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
0: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब, जी साहब।
2: चलो, हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
0: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ।

0: यहां भी राइफल की बट और हथगोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
1: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी, यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे। उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और R.S. रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: आप समाप्त कर रहे थे NCERT द्वारा तैयार करदा स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम उमंग।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर है।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 1:50 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन नशर होगा।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। तालीम के वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और OSM निज़ाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायात को हल करने का यकीन दिलाया है। सदर

0: उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन नेक्स्ट होगा।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। तालीम के वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और OSM निज़ाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायात को हल करने का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेस से अपील की है कि वो शहरियों पर ज़्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के तहत ज़्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है, नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार उनकी जगह लेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंग बंदी कशीदगी का शिकार है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों ने स्ट्रेटजिक तौर पर अहम आबनाए हुरमुज के नज़दीक एक दूसरे पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। और बैडमिंटन में PV सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में मुनक़िदा अलंकरण परेड के मौके पर सिक्किम पुलिस को बावकार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से नवाजा। इसके साथ ही सिक्किम इस एजाज से सरफराज होने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शुमाल मशरिक की 3री रियासत बन गई है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया कि वो शहरियों को ज़्यादा अहमियत दें, नीज़ अवाम और ख़ासतौर पर ख़वातीन, गरीब अफराद और बच्चों के मामलों में हसासियत का मुजाहरा करें।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से साइबर जराइम, ऑनलाइन धोखाधही और डीप फेक से मुतालिक खतरात से निमटने की गरज से तैयार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने अमन कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से निमटने में सिक्किम पुलिस के किरदार की सताइश की। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर गैर मामूली खिदमात, नज़्म व ज़ब्त और मुल्क के लिए खुद को वक्फ कर देने के एतराफ़ में पुलिस फोर्स को अता किया जाने वाला आला तरीन रस्मी एजाज़ है। इस दौरान सिक्किम को बाज़ाब्ता तौर पर एक मुकम्मल ख्वादा रियासत करार दे दिया गया है। ये ऐलान कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद के दौरान किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमलावरी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा है कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे की तरफ बढ़ना है और असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकत दारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के ज़रिए ठोस नतज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोबर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में तेज़ी लाएं। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपये मालियत के रेलवेज़, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वज़ीर आज़म ने शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों पर, खासतौर पर शहरी इलाकों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफ टॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि वादावन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर

0: किया जाना चाहिए, जहां हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक्स इको निज़ाम के साथ मजबूत किया जा सके। वजीर आजम ने दरियाओं को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट केन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी ताबुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निज़ाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज तलबा को यकीन दहानी कराई कि सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE की जानिब से नए मुतारफ कराया गया ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निज़ाम एक तरक्की पसंद वसीला है, जिसका मकसद ज्यादा शफाफियत को यकीनी बनाना है। जनाब प्रधान आज नई दिल्ली में CBSE अहदेदारों के साथ एक मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से गुफ्तगू कर रहे थे। OSM निज़ाम में खामियों और CBSE के 12वीं जमात के इम्तहान के लिए अजसर नौ जाँच के पोर्टल में तकनीकी खराबियों से मुतालिक तशवीश के सिलसिले में वज़ीर मौसूफ ने इस बात का एतराफ़ किया कि बाज़ मसाइल पैदा हुए थे। उन्होंने तलबा को यकीन दिलाया कि अज़सर नौ जाँच के जारी अमल के दौरान सभी शिकायतों का इजाला कर दिया जाएगा। जनाब प्रधान ने कहा कि उहदेदार इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सभी तलबा के मसाइल को हल ज़रूर किया जाए और सभी सतहों पर जवाबदही को बरकरार रखा जाए।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया आज सहपहर गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। कर्नाटक के पार्लिमानी उमूर के वजीर HK पाटिल ने सिद्धारमैया की जानिब से तलब की गई ब्रेकफास्ट मीटिंग से रवाना होते हुए इस बारे में मुत्तला किया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बताया गया है कि वो मुस्ताफी हो जाएं और वो बाकायदा लोकभवन में अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। उन्होंने मजीद बताया कि DK शिवकुमार वजीर आला की हैसियत से ओहदा संभालेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंगबंदी को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब दोनों मुल्कों ने आबनाए हुरमुज के नज़दीक एक दूसरे पर बराह रास्त फौजी हमले किए, जो स्ट्रेटजिक के तौर पर काफ़ी अहमियत का हामिल है। आज सुबह सवेरे अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के 4 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया, जो उसके मुताबिक आबनाए हुरमुज के नज़दीक अमरीकी फ़ौज और उसके तजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा बने हुए थे। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में सूरत हाल का जायज़ा लिया और अमन बरकरार रखने की गरज से की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों मुल्कों ने कल बीजिंग में भारत चीन सरहदी उमूर से मुतालिक मुशावरत और तालमेल के लिए वर्किंग निज़ाम की 35वीं मीटिंग के दौरान सूरत हाल का जायज़ा लिया। ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा या बकरा ईद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज आज सुबह अदा की, बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बकरीद की नमाज अदा करने के लिए लोग नज़दीकी मसाजिद में जमा हुए। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। रियासती सरकार की तरफ से सभी ज़िला पुलिस सरबराहान को एक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई नई रिवायत शुरू ना हो और ममनुआ जानवर की कुर्बानी ना की जाए। DGP राजीव कृष्णा की हिदायत के बाद पुलिस ने हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये त्यौहार पुरअम तरीके से मनाया जा सके। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेस से अपील की है कि वो शहरियों पर ज़्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के तई ज़्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE 12वीं क्लास के इम्तिहान में जाँच के अमल और OSM निज़ाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायात को हल करने का यकीन दिलाया। और कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है। नायब वजीर आला DK शिवकुमार उनकी जगह लेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये

0: Badminton: PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
1: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है. मीडियम वेव 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज पर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर. 2:15 हुए हैं. आइए समाप्त करें चंद फिल्मी नगमे. आगाज़ में साधना सरगम और उदित नारायण को सुनते हैं. यह फिल्म गुप्त.

समय ने आपको बताते चले, फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। अब आइए आखिर पे अलका याग्निक, कुमार शानू और उदित नारायण को सुनता है। यह फिल्म दिल है तुम्हारा।

आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। हमारा अगला ऐलान सुनिए।

फौज भाई फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं फिल्म शराबी के इस नगमे से, जिसे गाए हैं किशोर कुमार और आशा भोसले ने। इस नगमे को तारीर किया है अनजान और प्रकाश मेहरा ने, मौसिकी तरतीब दी है बब्बी लहरी ने।

जी दोस्तों, अब आइए शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर को सुनते हैं, यह है फिल्म बाजी।

जी दोस्तों, आपको बताते चले, फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं आपके अपने प्रोग्राम में, यानी फौजी भाइयों के प्रोग्राम में।

0: जी दोस्तों, फिल्मी नगमे जारी हैं, पहले ये वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
3: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
2: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आवर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
3: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
2: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
3: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
2: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
3: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
2: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
3: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
2: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
4: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
0: जी दोस्तों, प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है।

जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं उनको बताते चलिए, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन। इसके अलावा आप हमें DTH या AIR लाइव मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रोग्राम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म पति पत्नी और तवाइफ से। इस नगमे को गाया है सलमा आगा और मोहम्मद अजीज़ ने। गीत को तहरीर किया है आनंद बख्शी ने और शुरू में डाला है लक्ष्मीकांत पैरलाल ने।

जी दोस्तों, अब आइए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी में आनंद बख्शी का लिखा नगमा सुनते हैं। यह है फिल्म खुदा गवाह, आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की।

जी दोस्तों, कविता कृष्णामूर्ति और मोहम्मद अज़ीज़ के गाए इस नगमे के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल हुआ जाता है। इजाज़त दीजिए। जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 3:50 हो रहे हैं। अब आइए उर्दू खबरों का बुलेटिन समाप्त करते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं सईद मुशाहिद हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मुल्क में ईद उल अधा की तकरीब आज, नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए मुनक्किद। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के तहत जारी सरगर्मियों में तेजी लाने की लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत। सदर जमहूरिया ने मुल्क में अमन कानून को बनाए रखने और लोगों की बेहतरी के लिए काम करने की पुलिस फोर्सेस से की ताकीद।

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सफर के 4 बज चुके हैं। एक वक्फे के बाद पेश है आज का पहाड़ी प्रोग्राम।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आप समाप्त कर रहे थे आज का पहाड़ी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं मारूफ निसा। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला ऐलान सुने। इशो आकाशवाणी होंदो श्रीनगर स्टेशन, मीडियम अलाव FM 2 स्पिट। 4:45 सपित समय मोहतरम वली उच्चलंत बोजो। कलामी जानबाज करन पेश गुलाम नबी डूलवाल तसे थी।

0: उन्होंने स्टेज पर बुला लियो, छोटो जो बच्चो थो उसने, तुम उस स्टेज पर जिस वक्त गए हो तुम्हें टूटा फूटा अल्फाज जेड़ा उस हिसाब का लिखा हुआ था उस जमाना में शायरी का मैार का नहीं था, मैं पढ़िया तो मेरी हौसला अफजाई हुई, लोग हंसया, वो अपनी जगह बहुत खुश हो गए कि वो मैं तकड़ो शायर है शायद। लेकिन बाद में पता चली कि हूँ शायर नहीं थो, वह उन लोगों की मेहरबानी थी कि उन्होंने मीना हौसला अफजाई की, मैं अगे बढ़ने वास्ते, मीना कदम चाण वास्ते मीना एक मौको दी, तो उनको बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हौसला अफजाई हर वक्त की है। उस तरीका ना फिर मेरी पहली शुरुआत हुई, उसके बाद फिर वही मीना बुलाने लगा कि तुम मुशायरा में आया करो, तो वह आहिस्ता आहिस्ता मुशायरा में जान लगो, मीना पतो लगो कि शायरी किस रह की जाए के की हो जाए। फिर जहन में एक सवाल पैदा हो गया कि यह जी संजीदा शायरी है या तो हर एक लिखे लगो, तो क्यों ना इस तो हट के कुछ की हो जाए। फिर मैंने इस तंज मिजा वाला पास जरी लुत्फ आयो, इस पास लिखने की मैंने जरूरत महसूस हुई। यो भी नहीं पतो थू कि इसमें मैं को आगे लिखे लगो, यो पतो ही नहीं थो। बाद में जिस वक्त गुजरी अदब में पढ़े फिर पतो लगो कि नूर मोहम्मद नूर जा लोग लिखे लगावा, नजीर अहमद नजीर जा लोग लिखे लगावा, इश्तियाक अहमद शोक जा लोग लिखे लगावा, जितने नसीम पुंशी साहब हैं जिनकी उनकी एक किताब खेचल आई है नसरी अदब है, तो मजा ही आया। तो इस तरीका ना इश्तियाक अहमद शोक हैं, फजल मुश्ताक साहब हैं, इन लोगों को बाद में पता चले कि ना मजा में ये लोग भी लिखे लगावा और अच्छो लिखे लगावा। तो बहरहाल इनकी कुछ चंद चीज में पढ़ी, जिस तरह बाबू नूर और उनको दो ब्या है वो में पढ़े, तो इस तरीका ना आगे बढ़ दोगे। तो एक बार हॉस्टल के बीच एक रजौरी को एक शायर तशरीफ ले आए, तो उसने कुछ शेर सुनाया कि ये मैं पढ़ना है जी महफिल के बीच, फलाने जगह कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें ये पढ़ना है। तो मैं भी सुने तो मैं सोचे हम इस तरह की चीज़ लिख सकूँगा, फिर मैं भी शुरू कर ली। बहरहाल उसकी वह नज़म थी सौकण, मैं क्या हम ही सौकण लिखूँ तो हूँ कितनी इस तो अच्छी लिख सकूँगा कि इस तो बुना ही रह के लिखूँ। बहरहाल मैं भी लिखी और उसना बड़ी हौसला अफजाई हुई जिस वक्त वह मैं सुनाई, रेडियो पर सुनाई, टीवी ते भी नशर हुई, अकेडमी वाला ने छापी, मुशायरा में भी पेश होती रही, बड़ी जगह वहाँ पढ़ी गई, तो बहुत हौसला अफजाई लोगों ने की और बहुत लोग हंसया उस पर। तो फिर मैंने अपनी जगह एक हौसलों मिली कि ना हूँ लिख सकूंगा।
1: ताजुद्दीन ताज साहब एक शायर जुड़ा हुआ है, एक उस्ताद की हैसियत भी रखे है। इसके नाल नाल यूं थारा से पूछना चाहूंगा कि घर के बीच या थारा इलाका में और भी कोई शायर थो जिससे तुम मुतासर हुआ कि इतफाकन तुम लिखता गया और दरिया के नालू चलता ही गया।
0: नहीं ऐसो ग्राम कोई नहीं थो, मेरे एक उस्ताद अहमदीन अनवर साहब है
1: जी,
0: वे उर्दू का शायर हैं, तो उर्दू में भी लिखे हुए था, तो कितने स्कूल में कोई फंक्शन हुआ था तो वे शेर पाठ छुड़े था, तो मेरा जहन में भी शेर रहे था अच्छा शेर क्या, तो वह एक थोड़ी जी थी कि ये उर्दू में लिखे, तो गोजरी या पहाड़ी या पंजाबी इन चीज़ों अंदर किसी को ध्यान उस वक्त नहीं था। तो बहरहाल जिसको हम श्रीनगर में आ गए, मैं उन थारा का जिक्र कर छोड़े, तो उन लिख तो गए और मतलब गोजरी जबान में उत लिखने वालों उस वक्त में कोई नहीं था। बाद में जिसको तुम श्रीनगर में आए फिर आस्ता आस्ता पता चले कि शरीफ शाहीन साहब लिखे था, वे लिखे हुए था शायरी, और उस तो अलावा डॉक्टर बारू साहब हैं, वे कहानियों का शाहकार है, ला उनकी किताब आपती छाँ आई है, उनकी कहानियों में मिजा है, मिर्जा खान वकार की जैसे गल करा कि वे कहानियों में उनकी मिजा है, बहुत अच्छी कहानी लिखी और मतलब वे इस वक्त दुनिया में मने जी उनकी शोहरत है, गोजरी कहानियों का कहीं तर्जमा हो
1: सके। गलबात को सिलसिला जारी रहेगा और इस फन की गल हम करता रहेंगा, तुमने हमारा सामीन वास्ते के कुछ आने है।
0: देखिए गजल की गल करा था कि गजल जड़ी है संजीदा गजल मारा शायरा ने मुझे लिखी है, तो मैं भी थोड़ी जी कोशिश की कि मैं इस मैदान में थोड़ी जी हरकत करूं
1: जी।
0: तो मैं एक गजल लिखी है, मैं के ख्वाब बखानी रात होयो पानी पानी रात, अखां अगे सब कुछ फिरता आ गई याद पुरानी रात, अखां अगे सब कुछ फिरता आ गई याद पुरानी रात, चन की चान लोड़ू चन फिर अड़ीक ने खानी रात, या तरती है मेरी मुजरम या तरती है मेरी मुजरम, मेरो खादो हानी रात, मुक्की नींद ख्वाब गमा फिर के ताज टपानी रात, मैं के ख्वाब बुखानी रात होयो पानी पानी रात। ते दूजी एक गजल और है छोटी बैर में लिखूंगा, छोटी बैर की है, आ तू दुनिया सारी ले जा इश्क की एक बीमारी दे जा, चंद तू उफरा उडारी दे जा कौम ना हिम्मत सारी दे जा, नोई एजाद की लारी लाता नोई एजाद की लारी लाता, तकड़ी एक सरदारी दे जा, तीर वफा को लाण की खातर नजर एक तेज शिकारी दे जा, ताज महल के बदले मीना।

0: ताजमहल के बदले मीना टूटी याद की टारी दे जा।
1: मारी गोजरी जुड़ी शायरी है, इसमें संजीदगी है और वह हमारा तवारीखी तौर पर शायद विरासत में मिली है, लेकिन मिजा या शायरी की तरफ घट लोग आए हैं और हमारा जरा नौजवान आज जी अकेडमी की तरफ किताब छापी जाए उस तरफ उनको रुझान बड़ो काट है, जो भी शेरी अदब है, क्योंकि हमारा जो लोक अदब है एक तो नसरी अदब है दूजो शेरी अदब है, इसके बीच कितनी गुंजाइश है तरक्की की ओर और लोगों तक मिजा या जड़ी शायरी है वो पहुंचे, एक तो उसको जुड़ो वसीलो है वो रेडियो है, बाकी और प्रोग्राम किस सतह का होना चाहिए ताकि ये जड़ी चीज है लोगों तक पहुंचे और बड़े जल्दी पहुंचे क्योंकि आज इंटरनेट को जमाना भी है।
0: तो जनाब हमारे को वसाइल का मामला है, वसाइल बहुत काट है, मिसाल के तौर पर कल्चरल अकेडमी जड़ी है हर साल 20-30 तक इशू जरा किताबों का छापे, लेकिन बदकिस्मती यह है कि माम कभी खरीद के पढ़ने वास्ते हमारा लोग तैयार नहीं होता, वे किताब उन लोगों तक पहुंचे जेड़ा आपे लिखें तो आपे पढ़े, मिसाल के तौर पर हूँ लिखूँगा हूँ ही किताब लिया हूँ ही पढ़ू, तू जब कोई लिया सह नहीं, नौजवान तब को जो है वो नहीं खरीद तो किताब नहीं लिया, तो उसकी वजुहत यह है कि जैसी नजर मारी एक गजल है वह संजीदा है उसमें दुख भरे हुआ है दर्द है, सोचो जी छोड़ो दर्द को हमें क्या करना है, राग छुड़ी नहीं लेता उनका इंटरेस्ट उनका की दिलचस्पी की चीज़ नहीं मिलती, इस वजह तो भी मैं नहीं करता। और उस संजीदा शायरी का लिखने के पीछे भी एक राज है, क्योंकि हालात ने हम लोग इतना दबाया कि जो कुछ अपना ऊपर बीती वह उसने कलम बंद करके लिख छोड़ी, हालात ने मतलब संजीदगी की तरफ ज्यादा मोड़े, कम लोग के जरा मतलब मिजाज की तरफ उन्हें आया या लिखने लगा, हालात ने दबाया हुआ था, मिजा भी बजाते खुद जो है वो दर्द ही है वो भी दुख है उसकी सूरत है कि इंसान रो तो हुआ है अंदरों लेकिन बाहर हुआ हैसी की जबान जड़ी है मजाक को जबान मखोलिया चीज लिख छोड़ा है, तो वह आम लोग उसने मजाक समझ के हंसे मी लेकिन जिसे भल तरह समझे तो वह भी संजीदगी है वो भी संजीदा चीज है।
1: ताज दिन ताज सर थारी गल दुरुस्त है, हमारा जो नौजवान है इस अदब ते आज तक बिल्कुल उनको कोई वास्तव ही नहीं और उसके नाल नाल जो मारो नशर अशियात को जो तरीको है उस तक रसाई मारी नहीं, तो यो अदब जो इसकी निखार जड़ी है या इसकी फलाह बहबूद वास्ते के कोई कारण की जरूरत है
0: इस वास्ते सब तो बड़ो प्लेटफॉर्म यो ही है कि एकदम रेडियो तो का हवा में आई चीज चली गई
1: जी
0: महफूज मत रही, किताबी सूरत में महफूज है लेकिन पढ़ने वाला काटे, इस वास्ते सेमिनार होना चाहिए, इस वास्ते एनजीओ काम करनी चाहिए जिस तरीके ना बाकी जबानों का लोग करें लगावा, हमारी गमंडन जबान है कश्मीरी इसके भी कितनी तरक्की हो रही है, कितना हर मतलब ग्राम हर इलाका हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे सेमिनार करें जबान पर गल करें कॉन्फ्रेंस करें, इस तरीके ना हमारी भी होनी चाहिए, कल्चरल अकेडमी एकली नहीं कर सकती क्योंकि उनको वसाइल काट हुए वे एक कॉन्फ्रेंस कर छोड़ेंगे साल में उसके भी ज्यादा तो ज्यादा 500 आदमी जमा हुआ है वो या 1000 जमा हो गए बड़ी हद है, और वे लोग होएगा जेड़ा दानिश्वर लोग होएगा अदीब लोग होएगा आम लोग थोड़ा जा होएगा, आम लोगों थोड़ी गल मत पहुंची वह महदूद लोगों तक पहुंची ना जिन्हें ऑलरेडी पतो है कि ये क्या है, उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें यू पतो नहीं कि जबान क्या है जबान के बीच किन चीजों की जरूरत है के करना है अगर नई नस्ल जड़ी है उसने किस तरीका ना आम चलावेंगे वे किस तरीका ना इस मैदान में आवेगा वे जबान वास्ते के करना चाहिए उन्होंने के मसला मसाइल हमारी जबान दरपेश वे करना चाहिए, जिस तरह 8वां शेड्यूल में हमारी जबान ना आ जाना चाहिए उस वास्ते जदोजहद मुझ लोग कर रहे हैं, तो बहरहाल किस साल हद तक कामयाब हुए के हुआ वह दूजी गल है लेकिन कोशिश जारी है उस वास्ते हमारा नौजवान नमी ज्ञान हो चाहिए।
1: ताज जी ताज साहब चूंकि हमारी जो शायरी है और जो अदब है इसके बीच इनकलाबी शायरी की बड़ी गुंजाइश है और इस फन के नाल तम जुड़िया अदीब होने के नाते किन लोगों और नौजवानों की जड़ी सलाहियत उन उभारे हो जाए उन इस तरह रागब की हो जाए, क्योंकि 20वीं सदी का शुरुआत का दौर में जब अलामा इकबाल 1905-8 तक जब यूरोप में गया या अल्ताफ हुसैन हाली की अगर हम गल करें तो उसने बड़ी इनकलाबी शायरी लिखी कुनोलिया दौर में, तो उस तरीका के जो बदलाव की जरूरत है जरा लोग ग्रायां ते शहरा में चाहे और शहरा ते बड़ा जरा शहरों में गए तो बच्चा के अंदर नौजवानों के अंदर इनकलाब आने हो जाए उनकी सोच में तब्दीली आनी जाए उनना अपना माजी ऊपर फख्र महसूस करना चाहिए, इस वास्ते एक शायर होने के नाते तमकी महसूस करे
0: या कमी महसूस करूँ की ये इनकलाबी चीज जी हमारे को बहुत काट है जो शुरू का जरा हमारा बुजुर्ग शायर था उन्होंने शुरू में कुछ चीज ऐसी लिखी है जिनके बीच इनकलाबी चीज थी, जिस तरह के इसको फजल मुश्ताक को एक शेर याद आवे हिम्मत करके मारो हलो ता बने वो काम सखलो, इस तरीका ना और लोगों ने भी मतलब लिखी है चीज मगर बहुत ज्यादा लिखी नहीं गई कमी महसूस कर रहा इस चीज की, तो मैं मतलब कोशिश की है कि मिजा के जरिए भी कई चीज जड़ी है तो वे इस तरह इनकलाबी चीज को तक कामयाब आऊंगा।

0: या हजल थी इस तो अगे हूं तमना मतलब वह गल कर रहे थे कि शुरू की जड़ी मारी शायरी थी वह इस तरह थी कि माहौल जिस तरह को उसी तरह लोग अगे चलता गया। यानी शिंगरां को किते जिक्र हुआ है, किते मालां को जिक्र हुआ है, किते हवा को जिक्र हुआ है, किते तलां को जिक्र हुआ है, किते सोना सोना कठां को जिक्र हुआ है, ठंडा ठंडा पानियों को जिक्र हुआ है। इस तरह मतलब सीआरफी है
1: शायरी जड़ी है बारह माह को या जिस भी माहौल के बंदो बैठो है उससे वह तो शायरी लिखा क्योंकि बैसाख जो वो सियाल बैस के भी ठंड में भी लिख सके।
0: देखिए मेरा अपनो जो नजरिया वो यो है कि वो शायर पर डिपेंड है कि वो शायर किस हैसियत को वो के लिख सके, वह उसकी अपनी ताकत की है
1: जी।
0: वो किस तरीका ना माहौल तो मुतासर होकर लिखे या उस तो बगैर लिखे किस तरीका ना लिखे, मगर उस जमाना का लोग भी इसी तरह लिखता रहे जिस तरीका ना मतलब माहौल उन्हें मिलता गया उसी तरह लिखता गया। यानी सियाल को मौसम थो तो फिर उन्होंने सियाल की गल की है, बाहर को मौसम आ तो बाहर की गल की है, जिस तरीका का माहौल मिलता रहे वे उस तरह करता रहा। तो अपने मुतालिक हूँ या कहूँ कि हूँ अगर सियाल में गर्मियों की गल करूँ तो कर सकूँ, तो गर्मियों में सियाल की गल करूँ कोहरा की गल करूँ ठंड की सख्त ठंड की गल करूँ तो कर सकूँ अल्लाह का फजल ना। लेकिन अक्सर मतलब राय लोगों की है कि शायर जो है वो हालात से मुतासर होकर का चीज लिखे।
1: गोजरी जो अदब है शेरी अदब यो बड़ो ताजो है कला मुझ भी जुड़ी हुई नीली नहीं हुई, तो इस अदब के बीच तनकीद की कितनी गुंजाइश है?
0: तनकीद की बहुत गुंजाइश है लेकिन तनकीद बहुत काट की गई है, तनकीद बहुत काट है जितनी होनी चाहिए थी मारा लोग इस मारा माजा बहुत काट लिखे तनकीद के मुतालिक उतना मारो रुझान जो है वो अगे नहीं बधे और होनी चाहिए। जब तक तनकीद नहीं हो सके हम अगे नहीं बध सकते, तनकीद नाल एक माशरा को सुधार हो जाए, अदब जो साफ शफाफ अदब सामने आवा है। मतलब मेरे में कुताही अगर मेरे पर तनकीद लिखी जाएगी चार आदमी तनकीद लिखे पांच आदमी लिखे जिस वक्त तुम सोचूंगा कि यार मेरे में इतनी गलती है दोबारा हूँ भी गलती नहीं कर सकू सुधर जाऊंगा उसना सही तरीका ना पेश करने की कोशिश करूंगा उस तरीका ना अदब जो है वो मेरी अदब आवे।
1: गोजरी जबान और अदब ना किड़ा किड़ा मसाइल जड़े वे दरपेश हैं, इसके बीच कोई रिसर्च भी हो रही है क्योंकि मगरबी तहजीब उसका असरात है, इंटरनेट को दौर है, बाकी जबाना के जो लहजे हैं उनका असरात है,
0: ये चीज हमारे सामने है। मतलब दूजी जबाना का असरात जड़ा है, बाकी मगरबी इस वक्त दौर को जड़ो हमारे पर असरात हुए हैं, लेकिन उस तो पाका क्या हम उन चीज़ों में मतलब उस नहीं है जिनमें बाकी लोग हैं, हमारा मारो कल्चर अजम भी सेफ है लेकिन हमारा भी कोशिश करनी है काफ़ी ताकि हम इसे और सेफ कर सकें। मारो फोक का दबा जो हमने उसमें प्रोजर्व करना चाहिए वो कितना ज़ाया ना हुआ है, कहानी है गीतें बाकी चीज़ें तो वे चीज़ हमें प्रोजर्व करनी है और कोशिश यह करनी है कि हम अपनी जबान जी बोलने की कोशिश करें। तो उसमें कुछ संजीदा चीज भी है, कुछ नात भी है, तो नजम भी है, कथा भी है, तो गीत भी है। तो सवाल दो नजम सुनाऊ। मेरी मुंह मंगलार बनी है, पूरा कार पर पार बनी है, टुक देखू डार बनी है, तो बारार ते पार बनी है, पांडो टेंडर कार बनी है, चंडे मुच लोहार बनी है, मुंह लड़का अंगार बनी है, पारा रिच की नार बनी है, सुख सुख देखूं तार बनी है, चंगी मोटी खार बनी है, एक अंगाल की चार बनी है, ओकड़ सिर तलवार बनी है, कंडा की सरकार बनी है, मेरा गाल को हार बनी है, यारी ला के यार बनी है, दिल के अद बचकार बनी है।
1: ताई दिन ताई साहब तो उन्होंने किताब भी बड़ा ज्यादा लिखे हैं और अच्छा लिखे हैं, तुम्हारा सामीन वास्ते सौगात के थारे
0: के मोबाइल के ऊपर है, कन मुंडा के फोन मोबाइल उनका चावे कर में फाइल, गए के रसो काल होर किला के डाडी कर ठकोर किला के सजे खबे की करता कटी तंगे जोर किला के। फिर गए की तारीख ना मतलब इसको जोड़ है, रात की दीती जगराता ने खटी सुतंगा कटा जागतंग की कटी, वेड़ो खड़ा के ताज नहीं था तो पोता आज पोगते दादा की चटी, ख्वाब को ताणो कातले ता मनु सूत वफा पड़कतले ता मनु, तकवा को मुला गातले ता मनु जे अबलीस न प्रतले एक गया हो रहा है कि मैं पिछली बरिया पांडो तोयो पानी आली बां थिंदी है, मैं पिछली बरिया पांडो तोयो पानी आली बां थिंदी है, नाल जमण के मक्खन खादो सोच सरोड़ी तां थिंदी है, अंदरों पावे लुखो दिसै

0: बारों यार की हां थिंदी है, मां मोई है खाखा लुखो ती उसकी को ना थिंदी है। तो आगे यो है बड़ी पर बड़ी सथरो डा खुरली मां तक फिर खोरो ता खुरली मां जेते खाणो दूध ते मक्खन ता राख पूरो का खुरली मां।
1: ताई जी ताई साहब धारणा अदब बारे गल हुई, तुमने कितनो काम कियो और इसमें और कितनी गुंजाइश है, और वैसे तो शायर तम कड़ी चीजें की बेबसी जुड़ी है ना वह महसूस करें, ताकि नौ नौजवानों तक जुड़ा मारा शायर था कदीम शायरी जुड़ी हुई है वह एक वरासत है वह नौ नौजवानों तक पहुंचेगी ताही उसको फायदो है।
0: जी
1: तुमने स्टूडियो में तशरीफ आनी थारो बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
2: गोजरी मिजाइया का नामवर शायर चौधरी ताजदीन ताजोर ने हमने गलबात की थी, तो यो इंटरव्यू उनको आर्काइव्स से हमने कढ़े थो। अगला प्रोग्राम हमारा एक कुल नात शरीफ है, ताओ सुन ले।
3: तमन्ना दिल मा नाले दे करारी

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। 5:50 हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ से गोजरी में खबरें निश होंगी। याद रहे कि गोजरी खबरों के फौरन बाद यानी ठीक 6 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन भी ब्रॉडकास्ट होता है। पहली खबरें गोजरी में।
1: सामीन आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है। 5:50 हो गए हैं। गोजरी खबरनामों लेके है हूँ रियाज अहमद बिजाड़ हाजिर। पहला इस वक्त तक की खास खबरों पर एक नजर। मुल्क में ईद उल अजहा की ये तकरीब आज, नमाज ईद का होया बड़ा बड़ा इज्तिमा। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के तहत जारी सरगर्मियों में तेजी आने की लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत। सदर जमहूरिया ने मुल्क में अमन व कानून बरकरार रखने और लोगों की बेहतरी वास्ते काम करने की पुलिस फोर्सेस ने दी हिदायत। ते मुल्क का बिस्तर इलाका में बढ़ता दर्जा हरारत न देखता लोगों ने एहतियात बरतन की सलाह। और खबरों की तफसील। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा मजहबी जोश और अकीदत ते एहतराम न मनाई जा रही है। मुल्क का अलग अलग हिस्सों में नमाज ईद का बड़ा बड़ा इज्तिमा होया, जिसके बाद लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करता जानवरों की कुर्बानी दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधा कृष्णन, वजीर अजम नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबिनी वजरा सकीना यत्तू, जावेद अहमद डार, जावेद अहमद राणा, सतीश शर्मा, जम्मू कश्मीर असेंबली का स्पीकर अब्दुलरहीम राथर, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन सैयद डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और जेडीयू का प्रदेश सदर जीएम शाहीन ते अलावा कई शख्सियात ने ईद उल अजहा की मुबारक मौका पर लोगों ने मुबारकबाद दी है। समाज का मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाली कई शख्सियात ने आवाम के ना अपना ईद पैगाम मक्यो।
2: मैं बहैसियत वाइस चांसलर स्कॉस कश्मीर प्रोफेसर नजीर अहमद आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ। ये मुकद्दस त्यौहार

0: लोगों ने सलाह दी जे वे मशरूबात को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा जे लोग जानवर और परिंदा की तेस बुझाने वास्ते घर छत दुकानों और दफातर के बाहर पानी नाल भरिया छोटा छोटा पांडा रखें। जम्मू कश्मीर में भी बढ़ती गर्मी महसूस की जा रही है। जम्मू खिता का बेशतर इलाका में गर्मी की शिद्दत में हर लंघते दिन बदो वो तो जा रहा है। बढ़ती गर्मी ने देखता लोगों ने कई एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है ताजे वे इसका मुजिर असरात से बच सकें। इस सिलसिला में जम्मू म्यूनिसिपल कारपोरेशन का हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर न गल करता क्यों
1: दिन ब दिन गर्मी जो है ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहे हैं, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें और कोई फ्रूट पपीता है, वाटरमेलन है, कुकम्बर है, जिसमें थोड़ा सा लिक्विड्स वगैरह हमें मिल जाते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।
0: महकमा आला तालीम ने सरकारी डिग्री कॉलेज में यूजी दाखला वास्ते ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म जमा कराने और कॉलेज तरजीहात अपडेट कराने की आखिरी तारीख बता दी है। महकमा आला तालीम के मुताबिक उम्मीदवार हूँ 3 मई शाम 5 बजे तोड़ी दाखला पोर्टल jkadmission.in पर अपनी दरख्वास्त जमा करा सकें। इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशर ने आकाशवाणी श्रीनगर गल कर दी और क्यों
2: हमारा जो लास्ट डेट था सबमिशन ऑफ फॉर्म वो 27 5 बजे तक था, अभी हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। हमारे पास सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत रिप्रेजेंटेशन आई थी तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब 30 तारीख 5 बजे तक लिंक खुली रहेगी और मेरी गुजारिश रहेगी स्टूडेंट्स के साथ कि वो अपनी चॉइसेस चेंज कर सकते हैं। अभी भी हमने जो उनका टेंटेटिव मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया है तो उसको भी देखकर वो अपनी चॉइसेस बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कॉलेज वाइज और प्रोग्राम वाइज। तो ये प्रोसेस सारा अभी 30 तारीख तक स्टूडेंट कर सकता है। तो 5 बजे लिंक बंद हो जाएगी तो ये फिर बाकी जो शेड्यूल है वो उसी शेड्यूल के हिसाब से लिस्ट निकलेगा और फिर राउंड 2 हो जाएगा और स्पॉट राउंड हो जाएगा।
0: इसके नाल ही गोजरी खबरनामो मुक्यो। खबरों को अगलो बुलेटिन 6:05 पर कश्मीरी में नशर वागो। देव इजाजत, रब रखो।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
4: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
3: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य

0: योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव अक्सा 1700 किलोहर्ट्ज़ तो एफ एम 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पेट शबजत 5 मिनट सपद अक वक्फ पत पेश गमी बान हिंद खदर सोन अजिक प्रोग्राम।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज़ जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुँचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।

0: आकाशवाणी श्रीनगर एनसी दरवाजस पे मीर जाफर साहब अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, तुहुंद खुश आमदीन, तुहुंद उन वसनिस गामस में तशरीफ।
0: जाफर साहब, शुरुआत किथ पेड़ गई कि विकेनस छु तुह मठ मठ करा वजीर आजम ते प्रत कह छु तुह विकेनस मुबारक करा।
1: शायरन छु दोम दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, यम साथ लगातार उस चाहे सो प्रिंट मीडिया ओसा या सोशल मीडिया ओसा कि सानी कशीरियंस हालत क्या शाज सिकमज यम साथ रिपोर्ट उस दीवान की यीत्या केसेस हसा छै सीवन एनुअली और अत हसा छ अक रीजन अक कि यम कैंसर पेशेंट्स विकन कशीर मज छ दो खो दो बडान अत हसा छ रीजन तंबाक सिगरेट तो बे तरफ छ एस आई दिन बोजन कि कत कत छ विकन कशीर मज मुनशियात केस दो खो दो बडान यम साथ ब अच चीज अस पे लगातार उस गोरो फिकर करान तो मे पे पन्ने गामक नौजवान पन बुजुर्ग या यम अस अंद पक नौजवान तो बुजुर्ग तुम्हन हज जिंदगी हुंद अख सु स्टेज यथ मन तुम बिल्कुल चाहे तंबाक चवन या सिगरेट चवन मे पे अत बारस मज सोचन कि ना वही गो नेर कह मे पज अत बारस मज खड़ा गसुन मे पजन आगाह करें कि कम मुजिर असरात अमिक क्या यम सात बोजन कि फलानी गामस मज मोर अक बचन मोज रीजन उस तथ मुनशियात फलानी जाए हसा मरख चोर रिश्तेदार तथ हसा उस पत कि वजह यह ड्रग्स मे बसो कि ना अल्लाह तला बचिन अगर सनिस गामस मज पगह यह हालत गई अस रोजो नबर नर लायक तह तो मे कर पन्न गामक दुकानदार सत मे समझ तुम और मे वो तुम कि इस ये सिगरेट तंबाक यह विकन असली वजह कि अति पे सोन बच्चे ड्रग्सस कुन गसान तो लिहाजा यह शरीयत मज हराम तु तो पजन नम कस्म चीज दुकान पे थवन कह कर मे तैयार तो आखिरकार रलित मिलित कर अस मज बेहतरीन पहल स्टार्ट।
0: जाफर साहब, यह क्या करू तुम स्टार्ट यह वनो तुम मगर यह क्या जरूरी यह पहल करें अत मुतलिक वन तो यह कर गो असली
1: अत मस बह कल हथ सोचन जसास त्रोहस मज ते वोन मे अक दो पन्ने जामे मस्जिद शरीफस मज जुमह किस मौकस पे लकन तुमन हाई मे बाजत पे पोस्टर हज यथ मज तुम बह हावन कोशिश करान कि यम सात अकिस इंसानस चाहे लंग कैंसर गसन थ्रोट कैंसर गसन माउथ कैंसर गसन तम सकलो सूरत किस पत बनान तम पत वोन मे तुम कि उस पोस तु तमकिस तो सिगरेटस पे खर्चा अगर तु अमुक वो कि दहन वुहन वर्यन मज या तरहन वर्यन मज कोता पोस छु तुम अत लगोमुत तु ग हरान कि काश यह पोस अस निश विकन मौजूद आसुन या पोस उस अत चीजस पे खर्च कोर यह विकन बदल चीजस पे खर्च कोर्मुत सै हालात आ बदल और अलहमदिल्ला तम सात आई अकस शख्स मे कत समझ सो गो खड़ा गुलाम हसन मीर साहब दोपन ना बहुस विकन वाद कर बह त्र आज कम अज कम पंचाह वुहर बाद तमोक चोन मगर तम पत कर मे जोह मज अत बिल्कुल अख पहल ब्या शुरू हज ये मे दुकानदार सत कर तम पत गोस बह लगातार जामे मस्जिद शरीफस पे क्या मे पाई कि यह वाहिद सो मरकज अत वादा मज लु जमा ग और अत हन कत लुक समझ मे कर त्रेन चोन जुमहान पे लुकन सत और तुम समझ कि कथ कहंद सेहत खातर त मुजिर और पोस तुम जाय ग तुहद बचन पे अमुक बुर असर पेवन और सनिस समाजस मन अमुक बुर असर पेवन तु तो वो कशीर मज कस हालत विकन साड त्रोह लच खत ज्यादा लुक यम ड्रग एब्यूजस मन वजूहत यह कि अस गोड़ पे अत चीजस पे सन मगर अस सने कह तो शुक्र खुदायस कुन तम ते कत समझ और अस गई अत चीजस मह ज्यादा कामयाब।
0: जाफर साहब, इत पे तुह त फरमो साड त्रोह लच खत ज्यादा अगर लेटेस्ट सर्वे वो यानी ताज सर्वे वो तथा मजा तकरीबन हा पंदा लच लुकन नशस मज मुबला तो अगर अस शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सौरुच डेटा वो तम फरमान दपा विकनस हा कैंसर केसेस यीत्या बढ़ान कशीर मज यानी सरकारी डेटा वन बह सास केस हा प्रथ वरी बढ़ान अत मज कुनवुह फीसद उस म्याद कैंसर शुरह फीसद शुश कैंसर तो यम खतरनाक स्टैटिस्टिक्स वुछत तो पनुन गाम वुछत यथ मज तु विकनस ड्रग फ्री विलेज तुह क्युत फील ग पन्नी जाए तुह क्युत महसूस ग वन पूर मुल्क मज कि फलान गाम अस पज तुम कुन वुछन तमो कित पे कर कोशिश अस पजन तहद नक्शे कदमन पे पक
1: ज्यादा खुशी मिलान क्या मे विकन पन्नी जाए बासन कि वाकई इस मे यह कम पन्नस गामस मज कर पन्नस इलाकस मज कर वारिया तुम नौजवान यम मुनशियात मज फसमित सिगरेटन कुन लगमित वारिया बुजुर्ग इन बिचार पई ओस कि अम स नुकसान हि ग कोता तबाह हेको गुम यम सात वापस आई मे बासन अल्लाह तला कर मे कम कबूल

0: और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
1: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें खोल दी।
2: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
3: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
4: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
3: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आवर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
4: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
3: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
4: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
3: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
4: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
3: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
4: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
3: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
5: शेरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। मगरबी एशिया में जारी गैर यकीनी के पेश नज़र एयर इंडिया ने आज ऐलान किया कि तेल अवीव और दिल्ली के बीच परवाजों की मुअत्तली जुलाई के अवाखिर तक बढ़ा दी गई है। इससे कबल फजाई कंपनी ने जून के आखिर तक परवाजें मुअत्तल रखने का ऐलान किया था। ताहम खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल वाजे न होने के बायस ये पाबंदी मजीद 1 माह के लिए बढ़ा दी गई है। इसराइल में मुकीम हजारों भारतीय शहरी इस फैसले से मुतासिर हुए हैं, जबकि महदूद परवाजों के बायस सफरी अखराजात में भी इजाफा हुआ है। समेत पूरे शिमाली और शिमाल मगरबी भारत में इन दिनों गर्मी की शिद्दत में होश रुबा इजाफा हुआ है और लोग गर्मी के बायस तरह तरह की परेशानियों में मुबतला हो चुके हैं। मौसम इतलात के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मुढ़ेका इलाकों में पिछले 2 हफ्तों से दर्ज हरारत 45 डिग्री के आसपास पाया जा रहा है, जिसके नतीजे में मुतल्लिका आबादी के मामूलात पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इधर जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकाजात, बिलखसूस जम्मू शहर, कठुआ और सांबा में भी गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शदीद गर्मी के बायस लोग बेहाल हो चुके हैं और दिन के वक्त बाजारों में लोगों की खासी कम तादाद दिखाई पड़ती है। इसी दौरान इन इलाकों में आज बाद दोपहर से मौसम में हल्की बेहतरी के इम्कान दिखाई देने लगे हैं। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब।
6: शदीद गर्मी और गर्म लू ने सारी राजधानी जम्मू में पिछले कई दिनों से आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। इस दौरान नौकरी पेशा, मजदूर, दुकानदार और स्कूलों की तरफ जाते तलबा को तेज शदीद गर्मी का मुकाबला करने के लिए सख्त तकलीफ का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ दिन के वक्त कारोबारी सरगर्मियां ना के बराबर है और लोग दिन के वक्त अंदर रहना ही पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि तलबा का स्कूलों और कॉलेजों की तरफ जाना मुश्किल हो गया है। महकमा तालीम ने जम्मू में जून की पहली तारीख से स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। वाजह रहे कि गर्म लू और शदीद गर्मी से बचने के लिए यहाँ सड़कों पर ठंडाई बेचने वाले, फ्रूट चाट फरोश, मलाई कुल्फी की रेहड़ियों पर दिन में काम करने वाले लोगों को देखा जा सकता है। लगातार पड़ रही शदीद गर्मी के बाद आज दोपहर से जम्मू के आसमान पर बादलों ने कुछ उम्मीद जरूर पैदा की, लेकिन दर्ज हरारत और गर्मी में कोई खास नरमी देखने को नहीं मिली। वहीं लोगों का कहना है कि यहाँ शदीद गर्मी की वजह से दिन में तकलीफ तो है और इसी दौरान पावर कट की वजह से भी शिद्दत की गर्मी और बढ़ जाती है और कई इलाकों में पानी की कमी को लेकर मुजाहरे भी देखने को मिल रहे हैं। याद रहे कि यहाँ शहर में खवातीन मर्द दिन में सख्त धूप से बचने के लिए छातों का इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं। शहर में दिन के वक्त सड़कें सुनसान नजर आती हैं, इक्का दुक्का ही गाड़ियां और लोग नजर आते हैं। ऑटो रिक्शा वाले भी सवारियों के इंतजार में जरूर होते हैं, लेकिन काम के मंदे ने उनके काम पर भी असर डाला है। शिद्दत से पड़ने वाली गर्मी को लोग पिछले लगभग 10 दिनों से झेल रहे हैं और अभी भी महकमे मौसमियात की तरफ से मौसम में किसी बड़े बदलाव की पेशनगोई सामने नहीं आई है। हालांकि सिर्फ आज दोपहर के बाद आसमान पर बादल छाए और मौसम में हल्का सा बदलाव देखने को मिला। बात जम्मू जिले के अलावा कठुआ, सांबा, विजयपुर की करें तो हमारे साथी रमेश मरहट्टा के मुताबिक शदीद गर्मी और लू चलने के साथ साथ पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग सुबह सवेरे या देर शाम ही अपना काम करने के लिए बाहर आते हैं, वहीं बिजली की कटौती से लोगों का बुरा हाल है। जम्मू में आज अबरालूद मौसम ने शदीद

0: गर्मी से लोगों को कुछ हद तक जरूर राहत पहुंचाई। गुज़श्ता कई दिनों से जारी हीट वेव जैसी सूरत हाल के बायस आवाम सख्त परेशान थी, लेकिन शहरियों ने मौसम में अचानक तब्दीली पर इत्मीनान का इजहार किया है। महकमे मौसमियात ने 28, 29 और 30 तारीख तक मौसम अबरालूद रहने की पेशन गोई की है और कुछ पहाड़ी इलाकों में बूंदाबांदी के भी आसार हैं।
1: जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। उधर जम्मू के कठुआ जिले में पिछले डेढ़ दो हफ्ते के दौरान पारा लगातार 45 डिग्री के आसपास पाया जा रहा है। सो कठुआ में अव्वल तो गर्म लहर की वजह से और दूसरा बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस लोगों को गुना गो मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस पर तुर्रा ये कि बिजली महकमे ने कठुआ जिले के मुतअद्दिद सार्फिन को जो माहाना बिल इरसाल किए हैं वो मौसूला इत्तिलात के मुताबिक 50,000 से 1.5 लाख तक फी सार्फ के बताए जाते हैं। माहाना बिलों में ये अजीब गरीब इजाफा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है या इसका महर्रिक कुछ और है ये फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे नुमाइंदे रमेश मरहड़ा के बकौल मुतालिक का सार्फीन जब ये बिल लेकर महकमे के दफातर में जा पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उन्हें हर हाल में अदायगी करना होगी। याद रहे कि ये वही सार्फीन है जिनका माहाना बिल मुश्किल से 801,000 तक का आया करता था। सो तफासिल कठुआ से खुद रमेश मरहड़ा की जबानी।
2: कठुआ में शदीद गर्मियां पड़ रही हैं। आज कठुआ में दर्ज हरारत 44.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई है। एक तरफ कुदरत की मार से लोगों का बुरा हाल हो रहा है, दूसरी तरफ बिजली की सप्लाई में जबरदस्त कटौती हो रही है। अनशेड्यूल पावर कट्स की वजह से लोग सड़कों पे एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। वहीं पर आज कठुआ के वार्ड नंबर 1 में लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया है। वजह बिजली महकमे से आ रही बिजली किराए में या बिजली बिल्स में उछाल से लोग हैरान भी हैं और गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। यहां लोगों का कहना है कि कई सार्फीन ने बिजली की बिल अदा करने के बावजूद दोबारा बिजली की बिलें उनके खाते में जमा होने जा रही है। लोगों का कहना है कि जिनकी बिजली की बिल 200 रुपए से 400 रुपए तक महीना आती रही, आज उनकी बिल 15,000 से 1 लाख रुपए तक आ गई है और ऐसा कुछ मई के महीने यानी इसी महीने में हुआ है। एक फैमिली का कहना है उनको मई के महीने में बिजली की बिल 1,15,731 रुपए मिली है, जबकि वहीं पर एक और परिवार में बिजली बिल का किराया 1,51,024 रुपए आ गई है। इसी तरह एक सार्फी अपने मोबाइल पे बिजली बिल की तफसील दिखाई, 21 मई को 82,000, 23 मई को 87,000 रुपए महकमे ने भेजे हैं। इतनी वेरिएशन जबकि ये घर एक ऑर्डिनरी शख्स का घर है जो मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा है। कठुआ के इस इलाके में वो लोग रहते हैं जो मजदूरी पेशा है, जिनकी दिहाड़ी महज 500 रुपए ही है। यहाँ गरीब लोग रिहाइश पजीर हैं, बड़ी मुश्किल से ये लोग घर बार चलाते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन के जुमरे में आकर लाखों रुपए के बिजली बिल कैसे चुका पाएंगे, यहाँ के एक निवासी मांझी राम का कहना था। यहाँ मुकीम बाशिंदू ने इल्जाम लगाया है कि जब उन्होंने इस बारे में बिजली महकमे के आला अधिकारियों से बात की तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ा, ये बिजली का किराया आपको अदा करना पड़ेगा। आज इस बारे में कठुआ शहर में जबरदस्त एहतजाज कर लोगों ने जिला हुकाम से अपील की है कि वो इस बारे में तहकीकात करें कि ये धांधली बिजली महकमे में क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। वहीं पर अनशेड्यूल पावर कट्स की वजह से कठुआ शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों में मुकीम बाशिंदे एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। दर्ज हरारत में बढ़ोतरी से सुबह जम्मू के बेशतर हिस्सों में अनशेड्यूल पावर कट्स की खबरें मौसूल हो रही है। स्मार्ट मीटर्स नस्ब होने के बावजूद बिजली महकमा ने 24 घंटे बिजली सप्लाई की फराहमी को यकीनी बनाने का बाज़ाब्ता तौर पे सर्कुलर जारी किया था, पर वो महज एक झूठा सर्कुलर साबित हुआ है। ये कहना था कठुआ शहर के एक सहाफी उत्तरीन शर्मा का। 21वीं सदी में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है कठुआ शहर के कई इलाके जिनमें खास तौर पे बिजली की रोजाना सप्लाई है।
1: कठुआ में शिद्दत की गर्मी से लोग परेशान और बिल में हुआ ताजा इजाफा परेशानी की दूसरी बड़ी वजह। रमेश मरहड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर मौसमियात महकमे ने आइंदा 2 रोज के दौरान जम्मू

0: कश्मीर में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की पेशनगोई की है। बताया जाता है कि जनूबी कश्मीर के कुछ इलाकों में आज दोपहर भी झालाबारी हुई, जबकि वस्ती और शिमाली कश्मीर के कुछ इलाकों में आज बारिशें भी हुई हैं। हमने अभी कुछ वक्त पहले महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद से बात की और पूछा कि आइंदा लगभग एक हफ्ते तक मौसम किस ढंग का होगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था 28-29 के आसपास एक ब्रीफ स्पेल, एक दो स्पेल जो है होंगे बारिशों के, खासकर दोपहर के बाद। और ये जो स्पेल होंगे बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए होंगे, विद थंडर, गस्टी विंड्स और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हेल स्टॉर्म। तो हेल स्टॉर्म के रिपोर्ट्स आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट शुपियन, कुलगाम के कुछ एक डिविजन्स के अंदर देखे गए। और इसी तरह करंटली भी अभी बारिशें हो रही है, खासकर उरी, बारामुल्ला, खान साहब और जो आसपास के इलाके हैं, दूध पथरी वगैरह, इन सारे जगहों पे बारिशें और साथ साथ में हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं। और इसी तरह कल दोपहर के बाद भी ऐसा ही सिमिलर स्पेल के चांसेस हैं, ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन थंडर शावर विद गस्टी विंड्स, हेल स्टॉर्म। उसके बाद जो फिर मौसम ठीक है लगभग 3 जून के 3 तारीख शाम तक, फिर 4-5 के आसपास फिर से एक ब्रीफ स्पेल के चांसेस हैं, 4 आफ्टरनून के आसपास भी और 5 आफ्टरनून के आसपास भी। बाकी कोई ऐसे सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी या कोई मेजर प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं है टिल 10th of June तक।
0: जम्मू डिवीजन में चूंकि गर्मी बहुत पड़ रही है काफी दिनों से, तो वहां पर क्या कोई बेहतरी के इम्कान हैं?
1: अभी एक दो दिन थोड़ा सा राहत मिल सकता है, लेकिन कोई मेजर रिलीफ नहीं है। फ्रॉम 30th और 31st onward थोड़ा सा फिर से गर्मियों की शिद्दत में देखी जा सकती है, हीट वेव या हीट वेव लाइक कंडीशन टिल 3rd। उसके बाद फिर ब्रीफ स्पेल के कारण थोड़ी सी राहत मिल सकती है। और अब जो है कोई मेजर रिलीफ खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर नहीं है, तो हॉट एंड ड्राई वेदर जनरली रहेगा और टेम्परेचर जनरली 40 या 40 से अब रह सकता है।
0: कुछ वक्त पहले आपने हमसे बात करने के दौरान कहा था कि जून के माह में टेम्परेचर में नुमाया इजाफा होगा, क्या ये वाकई पॉसिबल है?
1: जी, अभी जो हीट वेव या सीवियर हीट वेव के जो कंडीशन है ये अक्रॉस नॉर्थ इंडिया चल रहे हैं, इवन डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया ऑल्सो। तो उस हिसाब से गर्मियां फिलहाल रहेगा जब तक मानसून जो है यहाँ पे ऑनसेट नहीं होता है। और इस बार जो एलनिनो के कारण मानसून का जो एक्टिविटी है उसमें भी थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। तो ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्शन दिया है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के माध्यम से कि बिलो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन रहेंगे, खासकर जो जम्मू या यहाँ वैली के अंदर भी, तो इस वजह से थोड़ा सा गर्मियाँ रह सकती हैं ज्यूरिंग मानसून पीरियड ऑल्सो। लेकिन अभी ये प्रिलिमिनरी आपका स्टेज फर्स्ट लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, तो स्टेज सेकेंड जो फोकस्ड है वो कुछ दिनों में आने के चांसेस है, तो उसमें देखते हैं क्या कुछ चेंजेस रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है थोड़ा बिलो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन के चांसेस है।
0: मई के माह में हमने देखा शुरू से ही अभी तक इंस्टेबिलिटी मौसम की रही है, 2 दिन के लिए गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, फिर अचानक बारिशें होती हैं, हवाएं चलती हैं वगैरह, तो ये जो सूरत हाल है इंस्टेबिलिटी की, ये कब तक चलने की उम्मीद है?
1: अभी फिलहाल मई के जो आखिरी 1-2 दिन है तो इसमें रहने के चांसेस हैं, सिमिलर जो एक्टिविटी चल रहा है बिकॉज ऑफ फीबल WDs। तो कमिंग डेज में भी खासकर जून के खासकर 4-5 के आसपास भी जो है फीबल WDs की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे हर तीसरे चौथे दिन जो है WDs आते रहते हैं, तो मौसम जो है थोड़ा सा बदलाव सा लगेगा, खासकर यहाँ वैली के अंदर और स्पेशली नॉर्थ और सेंट्रल एवं साउथ कश्मीर के अंदर।
0: ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल की जानिब से तालीमी साल 2026-2027 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले का ऐलान किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बराए पोस्ट ग्रेजुएशन 2026 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोग्रामों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि दाखिले के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मजीद तफसीलात के लिए www.cukashmir.ac.in पर जाएं या दफ्तरी औकात में 9469847277 पर राबिता कायम करें।
4: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट

0: के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
5: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
4: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आ रहे माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
5: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
4: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
5: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
4: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
5: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
4: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
5: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
4: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।

0: हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा, जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है। जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहे हैं, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें, और कोई फ्रूट, पपीता है, वाटरमेलन है, कुकम्बर है, जिसमें थोड़ा सा लिक्विड्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा, जो उनके कपड़े पहनने का जो होगा वो लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज कॉटन के कपड़े पहनने से उससे भी आराम मिलता है, थोड़ी सी ना फायदा हो जाता है। तो कहीं हो सके तो अम्ब्रेला साथ रखें, सो दैट ये जो गर्मी दिन ब दिन अब और बढ़ने वाली है, इससे हम बचाव कर सकें।
1: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान से मुतलिक पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस और यूटी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो नशे की बिदअत का कलाकमा करने के लिए मुहिम में तेजी लाएं। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू, DGP नरेंद्र प्रभात, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार और दीगर आला पुलिस व सिविल अफसरान मौजूद थे। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं और मुनशियात के ढांचे को खत्म करने, नीज इस लत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा, और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: मुनशियात के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने जम्मू सूबे के रियासी जिले में मोहम्मद तारिक और गणेश कुमार नामी 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। सांबा पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान मोहम्मद असलम नामी मुनशियात फरोश की गिरफ्तारी अमल में लाई है। उनके कब्जे से नशीली अशिया की कुछ मकदार बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फरोग देने और लोगों को आला मियार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। बैंक की तरफ से इस साल एक बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की जा रही है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: बैंक अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो उससे फिर बैंक सस्टेन करना या सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। अभी 2021 के बाद से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है इस बैंक में, और उसका मेन रीजन ये था कि जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था ना हमारे बैंक का, वो बहुत हाई था। मतलब जितना इनकम हमारा था उससे, उसके मुकाबले में कॉस्ट काफी हाई था, और कॉस्ट में मेजर 75 से 80% जो था वो स्टाफ कॉस्ट था। तो इस चीज को जब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए, कॉस्ट कम करके नहीं इनकम बढ़ा के, तो हमने कोशिश की कि इनकम बढ़ाए। लास्ट पिछले 5 साल में हमने इनकम काफी बढ़ाया, तो अब हम इस पोजीशन में हैं। मतलब अपने माध्यम से ये बता सकते हैं हमको कि इस साल एक रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा और अच्छा खासा होगा, क्लर्क में भी और ऑफिसर्स में भी।
1: आला तालीम महकमे ने सरकारी डिग्री कॉलेजों में UG दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म जमा करने और कॉलेज तरजीहात अपडेट करने की आखिरी तारीख में तौसी की है। महकमे आला तालीम के मुताबिक उम्मीदवार अब 30 मई शाम 5 बजे तक दाखिला पोर्टल jkadmissions.in पर अपनी दरख्वास्तें जमा या अपडेट करा सकते हैं। इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस जम्मू कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
4: हमारा जो लास्ट डेट था सबमिशन ऑफ फॉर्म वो 27 5 बजे तक था, अभी हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। हमारे पास सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत रिप्रेजेंटेशन आई थी, तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब 30 तारीख 5 बजे तक लिंक खुली रहेगी, और मेरी गुजारिश है कि स्टूडेंट्स के साथ कि वो अपनी चॉइसेस चेंज कर सकते हैं। अभी भी हमने जो उनका टेंटेटिव मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया है, तो उसको भी देखकर वो अपनी चॉइसेस बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कॉलेज वाइज और प्रोग्राम वाइज। तो ये प्रोसेस सारा अभी 30 तारीख तक स्टूडेंट कर सकता है, तो 5 बजे लिंक बंद हो जाएगी, तो ये फिर बाकी जो शेड्यूल है वो उसी शेड्यूल के हिसाब से लिस्ट निकलेगा और फिर राउंड 2 हो जाएगा और स्पॉट राउंड हो जाएगा।
1: SKICC श्रीनगर में 30 और 31 मई को कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया

0: का जो हमारा इवेंट है ये एक मल्टी स्टेज्ड इवेंट होगा. सो वील हैव अ मेन स्टेज वेयर वील हैव पैनल डिस्कशंस एंड वील हैव परफॉर्मेंसेस एटसेट्रा. वील आल्सो हैव अ सेकंड स्टेज व्हिच इज ओपन फॉर पीपल सो दैट वी कैन हैव अ वाइडर पार्टिसिपेशन. हमारे फेस्टिवल में आपको पैनल डिस्कशंस मिलेंगे, आपको बुक लॉन्चेस मिलेंगे, आपको म्यूजिक कॉम्पिटिशंस, कैरियोके, आर्ट एग्जिबिशंस, ये सारी चीजें जो भी आपको एक लिटरेचर फेस्टिवल में देखने मिलेंगी.
1: इस सिलसिले में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का तैयार करदा खसूसी प्रोग्राम आज रात 8:30 बजे नशर होगा। प्रोग्राम की मेहमान नायरा मंजूर के साथ आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के डायरेक्टर तारिक राथर हम कलाम होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि लोगों को आईनी और जमहूरी हकूक देने से पायदार तरक्की मुमकिन बनाई जा सकती है। श्रीनगर में अपनी रिहायशगाह पर पार्टी से वाबस्ता सीनियर लीडरों के साथ तबादले ख्याल करने के दौरान उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा बहाल करना चाहिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और प्रदेश नायब सदर रेखा महाजन के अलावा कई दीगर पार्टी लीडरों ने भारत के सपूत और कौम परस्त लीडर वीर विनायक दामोदर सावरकर को उनकी 143वीं जन्म जयंती पर खराज अकीदत पेश किया है। गुरहा जम्मू के स्मृति भवन के एक वफ्द ने भवन के सदर विक्रांत गुप्ता की कयादत में आज बीजेपी के प्रदेश सदर सत शर्मा के साथ मुलाकात की। वफ्द ने इलाके में कायम कम्युनिटी हॉल की दीवार बंदी कराने का मुतालबा किया। पार्टी के जम्मू साउथ यूनिट के एहतमाम से आज एक तंजीमी मीटिंग मुनक़द हुई। इस मौके पर तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने पार्टी सरगर्मियों की पेशरफ्त का जायजा लिया। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के रियासती सदर आर के कलसोत्रा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अहलिया माता रामाभाई के निर्वाण दिवस पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। कॉन्फेडरेशन के मेम्बरान के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि रामाभाई अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी समाजी खिदमत के लिए वक्फ की थी। बरेसगीर में उर्दू जबान के एक नामवर और मुमताज शायर बशीर बद्र इंतकाल कर गए हैं। उनकी वफात पर जम्मू कश्मीर की कई सकाफती और अदबी अंजमनों ने अफसोस का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के अमले ने बशीर बद्र के इंतकाल पर गहरे रंजगम का इजहार किया है। सागर कल्चरल फोरम और अंजमन सदाए फन राजवार हंदवाड़ा ने भी उनके इंतकाल को उर्दू जबान अदब के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। अब रेल खिदमात से मुतलिक ये खबर। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मुसाफिरों के बढ़ते रश को देखते हुए शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन ने जम्मू तवी नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में थर्ड एसी का एक इजाफी कोच और श्री माता वैष्णो देवी कटरा न्यू दिल्ली एक्सप्रेस रेलगाड़ी में एक इजाफी स्लीपर क्लास कोच जोड़ने का फैसला किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.7°C जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.6°C रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39.4°C जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.4°C रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: समीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं बसारत गुल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा सिर्फ एक मौशी मसला नहीं बल्कि ये आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी पर बरहाए रास्त असर अंदाज होने वाला एक हमागीर बहरान बनता जा रहा है। ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें मुल्क की मईशत के हर शोबे को मुतासिर करती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट, सन्नत, ज़राअत और अशियाई ज़रूरियात की तरसील का इन्हिसार बड़ी हद तक पेट्रोलियम मसनूआत पर होता है। जब ईंधन महंगा होता है तो इसका बोझ आखिरकार आम शहरी को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। सबसे पहला असर सफरी अखराजात पर पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा मुतवस्त और कम आमदनी वाले तबके के लिए शदीद मुश्किलात पैदा करता है। ईंधन की कीमतों में इजाफा सनअती पैदावार को भी मुतासिर करता है। कारखानों के पैदावारी अखराजात बढ़ने से अशिया महंगी होती है और बाज़ सनअतें पैदावार कम करने पर मजबूर हो जाती है जिसके नतीजे में बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है। ज़राअत का शोबा भी इस बहरान से महफूज نہیں رہتا، کیونکہ ٹریکٹر، آپاشی اور زرعی نقل و حمل کے اخراجات

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वादे की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज आकाशवाणी श्रीनगर से। बात करते हैं हमसाए मुल्क पाकिस्तान की। समीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर नजर अगर डाली जाए तो वहाँ सियासी कशीदगी, माशी दबाव और सफारती चैलेंजेस बदस्तूर तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मखलूत हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं, जबकि अपोजिशन जमातें मुख्तलिफ मामलात पर अपने तहफ़ुज़ात और मुतालबात पेश कर रही हैं। मुल्क को महंगाई, बेरोज़गारी और इक़्तिसादी मसाइल जैसे चैलेंजेस का सामना है, इसी तरह सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम के मसाइल भी अहमियत इख्तियार किए हुए हैं। तज़िया निकारों के मुताबिक पाकिस्तान को मुआशी बहाली, दाखिली इस्तेहकाम और इलाकाई अमन के दरमियान मुतवाजिन हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है। खत्ते के अमन और तरक्की के लिए ये भी ज़रूरी समझा जाता है कि जनूब एशिया के ममालिक बाहमी ताउन, मुजाकरात और एतमाद साजी के जरिए अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि पायदार अमन और इक्तिसादी तरक्की का रास्ता इलाकाई ताउन से होकर गुजरता है। पाकिस्तान और भारत जनूब एशिया के दो अहम हमसाए ममालिक हैं जिनके दरमियान ताल्लुकात तारीख, जुग्राफिया, तिजारत और सकाफती रवाबित के हवाले से गैर मामूली अहमियत रखते हैं। दोनों ममालिक के तल्लुकात में वक्तन फवक्तन कशीदगी और तनाव के अदवार भी आए हैं, ताहम पायदार अमन और इलाकाई इस्तेकाम के लिए दोस्ताना और खुशगवार तल्लुकात नागजीर हैं। समीन, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान ऐसे इकदामात यकीनी बनाए जिनसे भारत के साथ दोस्ताना और खैर सगाली के तल्लुकात बहाल हों, तो इसका बुनियादी मकसद खित्ते में अमन, इस्तेकाम और तरक्की को फरोग देना है। बेहतर ताल्लुकात से न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद साजी की फिजा कायम हो सकती है, बल्कि तिजारत, सकाफती तबादलों और अवामी रवाबित के नए इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। इस ज़मन में सफारती सतह पर बामानी मुजाकरात, बाहमी एतमाद साजी के इकदामात तनाज़ात के हल के लिए मजबूत रवैया और अवामी सतह पर राबितों को फ़रोग देना अहम साबित हो सकता है। ताहम ये हकीकत भी पेशे नज़र रहनी चाहिए कि ताल्लुकात की बेहतरी यकतरफा कोशिशों से मुमकिन नहीं होती, बल्कि इसके लिए दोनों ममालिक की संजीदा मुखलिसाना काविशें ज़रूर होती हैं। आखिर में ये कहा जा सकता है कि जनूब एशिया की तरक्की और खुशहाली उसी वक्त मुमकिन है जब इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सफारती ज़राए से हल करने की कोशिश की जाए और दोनों ममालिक बाहमी एहतराम, अमन और ताउन के असूलों को तरजीह दे। आइए प्रोग्राम के आखिर पर आप और हम समाप्त करते हैं ये फिल्मी नगमा।

पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। आपको याद दहानी करें कि रात 9:30 पर ईद उल अज़हा के सिलसिले में एक खसूसी म्यूजिकल फीचर नशर होगा रात 9:30 पर। ये तहरीर है सैदुद्दीन सैदी की, रावी हैं सादत खान और हुमैरा तबस्सुम, पेशकश सईद हुमायूं कैसर। पंजाबी अदबी मैगजीन नशर होगा शब 10:30। प्रोग्राम का इदारिया पेश करेंगी प्रोग्राम की मेज़बान शीनम अब्रक, और रात 9 आपको महजूज कराते हैं चंद कश्मीरी गज़लों से। सुनते रहिए आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम।

0: रात के 8:30 हुए हैं। समीन, श्रीनगर में 30 और 31 मई को कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में पेश है हमारे शोबे खबर का तैयार करदा ये खसूसी प्रोग्राम। मेहमान हैं कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल की असिस्टेंट डायरेक्टर नयरा मंजूर। इनके साथ हम कलाम हैं आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के डायरेक्टर तारिक राथर।
1: समय नादा, मैं आपका मेजबान तारिक राथर। आज के खसूसी प्रोग्राम में हम कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से, जो इसका थर्ड एडिशन यहाँ श्रीनगर में SKICC में ऑर्गेनाइज हो रहा है 30th और 31st को, इस हवाले से आज जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम रूबरू गुफ्तगू करेंगे वो हैं कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल की असिस्टेंट डायरेक्टर, जो इस बारे में बातचीत करेंगी और इस बारे में हमें फीचर्स बताएंगी फेस्टिवल के बारे में, वो हैं नयरा मंजूर जी। नयरा मंजूर जी, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के इस खसूसी प्रोग्राम में खैर मकदम है।
2: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपके प्लेटफॉर्म के हवाले से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में, हमारी सहायता करने में, आपका बहुत शुक्रिया सर।
1: कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या है ये फेस्टिवल और कब यहाँ पे श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसके जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या है? जी
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक साहब। मेरा नाम नायरा मंजूर है और मैं कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का एक हिस्सा हूँ। मैं यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करती हूँ। और सर, कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल जो है ये एक कल्चरल और एक इंटेलेक्चुअल फेस्टिवल है जो कि श्रीनगर में मुनक़द किया जाता है। ये हमारा तीसरा एडिशन है और श्रीकुला फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज करती हैं और श्रीकुला फाउंडेशन के अलावा जितने भी हमारे वैल्यूएबल पार्टनर्स हैं उनकी कोलैबोरेशन से ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये फेस्टिवल इस वजह से ऑर्गेनाइज किया जाता है क्योंकि सर, अगर हम इतिहास में जाके देखें तो यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स स्कॉलर्स कश्मीर आए हैं। वो मैं अपने हाल ही में एक इंटरव्यू में बोल के आई हूँ कि वो यकीनन यहाँ डल देखने तो नहीं आए होंगे और शिकारा में बैठने तो नहीं आए होंगे। वो यहाँ पे आए विजडम सीख करने के लिए, वो यहाँ पे आए एनलाइटनमेंट के लिए। तो कश्मीर के उसी हेरिटेज को, जहाँ पे कश्मीर वॉज रिगार्डेड एज द बॉस्टन ऑफ ईस्ट and it was regarded as the epicenter of knowledge and wisdom, usi ko wapas se usi darohar ko aage le jane ke liye ki kabhi bhi kahin hamare bacche humse ye na kahein ki kashmir mein kuch hai nahi, kashmir mein kya chho as per never gasun, there aren't any opportunities in kashmir, so wo cheez na ho us cheez ke liye hi hum kashmir literature festival ko organize karte hain. Yahan pe we have speakers, we have people from all walks of life.

0: We have educators, we have entertainers, we have policymakers, we have diplomats, we have literary connoisseurs and seekers of knowledge and wisdom. सब एक साथ आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं. तो इस चीज के लिए कि श्रीनगर में भी एक कल्चरल और एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म हो, ऑल्दो हम इट्स अ ग्रोइंग प्लेटफॉर्म, वी आर डूइंग आर थर्ड एडिशन दिस टाइम, इसके लिए कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की गई है.
1: मैम कब से शुरू हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है?
0: सर, कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल 30th और 31st मई को SKICC में ऑर्गेनाइज होगा.
1: मैम तो इसमें जो जनरल पार्टिसिपेशन जो लोगों का है किस तरह से होगा?
0: सर, इस बार का जो हमारा इवेंट है, ये एक मल्टी स्टेज्ड इवेंट होगा. सो वील हैव मेन स्टेज वेयर वील हैव पैनल डिस्कशंस एंड वील हैव परफॉर्मेंसेस एटसेट्रा. वील आल्सो हैव अ सेकंड स्टेज व्हिच इज ओपन फॉर पीपल सो दैट वी कैन हैव अ वाइडर पार्टिसिपेशन. तो हमारे फेस्टिवल में आपको पैनल डिस्कशंस मिलेंगे, आपको बुक लॉन्चेस मिलेंगे, आपको म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स, कैरियोके, आर्ट एग्जिबिशंस, ये सारी चीजें जो भी आपको एक लिटरेचर फेस्टिवल में देखने मिलेंगी, जिस जो कि हर एक एज ग्रुप को केटर करते हुए ही क्यूरेट की गई हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे देखने मिलेंगी.
1: मैम इससे पहले जो दो एडिशन्स हुए हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे?
0: सर, इससे पहले भी जो हमारे दो एडिशंस हुए हैं वो भी श्रीनगर में ही हुए हैं, SKICC में ही हुए हैं. वो सिंगल स्टेज थे, ये मल्टी स्टेज है. लेकिन हमारे दोनों एडिशंस में से पहले भी जो हुए हैं उस वक्त भी अगर आप देखें तो ऑडियंस बहुत थी, बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिला लोगों की तरफ से कि वो आए, उन्होंने शिरकत की और उन्होंने ऐसे उभरते हुए प्लेटफॉर्म को जो कि कश्मीर में होने जा रहा है उसको उन्होंने सराहा. इफ यू विल चेक द प्रीवियस एडिशंस ऑफ कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल दैट हैपेंड इन 2024 एंड 2025, यू विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस, पैनल डिस्कशंस एंड एवरीथिंग एल्स दैट हैपेंड देयर. एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट सच एन इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर.
1: आफ्टर द फेस्टिवल इज ओवर, इसके बाद एक कंपेंडियम आता है कि एक्टिविटीज का कंपेंडियम, किस तरह से एक्टिविटीज हो गई। क्या ऐसा कोई पब्लिकेशन आपकी तरफ से रिलीज होता है जो कि इसको एस्टेब्लिश करता है कि ये फेस्टिवल, इसके ये कंपोनेंट्स हैं? जैसे एनी एनी फेस्टिवल इज डूइंग दैट, सो इज इट, या
0: ऑफ
1: बताइए।
0: कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आवर ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स जिसके माध्यम से हमेशा ही जो भी हो रहा होता है वो आप देख सकते हैं, यू कैन सी इट देयर. अदर देन दैट वी हैव आवर एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर राइजिंग कश्मीर, जो कि व्हाइल द प्रोसेस, व्हाइल द फेस्टिवल इज गोइंग ऑन, उसको भी कवर करते हैं और उसके बाद की भी जो चीजें हैं उसको भी वो कवर करते हैं. और सर, वी हैव आवर स्ट्रीमिंग पार्टनर दैट्स जियो न्यूज, हु विल बी स्ट्रीमिंग द एंटायर फेस्टिवल. सो ऑल ऑफ दिस, वट एवर विल बी हैपनिंग, यू विल बी एबल टू सी इट फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस. एंड आफ्टर द फेस्टिवल इज ओवर ऑल्सो वी ऑल्सो मेक श्योर दैट वट एवर हैज हैपन्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड पीपल हु जस्ट कुडंट अटेंड इट समहाउ एंड हु आर कीन टू नो वट हैपन्ड, वो चीजें सारी जो हैं वो हमारे YouTube चैनल पे, हमारे सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे आपको देखने मिलेंगी सर.
1: मैम क्या इसमें यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का पार्टिसिपेशन इस तरह होता है, वो जनरली आते हैं या यू इनवाइट देम, इज इट लाइक दैट?
0: बोथ वी इनवाइट कॉलेजेस, वी इनवाइट देम एंड पीपल, देर आर स्टूडेंट्स हु अदर देन बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी आर अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ ऑल्सो, दे आर सीकर्स ऑफ नॉलेज, दे लव लिटरेचर, तो उसके लिए भी वो लोग आते हैं और वहाँ पे जो है वो अटेंड करते हैं. और अभी का अगर आप हमारा फेस्टिवल देखें सर, अगर आप वेबसाइट पे देखें तो वी हैव केप्ट द रजिस्ट्रेशन फ्री फॉर स्टूडेंट्स सो दैट द स्टूडेंट्स कैन कम एंड दे कैन सी दैट सच अ प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये इतना सारा अगर हमारी इंटेलेक्चुअल वेल्थ जनरेट हो रही है, जैसा मैंने आपको बोला वी हैव स्पीकर्स, वर्ल्ड क्लास स्पीकर्स सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली विजिट आवर वेबसाइट. अगर आप देखें तो वो सब किसके लिए है, वो यूथ के लिए है, राइट, उनके सीखने के लिए है. तो हम चाहेंगे कि उनका ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो और उसी के लिए उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री रखी गई है.
1: मैडम इस वाले फेस्टिवल में 30th और 31st को जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो कौन से ऐसे कोई प्रोमिनेंट नेम्स आप बताना चाहेंगी जो यहाँ पे स्पीकर्स होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे, इंटरेक्ट करेंगे जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे लोकल होंगे? कौन लोग हैं ऐसे जो ऐसे हम बता सकते हैं लोगों को? जी
0: सर, हमारे पास यू विल गेट अ वैरिड रेंज ऑफ स्पीकर्स. अगर हम डिप्लोमैट्स की बात करें तो हमारे पास एम्बेसडर दीपक वोहरा होंगे. अगर हम आर्मी वेटरन्स की बात करें तो हमारे पास राज शुक्ला जी होंगे, हमारे पास जनरल डीपी पांडे सर होंगे. अगर हम बात करें ऑथर्स की, हमारे पास विजयधर साहब होंगे, हमारे पास नीरजा मट्टू होंगे, हमारे पास अमिताभ मट्टू जी होंगे. तो ये सारे वी हैव वैरिड रेंज ऑफ स्पीकर्स हु विल बी देयर. अगर

0: जर्नलिज्म की बात करें तो वील हैव रूबिका लियाकत, सो वील हैव मेनी मेनी स्पीकर्स हु विल बी देयर. एंड इफ वी टॉक अबाउट ऑथर्स, अ वेरी फेमस नेम कम्स टू माई माइंड राइट नाउ, दैट इज अनीर जमत्तू, और ऑल्सो फॉर दैट मैटर शफी शौक साहब. सो ऑल ऑफ दीज विल बी देयर. एंड अदर देन दैट, यंग एस्पायरिंग ऑथर्स जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो प्रीवियस एडिशन में आए, दे गॉट इंस्पायर्ड बाई लुकिंग एट द पैनल डिस्कशंस देयर, बाई इंटरेक्टिंग विद द ऑथर्स, एंड देन दे आर प्लानिंग टू लॉन्च देयर फर्स्ट बुक एट कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल.
1: लिटरेचर
0: सो
1: फेस्टिवल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप एक्सपेक्ट करती हैं बुक्स रिलीज होंगी, कुछ किस लैंग्वेज में?
0: हिंदी में होंगी सर, उर्दू में होंगी, इंग्लिश में होंगी.
1: पहले भी आपने बातचीत में बताया कि पद्मश्री प्रोफेसर शफी शौक साहब इज एक्सपेक्टेड टू बी अमंग द
0: यस
1: डिग्नेटरीज. जी
0: यस यस यस, हमारी खुशकिस्मती है कि प्रोफेसर शफी शौक साहब हमारे साथ फेस्टिवल में होंगे. ही विल ऑल्सो बी वन ऑफ द स्पीकर्स. सो यस, वी आर वेरी
1: जी
0: फॉर्चुनेट टू हैव हिम
1: जी
0: विद
1: जी
0: अस.
1: जी नायरा जी, क्या आपको लगता है कि जैसे देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दोज, देर आर सम स्पेशली एबल्ड पीपल हु हैव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक देर आर सर्टेन विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, स्पेशली एबल्ड पीपल, तो दे एक्चुअली वॉन्ट टू दे हैव कम्युनिकेटेड टू अस. जब हमने इसके बारे में आपका कर्टन रेजर न्यूज हमने डिसेमिनेट किया और ब्रॉडकास्ट किया, उसके बाद हमारे पास ये एक तरह की क्वेरी आई कि दे वॉन्ट टू पार्टिसिपेट. हाउ वुड यू फैसिलिटेट सच दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल, दोज हु हैव सर्टन डिसेबिलिटीज या सर्टन स्पेशली एबल्ड पीपल आर देयर, प्लीज?
0: फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वी अगेन इट्स we consider ourselves very fortunate that people are reaching out to us and they are interested in being a part of Kashmir Literature Festival family in any form or manner they can be. So this is something that we aim for. और जहाँ तक आपने बात की कि वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारी कोशिश ये है कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें. इसीलिए हमारा जो अभी का एडिशन है, इट्स अ मल्टी स्टेज्ड इवेंट जहाँ पे आपका पैनल डिस्कशंस, परफॉर्मेंसेस, ये सारी चीजें तो चल ही रही होंगी, लेकिन साइमल्टेनियसली देयर इज आल्सो अ ओपन स्टेज जहाँ पे आप आके जो अपनी बात सामने रख सकते हैं, आप आपकी म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस जिस तरीके से आप चाहें कि आप पार्टिसिपेट करें, एंड यू वांट योर वॉइस टू बी हर्ड, तो वो सारी चीजें वहाँ पे रखी गई हैं. और जो भी लोग इंटरेस्टेड है, वी वुड रियली लुक फॉरवर्ड टू मीट देम एंड सी हाउ वी कैन गिव देम दैट स्टेज एंड प्लेटफॉर्म. विल बी ऑनर्ड टू हैव देम विद अस.
1: Is there any kind of helpline from your side on which those people can, they can contact and they can have the facilitation for participating in this festival? Ji.
0: Yes, so we do have our official number. It is 918615270. I repeat, 918615270. This is our official number for Kashmir Literature Festival. तो इस पे जो भी लोग चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, किसी भी तरीके से वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं टुवर्ड्स द फेस्टिवल, वो इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं, एंड आपको जरूर हमारी तरफ से रिस्पांस मिलेगा.
1: तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए?
0: मेरी तरफ से मैसेज यही रहेगा पूरी आवाम के लिए कि जैसा मैंने पहले भी बोला है कि हमें, अगर हम कश्मीर को लिखें तो हम कश्मीर को ऐसा सिर्फ ना लिखें कि कश्मीर एक खूबसूरत दुल्हन है, क्योंकि कश्मीर सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता है. कश्मीर को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो कश्मीर एक एहसास है, कश्मीर एक तहजीब की जगह है, कश्मीर एक कहानी है. तो हमें चाहिए कि हम कश्मीर का वो हिस्सा भी पूरी दुनिया के सामने लेके आए. टूरिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये नेचुरल ब्यूटी अल्लाह की देन है, उसको हम लेके आ रहे हैं सामने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लेगेसी को भी हम सामने लेके आए, ये भी हमारा ही कर्तव्य है. तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमें इस मुहिम में एक साथ जुड़ के शाना बशाना होके काम करना चाहिए, सो दैट वी कैन टेल पीपल व्हाट एक्चुअली कश्मीर इज.
1: जी, मैडम, आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर.
1: सामिन, अभी हम कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल की जो असिस्टेंट डायरेक्टर है नायरा मंजूर जी से हम बात कर रहे थे फेस्टिवल के बारे में, जो 30 और 31 मई SKICC में ऑर्गेनाइज हो रहा है. तो इस हवाले से हमने उनके साथ बातचीत की और कोशिश की जो भी फीचर्स इस फेस्टिवल के हैं वो आप तक पहुंचाएं. हमें उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में जो भी आपके फीडबैक है आ रहा है वो हमारे ईमेल आईडी radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं. मुझे मेरे साथी न्यूज़ एडिटर्स अशफाक अहमद शाह,

हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 MHz पर। समीन, आप हमें DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी समाप्त कर रहे हैं।

0: समय इन स्टूडियोज की घड़ियों में रात के 8:45 हो रहे हैं। रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली का, जहां से आप हिंदी में खबरें समाप्त करेंगे। हिंदी खबरों के फौरन बाद ठीक 9 बजे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं और आपको महजूज कराते हैं चंद कश्मीरी गजलों से। खबरनामे के लिए कीजिए बस जरा सा इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय

अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देव रॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों

गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजयी अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता

भराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: शुभ के ठीक 9 बजे हैं। हमारा अगला ऐलान सुने। ईशो आकाशवाणी हुंदो श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव अलाव FM 2 1.5 मेगाहर्ट्ज़ इन बेट। बोलियो किए कोशिश गजल बोजो। आगाज़ मस करो पेश कलाम रसूल मीर। गुलकार छे आलम आरा जांबाज़।
1: वादे की आवाज़।

0: बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,91,00,000 मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि निशाना 4,95,00,000 मकानों का है। जनाब चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा मकानों की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मरबूत करके देही इलाकों के कुनबों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने को उजागर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन मकानों को मंजूरी दी गई है उनमें से तकरीबन 75% मकान या तो खवातीन के नाम पर हैं या मुश्तरका मिल्कियत में हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकों, खासतौर पर खवातीन, गरीबों और बच्चों के मामलात से निमटते वक्त हसास और ऐसा रवैया अख्तियार करे जिससे शहरियों को और ज्यादा मरकजी हैसियत हासिल हो। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू आज सुबह गैंगटॉक में अलंकरण परेड के दौरान सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने अमनो कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने में सिक्किम पुलिस के रोल की सताइश भी की।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: इधर सिक्किम को उल्लास पहल के तहत मुकम्मल तौर पर खानदान रियासत होने का बाजाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन कल से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो कल बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवनगिरे में BDT यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लैटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। हफ्ते के रोज जनाब राधाकृष्णन पनाजी में गोवा के यौम तासीस की तकरीबात में शामिल होंगे और समंदरी उलूम के CSIR कौमी इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। नायब सदर इतवार के रोज कर्नाटक में ही श्री सनती पार्क का इफ्तिताह करेंगे और श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंजूनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा है कि जमहूरियत मुजाकरात, बहस मुबासे, इतफाक राय और इख्तलाफी राय की इजाजत देती है। उन्होंने ये बात दिल्ली कानून साज असम्बली में 1930 तक मरकजी कानून साज असम्बली की सभी 407 नशिस्तों की कार्रवाईयों पर मुश्तमिल मुनफरिद 89 जिल्दों का इजरा करते हुए कही। जनाब बिरला ने कहा कि इस मजमुए से आने वाली नस्लों और जमहूरी इदारों के लिए एक बेशबहा रहनुमाई फराहम होगी। उन्होंने कहा कि यह हुकूमतों का फर्ज है कि वो तारीख, विरासत और उन रहनुमाओं की रिकॉर्ड की हुई तकारीर का तहफ्फुज़ करें जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की थी। लोकसभा के स्पीकर ने दिल्ली कानूनसाज पार्टी के विधान चेतना नाम के एक पहले सैमाही जरीदे का भी आगाज किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, दिल्ली काबीना वजीर प्रवेश साहब सिंह और दिल्ली कानूनसाज असम्बली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी इस तकरीब में शिरकत की। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तेलंगाना में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगले 5 साल में 200 इंटरसिटी रेलगाड़ियां बनाएगा। इन ट्रेनों को कम दूरी के सफर के लिए पूरे मुल्क में लगाया जाएगा। जनाब वैष्णव ने रेलवे के वजीर ममलिकत रवनीत सिंह बिट्टू और आला एहलकारों के साथ मीटिंग में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अमली शक्ल देने के मंसूबों का जायजा लिया। ये रेलगाड़ियां तकरीबन 300 किलोमीटर तक चलेंगी और हर ट्रिप में ये कई जगह रुकेगी ताकि लोग कस्बों और शहरों के दरमियान आसानी के साथ सफर कर सकें। इस तरह इन ट्रेनों के जरिए लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में सफर के लिए नया कम खर्च मुतबादल मिल जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो ने ट्विशा शर्मा की सास गिरी बाला सिंह को भोपाल में गिरफ्तार कर लिया है, जो एक रिटायर्ड जिला और सेशन जज हैं। उन्हें ट्विशा शर्मा की मौत से मुतालिक केस में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने उनकी रिहायशगाह पर सुबह तकरीबन 10:30 बजे पहुंचकर तलाशी ली और उनसे तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें सपहर 5:10 पर गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें सीबीआई की एक अदालत में पेश किया गया और इससे पहले उनकी तिब्बी जांच की गई।

0: ये गिरफ्तारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से इस केस को तश्वीशनाक बताते हुए और जारी तफ्तीश के पेश नजर उनकी पेशगी जमानत मंसूख किए जाने के एक दिन बाद की गई है। ट्विशा शर्मा भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 12 मई को मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई थी। उनके ससुराल के अफराद ने इसे खुदकुशी का केस बताया था, जबकि ट्विशा के कुंबे ने कत्ल का इल्जाम आयद किया था। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में डोरीमल के मकाम पर घने जंगलों में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक एक कार्रवाई तेज कर दी है। इस कार्रवाई का ये छठा दिन है। हिफाजती दस्तों ने इस इलाके का मुहासरा कर लिया और यहां दहशतगर्दों के छिपने की मुश्तबा जगहों पर ताजा फायरिंग की और ग्रेनेड लॉन्चर से कई हमले किए। इब्तदाई सुराग रसानी से मालूम हुआ था कि 2 या 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द यहां छुपे हुए हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया और अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पेचिंग में भारत चीन सरहदी मामलों पर मुशावरत और तालमेल से मुतालिक वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान यह तबादला ख्याल किया गया। तरफेन ने हदबंदी, सरहदी बंदोबस्त, तरीक़ेकार तय करने और सरहद के दोनों तरफ इश्तराक से मुतालिक मामलों पर बातचीत की। आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू शायर और अदबी शख्सियत बशीर बद्र का आज भोपाल में इंतकाल हो गया। वो 91 बरस के थे। उनके कुनबे के अफराद ने बताया कि वो एक तवील अलालत के बाद आज दोपहर दुनिया से चल बसे। उनकी तदफीन भोपाल टॉकीज के नजदीक कब्रिस्तान में आज शाम की गई। बशीर बद्र एक तवील अरसे से निसियान की बीमारी में मुबतला थे। वो उर्दू शायरी को जदीद तर्ज में ढालने और आसान लबो लहजे में शेर कहने के लिए जाने जाते थे। उनकी गजलें भारत और बैरून मुल्क काफी ज्यादा मकबूल हुई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। ये लाफानी अशार बशीर बद्र की शायरी की जान है। नहायत सलीस अल्फाज मगर तासुरात बहुत गहरे, कुर्बत पर मबनी जज्बात लेकिन ख्यालात आफाकी। उनकी शायरी में मोहब्बत, फुरकत, रिश्ते, अलहदगी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खामोश पोशीदा जज्बात पाए जाते हैं। बशीर बद्र ने उर्दू शायरी को एक ऐसी ज़बान अता करके एक नई जहद बख्शी जो आम लोगों के दिल के बहुत करीब है। उनके अशार मुशायरों में तो गूंजते ही थे, साथ ही अक्सर व बेशतर गुफ्तगू में भी इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने बहुत से मुशायरों की निजामत भी बड़ी दिलचस्प अंदाज में की। बशीर बद्र को 1999 में पद्मश्री से नवाजा गया था और उनके मजमूए कलाम आस पर उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड अता किया गया था। न्यूज़ डेस्क से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने का इम्कान है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मौसमियात महकमे के साइंसदान डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि अगले 3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोगों को शदीद गर्मी से काफी राहत मिल जाएगी।
2: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
0: कौमी राजधानी खत्ते के कई इलाकों में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। दो भारतीय पहलवान आज वियतनाम के शहर डनांग में 17 साल तक की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल हो गए। 45 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में यूनान रूम जुमरे में सचिन कलप्पा श्रोले ने 110 किलोग्राम के जुमरे में उर्दुन के समी अहमद अलावेद को 11-4 से शिकस्त दी, जबकि रुद्र किरण निमहान ने क्वार्टर फाइनल में कोरिया के सियोक मोसिम को 8-0 से हरा दिया। बैडमिंटन में भारत की पीवी संधू और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि एचएस प्रणॉय टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने की सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और

0: है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: रात के 9:30 बजे हैं। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: आकाशवाणी श्रीनगर। समय मोहतरम, ईद उल अजहा के मौके पर पेश सोने खसूसी म्यूजिकल फीचर। तहरीर सैदुद्दीन सैदी, रावी छे सादत हमीद खान, तुमैरा तबस्सुम।

0: लूना एक अजही काम सी जिसने पंजाबी साहित्य की दिशा ही बदल दी। सोनी महिवाल जा हीर रांझे की कथा तरह लोक कहानी पूरन भगत नू उसने इन्ना डूंगा अते ममता भरिया रंग दिता कि लूना दा दर्द इतिहास विच अमर हो गया। ए महाकवि उन्हू साहित्य अकादमी अवार्ड लिया के देंदा है। सब तो छोटी उम्र विच ए सम्मान हासिल करन वाले कवि वजे। पर शिव कुमार बटवालवी दी जिंदगी उसकी कविता वर्गी ही सी, अधूरी पर बेहद खूबसूरत। प्रेम दे विछोड़े, नजदीकी लोकां दी मौत अते अपनी ही अंदरूनी तड़प ने उस दे दिल नू हमेशा बेचैन रखिया। उस दे शब्दां विच एक जगत सी, पर उस दी सांसां विच एक जलदा होया जख्म। ए जख्म उस दी कला नू आप बना दिंदे जान। 27 साल दी उम्र विच ही शिव कुमार दुनिया छड़ गए, पर उन्हां दी कविता अज भी जिउंदी है। उन्हां दे शब्द सिर्फ पढ़े नहीं जांदे, ओ महसूस हो जांदे हन। बटवालवी नू अमर करन वाली गल ए है कि ओ दुख नू भी रंगीन कर सकदे सन अते प्रेम नू रूहानी रूप दे सकदे सन। शिव कुमार बटालवी एक कवि नहीं, एक एहसास सन। ओ एहसास जो हर दिल नू अपने किसे ना किसे जख्म दी याद दिला देंदा है।
1: बिरहा दे सुल्तान शिव कुमार बटालवी ए वार्ता पेश कर रहे सन जसजीत कौर जी। ते दोस्तों साडे साहित्यिक मैगजीन दे अगले पन्ने ते है काव ते काव पेश कर रहे हन डॉक्टर कीरत सिंह इनकलाबी जी। ते आओ सुनिए।
2: जिंदगी कावे दा एक कुट है, कावा मह जोर दी यात, कावा मह जोर दी यात विच बदामा दी थावें ज्यों, विच बदामा दी थावें ज्यों, लल्ला दे कोसी प्रभात, विच बदामा दी थावें ज्यों, लल्ला दे कोसी प्रभात। कावा महबूब दा सेख, कावा महबूब दा सेख, दिल दे होश बोर्ड ते बैठ के अपने त दी संगनी बारिश अंदर शहद कटोरी चख चख अड़िया, एक पल होर वटाला मुंदिया, एक पल होर वटाला मुंदिया, निगे हथा परी परुची रात, कावा मह जोर दी याद विच बदामा दी थावें ज्यों, सजनी दी कोसी प्रभात, विच बदामा दी थावें ज्यों, लल्ला दी कोसी प्रभात। आहा विच वफा दा सेख है कितना, आहा विच वफा दा सेख है कितना, टेस्ट ट्यूब विच वेखांगे अज पवान दे गमले अंदर बैठा, पंपुर दी हिक ते बैठा, केसर दा फुल चाननी तर जांदी, तलियां ते अण कीते करमा दी बात, कावा मह जोर दी याद विच बदामा दी थावें ज्यों, लल्ला दे कोसी प्रभात, विच बदामा दी थावें ज्यों, लल्ला दे कोसी प्रभात। ता अगला दृष्टांत है लारेंस कश्मीर नू पुस्तक दे विच पांदा जापे, लारेंस कश्मीर नू पुस्तक दे विच पांदा जापे, लल्ला आपा कावे दे चमचे विच नापे, जे जिंदगी चों चानन कढ दियो असिर जे करमां विच बज्जा रह जाएगा, महा अंध टुटन तो मांधकार टुटन तो खिंडन दी किरिया, मानव दी मिट्टी दा मोह त्रै समयां दा अस्पात, कावा महजूर दी याद विच बदामा दी थावें ज्यों, सजनी दी कोसी प्रभात, विच बदामा दी थावें ज्यों, सजनी दी कोसी प्रभात। तो अंतनिया लाइना ने इसी कविता दी लास्ट लेयर है, महबूब ता केवल भावनावां हुंदियां ने, ਮੈਂ ਬੋ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਏ ਪਲ ਦੀ ਗਾਥਾ।

आप आज का पंजाबी मैगज़ीन समाप्त कर रहे थे। प्रोग्राम की मेज़बान थी शीनम अबरक और प्रोड्यूसर समीना शाह। यह आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: 40 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फिल्म मन की आंखें का ये गीत आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुना। इससे पहले आपने सुना फिल्म कुदरत का गीत परवीन सुल्ताना की आवाज में। साथियों, जाने वाले कभी कभी लौट कर नहीं आते। आज मशहूर शायर बशीर बद्र साहब ने इस फानी दुनिया से रुखसती ले ली। उनके जाने से दिल की धड़कनों के गीत मानो खामोश हो गए हैं। वो भले चले गए, लेकिन वो अपने शेरों में हमेशा गुनगुनाए जाएंगे। जब भी उनके शेर कहीं कोई भी पढ़ेगा

तो वो हर कहीं बोल पड़ेंगे। उन्होंने क्या खूब लिखा है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इसके अलावा बशीर बद्र लिखते हैं कि मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होठ रख देना, मैं जब सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। आइए उनकी याद में सुनते हैं फिल्म ममता का ये गीत है।

फिल्म लैला मजनू का ये गीत आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुना। बशीर बद्री साहब लिखते हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। अगला गीत लिया है हमने फिल्म दी लेक मंदिर से, लता मंगेशकर की आवाज में, ये रहा आपके लिए।

प्यार में सारा आलम खोना एक तरफ और प्यार को निभाना दूसरी तरफ। इसीलिए तो शायद बशीर बद्र साहब ने लिखा होगा कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। हाँ, मगर मिला करो, है ना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये रात, ये जिंदगी गुजर जाए और बातें अधूरी ही रह जाएं। कुछ ऐसा ही कह रहा है ये अगला गीत फिल्म नवरंग का।

फिल्म ठोकर का ये गीत आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। इससे पहले आपने सुना फिल्म अभिमान का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। ये प्यार भी अजीब शय है ना, लोग जिंदगी हार जाते हैं। बशीर बद्र साहब ने क्या खूब लिखा कि दुआ करो कि मैं एक उम्र तक उसे चाहूं, वो जिंदगी जो मेरे नाम उसने की है अभी। अगला गीत लिया है हमने फिल्म धरती कहे पुकार से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में आपके लिए।

इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जयती आ चुकी हैं आगे का कार्यक्रम लेकर, कुसुम को दीजिए इजाजत। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। जुड़ते हैं समाचारों से।

0: जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दौरान श्री डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की और रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा सहित व्यापार सहयोग पर चर्चा की। दक्षिण अफ्रीका में धार्मिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के मंदिर और सामुदायिक भवन पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की घटना के बाद करीब 30 धार्मिक संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई संगठनों ने कहा कि पूजा स्थल शांति, प्रार्थना और सामुदायिक एकता के प्रतीक हैं। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के अध्यक्ष संजय गोविंद ने कहा कि लाउडियम और आसपास के क्षेत्रों में लोग पीढ़ियों से मिलजुल कर रहते आए हैं और ये एकता आगे भी कायम रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। Union Home and Corporation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। निशिगंधा सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि तहजीब, मोहब्बत और इंसानी रिश्तों की नरमी का एक पूरा दौर हमसे विदा हो गया। पद्मश्री बशीर बद्र साहब ने उर्दू गजल को महफिलों से निकालकर आम दिलों की धड़कन बना दिया। उनके अल्फाज में ऐसी सादगी थी जो सीधे रूह तक उतर जाती थी। उन्होंने टूटन को भी इतनी खूबसूरती से लिखा कि दर्द इबादत सा लगने लगा। मुशायरों की वह गरमामयी आवाज, वह लहजा, वह अपनापन अब इतिहास का हिस्सा बन गया है। उनकी शायरी ने पीढ़ियों को प्रेम, संवेदना और रिश्तों की अहमियत सिखाई। आज अदब का आकाश कुछ और सूना है, मगर उनके अशार हमेशा रोशनी की तरह हमारे बीच रहेंगे। बशीर बद्र साहब को आकाशवाणी की तरफ से, हमारे एफएम गोल्ड परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। उर्दू साहित्य का ये सितारा कभी भुलाया नहीं जा सकता।

सुनो फिर मिलना, सुनो फिर मिलना, अगली बार अगले जन्म, सुनो फिर मिलना, सुनो फिर मिलना, जो रह गया हिसाब बाकी, फिर मिलना, पूरी करनी है हर मुराद, फिर मिलना, न लाना बीच में काश, सुनो फिर मिलना, न लाना बीच में काश, सुनो फिर मिलना, फिर मिलना, अगली बार अगले जन्म, सुनो फिर मिलना। और अगला गीत फिल्म मौसम से, आवाज है भूपिंदर की।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आंखें, आवाज है लता मंगेशकर की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी एक बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गई, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल, वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघल कर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

0: जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दौरान श्री डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की और रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा सहित व्यापार सहयोग पर चर्चा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। दक्षिण अफ्रीका में धार्मिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली है। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के मंदिर और सामुदायिक भवन पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की घटना के बाद करीब 30 धार्मिक संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई संगठनों ने कहा कि पूजा स्थल शांति, प्रार्थना और सामुदायिक एकता के प्रतीक हैं। अमरीका और ईरान के बीच 60 दिन के युद्ध विराम विस्तार को लेकर समझौते के मसौदे पर सहमति बनी है। हालांकि इस समझौते को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान हार्मुज जल डमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए बिना किसी रोक टोक के खोल देगा और वहां बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को 30 दिनों के भीतर हटाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various development projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week. Mr. Shah also recalled the contributions of Veer Savarkar on the occasion of his birth anniversary. He highlighted his supreme sacrifice and lifelong dedication to the motherland. The longest-serving chief minister in Karnataka, Siddaramaiah, submitted his resignation at the governor's office in Bengaluru yesterday after a breakfast meeting with his cabinet colleagues. Addressing the media persons later without naming D.K. Shivakumar, He has

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर

एक मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने की इस खूबसूरत महफिल में आज जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश, आवाज है लता मंगेशकर की।

आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है काजल, आवाज है आशा भोसले की।

यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई भी हाथ, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो, उसे भूलने की दुआ करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। अरब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है चरस, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है राजा और रंक और आवाज है मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद

0: कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमरीकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। ये कार्रवाई दक्षिणी ईरान पर अमरीका के ताजा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया। इससे पहले अमरीका ने होर्मुज जल डरमुर मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। वहीं ईरान ने भी अमरीकी हमलों की निंदा की और इसे युद्ध विराम उल्लंघन करार दिया। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. Union Home Minister Amit Shah yesterday held a meeting to review preparedness for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harshit Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Shah said that Narendra Modi government is expanding world-class sports infrastructure and state-of-the-art training facilities in India. Keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sports facilities are being developed in accordance with global standards, he said. Ahmedabad would be hosting the 2030 Commonwealth Games and has officially submitted a bid for the 2036 Olympics. The longest-serving chief minister in Karnataka, Siddaramaiah, submitted his resignation in the governor's office in Bengaluru yesterday after a breakfast meeting with his cabinet colleagues. Addressing the media persons later without naming D.K. Sivakumar, he asked the governor to invite the CM-designate for taking up the mantle of chief ministership in the state. Union Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday chaired a high-level review meeting at the CBSE headquarters in New Delhi to review issues related to the evaluation and post-result processes of the CBSE Class 12 examinations. During the meeting, the minister directed officials to take all necessary measures

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो आज पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक। ब्रह्म

ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है एतबार, आवाज है आशा भोसले और भूपिंदर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहां था, ये जब न गुजरा था तब कहां था। कहीं तो होगा, गुजर गया तो अब कहां है। कहीं तो होगा, कहां से आया किधर गया है। ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है। और अब आइए सुनते हैं एक गजल, आवाज है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन साहब की।

अरे वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाहेगी अनुमति। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये बताना हम नहीं भूल सकते कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के

0: माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। ये कार्रवाई दक्षिण ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। इससे पहले अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी हमलों की निंदा की और इसे युद्ध विराम का उल्लंघन करार दिया। हांगकांग में U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम U20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week. Union Home Minister Amit Shah yesterday held a meeting to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Shah said that Narendra Modi government is expanding world-class sports infrastructure and state-of-the-art training facilities in India. He said, keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sports facilities are being developed in accordance with global standards. Ahmedabad would be hosting the 2030 Commonwealth Games and has officially submitted a bid for the 2036 Olympics. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a three-day visit to Karnataka, Goa and Keralam from today till 31st of this month. The Vice President will attend the global celebration marking 45 years of the Art of Living Foundation in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he will attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Devanagari, Karnataka. On 30th, Mr. Radhakrishnan will participate in the Statehood Day celebrations of Goa at Panaji and will also visit CSIR National Institute of Oceanography, Goa. The Vice President is also scheduled to inaugurate the Sri Industrial Park at Belthangdi and visit the Sri Kshetra Dharmasthala Manjutha Swami Temple in Karnataka on 31st of this month. Later on the same day, he'll visit Keralam to inaugurate the 140th Foundation Anniversary Celebrations of Deepika Malayalam Daily at Kottayam. Union

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर इस समय समय हुआ है रात्रि के 3:10। मैं पंकज आपके साथ इस शांत रात में, लेकिन अब शुरू होता है हमारा ही शो और इसमें आपके लिए मैं पूरे घंटे प्ले करूंगा ड्यूएट्स गाने। तो शुरुआत करते हैं दो गानों से और फिर इन दो गानों के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूं।

आज के धूमधड़ाके वाले गाने के सिंगर्स में जो हैं पुराने जमाने के गाने के जो हैं डाई हार्ट फैंस हैं, और उन सिंगर्स को तो बहुत ही मतलब अप्रिशिएट करते हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर अपने गानों से इन्होंने कमाल जो कर दिया है। हमराही शो की इस आधी रात में आपने बेताब मूवी का गाना सुना, शब्बीर कुमार और लता जी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और आर डी बर्मन का म्यूजिक था। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं पंकज आपके लिए इस पूरे घंटे प्ले करूंगा पुराने डुएट्स गाने, यानी बॉलीवुड के गोल्डन एरा के पुराने गानों का मजा लेंगे मैं और आप। तो अपने दिन की सारी बेकार की बातों को भूल जाइए जिन्होंने आपको टेंशन में रखा, थका कर रखा, और बस आप इन गानों का मजा लीजिए और मुझ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो मैं बातें आपसे करूंगा और आपके लिए जो गाने मैं प्ले करूंगा बस। और तो हाँ, बस इन दो गानों के बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूँ, बाकी मैं सोच लूँ और कौन कौन से गाने आपको अच्छे लगेंगे वो गाने आपके लिए मैं निकाल लेता हूँ। अभी के लिए सुनिए मैंने प्यार किया मूवी का ये गाना आपके लिए मेरी तरफ से।

विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आंगन की गली फिल्म से ये गाना था। और जितनी अच्छी ये पुराने गाने हैं उतनी अच्छी ये पुरानी फिल्में भी हैं। और मैं मेरा तो हमेशा एक से एक सीन रहता है कि फ्राइडे रात को या फिर सैटरडे रात को जो है आराम से अपना सारे काम खत्म करके उसके बाद फिर कोई पुरानी मूवी ऑनलाइन देखना, और सच में बहुत मजा आता है। 2-3 घंटे तो इतने प्यार से बीत जाते पता ही नहीं चलता। खैर मैं हूं पंकज आपके साथ हमराही शो में। और जब ये गाना चल रहा था ना कि सैया बिना घर सूना, मुझे ऐसा लगता है रिश्तों की वैल्यू बहुत ज्यादा करनी चाहिए। और जब हमारे अच्छे दिन चल रहे होते ना और उस समय कोई अगर आपकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाए तो सच मानिए उस हाथ को ना थाम लेना चाहिए, लपक लेना चाहिए। क्योंकि देखिए रिश्ते बहुत मिल जाएंगे लेकिन रिश्तों में प्यार मिलेगा या नहीं ये मुद्दे की बात है। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और अगर आपको प्यार मिले तो खुद को खुश नसीबों में गिन लीजिए।

देवान फिल्म का गाना आपने सुना, पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में अजीज कैसी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। ये गाना चल रहा था, एक बार सोच रहा था कि आज रिश्ते नाते जो हैं वो तिनकों की तरह बिखर रहे हैं और जाने मन में बसा प्रेम जो है वो लोगों के कहां खो गया है। अहंकार जो है संबंधों में दीमक का एक तरह से काम करता है और वैसे भी रिश्ते नाते में कहते हैं ना कि जो सह गया वो रह गया। हर बात पर रिएक्ट करना भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ खट्टी बातें ना सिर्फ मन को कुछ देर परेशान करने के लिए लोग कह जाते हैं। उनका उद्देश्य आपको खोना नहीं होता बल्कि समझाना होता है कि भाई जो हम कहना चाहते हैं वो आप समझो। हाँ, तरीका थोड़ा तल्ख हो जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो हर बात पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, कहते ना कि हर बात पे मुंह बना लेना जरूरी नहीं है। हम राही शो में मैं हूं पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और जब भी कभी आपको अपने साथी पर तैश आए ना तो ये भी जरूर सोचिएगा कि यही इंसान है जिसने मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ भी किया है। तो बाकी आप जो है ऐसे ही आप गाने सुनते रहिए। और हाँ, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले घंटे सुबह 4:10 पर हमरा ही शो का जो ये है ये आखिरी गाना है, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा सुबह 4:10 पर अरुणिमा शो में। तो अभी के लिए आप इस गाने का वो एंजॉय करिए और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी बस ऐसे ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। वे कर्नाटक के दावणगेरे स्थित यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थंगडी स्थित सीआरआई औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। वे केरलम के कोट्टायम में दीपिका मलयालम दैनिक के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज से शुरू हो रहे अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान शिलांग में एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। वे इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री मांडविया इस दौरान युवा कार्यक्रम और खेल अवसंरचना विकास तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे युवा कार्यक्रम विभाग के एक विचार विमर्श सत्र को भी संबोधित करेंगे। कल श्री मांडविया मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ राज्य की राजधानी में 132 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर को 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में भी देखा जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल

0: नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a three-day visit to Karnataka, Goa and Kerala from today till 31st of this month. The Vice President will attend the global celebration marking 45 years of the in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he'll attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Devanagari, Karnataka. Tomorrow, Mr. Radhakrishnan will participate in the Statehood Day celebrations of Goa at Panaji and will also visit CSIR, National Institute of Oceanography in Goa. The Vice President is also scheduled to inaugurate the Sri Industrial Park at Belthangandi and visit the Sri Chetra Dharmsthala Manjuthana Swami Temple in Karnataka on 31st of this month. Later on the same day, he'll visit Kerala to inaugurate the 140th Foundation Anniversary celebrations of Deepika Malayalam Daily at Kottayam. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate, COET UG, 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of the next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid al-Adha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, coet.nta.nic.in. American and Iranian negotiators have agreed on the framework of a memorandum of understanding for a 60-day ceasefire extension, but the deal still requires final approval from President Donald Trump, U.S. officials have confirmed. The agreement, first reported by U.S. media outlet Axios, would bring de-escalation to a conflict that has rattled global energy markets and disrupted shipping lanes since Iran closed the Strait of Hormuz earlier this year. Under the draft MOU, the strait would reopen to unrestricted commercial traffic, meaning no tolls and no interference, and Iran would be required to clear all mines it deployed in the waterway within 30 days. In turn, the U.S. would proportionally lift its naval blockade on Iranian ports and issue sanctions waivers, allowing Tehran to sell oil freely. The MOU also includes a formal Iranian commitment not to pursue a nuclear weapon.

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं पंकज हूं आपके साथ और अब शुरू होता है हर सुबह की तरह अरुणिमा कार्यक्रम। और अब मैं आपसे मिलता हूं इन दो गानों के बाद, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में इस गाने के साथ।

जगजीत सिंह जी की आवाज में ये सुकून देने वाली गजल आपने सुनी, और फ्रॉम द एल्बम तुम तो नहीं हो, इसे लिखा था बशीर बद्र साहब ने। इस गजल की एक लाइन जो है मेरे दिल को बहुत ज्यादा छूती है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, चले भी आओ मुद्दत हो गई है। हाय, और आप समझ ही गए होंगे कि मैंने बशीर बद्र जी की लिखी हुई इस गजल की दो लाइनों को क्यों कहा। कल यानी 28 मई 2026 को भारतीय शायर बशीर बद्र जी ने दुनिया से विदा ले ली। एफएम गोल्ड पर भी आपने आज उनके बारे में बातें सुनी, उनकी लिखी हुई गजलें सुनी और उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। वैसे तो देखिए, जीवन का एक दिन समापन होना ही है हम सबका, और कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है, कोई अचानक जाता है, लेकिन जब ऐसे शायर संसार से रुक होता ही है। एक से बढ़कर एक गजलें लिखी बशीर बद्र जी ने। 91 साल की एज में बशीर बद्र जी जो है डिमेंशिया बीमारी से जूझ रहे थे और उन्होंने फिर कल अपने घर पर अंतिम सांस ली। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं पंकज आपके साथ अरुणिमा शो सुन रहे हैं आप। आकाशवाणी परिवार भी बशीर बद्र जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनकी लिखी हुई गजल की

ये लाइन भी मुझे बहुत गजब की लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, जुबान सब समझते हैं जज्बात की। खैर, और अब बशीर जी की लिखी हुई इस गजल का लुत्फ लीजिए तलत अजीज जी की आवाज में, और इस गजल के बाद फिर उसके बाद आप एक गाना सुनेंगे। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ सिर्फ अरुणिमा शो में।

रूपतिना मस्ताना मूवी से ये गाना था। किशोरदा और लदाची की आवाज में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था। सबको पता ही है कि कल यानी 28 मई को मशहूर और हर दिल अजीज शायर बशीर बद्र जी हमारे बीच नहीं रहे और मैंने भी आपके साथ उन्हें अभी याद किया। आप सुन रहे हैं अरुणिमा मेरे यानी पंकज के साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। बशीर बद्र जी की लिखी हुई हर गजल जो है वो बहुत शानदार और अपने आप में मायने लिए हुए है। एक गजल है ना, आपको उन्हीं की लिखी हुई सुनाता हूँ जिसका टाइटल है यूं ही बेसबब ना फिरा करो। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको सुनके, बहुत अच्छी है, बहुत डीप मीनिंग्स हैं इसके। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है उसे चुपके चुपके पढ़ा करो, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो, अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो, मुझे इश्तहार सी लगती हैं ये मोहब्बत की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो, कभी हुस्ने पर्दा नशी भी हूं जरा आशिकाना लिबास में, जो मैं बन संवर के कहीं चलूं मेरे साथ तुम भी चला करो, ये खिजां की जर्द सी शाम में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है इसे आंसुओं से हरा करो, नहीं बेहिजाब वो चांद सा की नजर का कोई असर नहीं, उसे इतनी गर्मी ये शौक से बड़ी देर तक ना तका करो। कौन ना फिदा हो जाए इस पर। और मुझे तो सबसे बहुत प्यारी जो मुझे लाइनें लगी वो तो ये थी कि मुझे इश्तहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो, कहाँ सुन पाते हैं लोग दिल की बातें। खैर अब सुनिए विशाल भारद्वाज की आवाज़ में ये गाना, इसे जो है बशीर बद्र जी ने लिखा था, तो आप सुनिए और फिर मैं आपसे मिलता हूँ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हसीना से यूं मुलाकात हो गई

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

लाइफ की सिचुएशंस को बस इतना भी गंभीर नहीं लेना चाहिए जितने में हम अपने जो है जिंदगी के बारे में सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा वैसे मैंने आपसे शायद पिछले घंटे आपसे बात की थी कि पता नहीं मैं आज कौन सी मूवी देखने वाला हूँ ऑनलाइन फ्राइडे, तो अभी तक तो मैं कंफ्यूज था लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अजनबी 1974 में रिलीज हुई इसी मूवी को आज रात में देखूंगा। आज या तो आज रात को देखूंगा टाइम मिला तो, बाकी कल देखूंगा। पुरानी फिल्मों का जादू सच में एक अलग ही होता है। और ये इस गाने में आपने देखा कि जीनत अमान जी जो है वो कितनी बला की खूबसूरत लग रही है। खैर मैं हूं पंकज आपके साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर शो है अरुणिमा। जीवन जो है सुख दुख का संगम है और सुख का मजा भी थोड़ी कठिनाई झेलने के बाद ही आता है, जैसे तेज गर्मी के बाद बारिश का। वैसे भी दिल्ली में जो है थोड़ा सा मौसम, हल्का सा मौसम जो है ठंडा हुआ है अभी तो, थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर डेज आज थोड़ा सा हल्का मतलब थोड़ा सा ठंडा है। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूँ, आप ऐसे ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल, मैं पंकज आपके साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अभिमान फिल्म से लता जी की आवाज में ये गाना था, एस डी बर्मन का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य जो होता है हमारे तन और मन की खुशी होती है। हम गाने भी मन को खुश करने के लिए सुनते हैं और मन खुश तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। वैसे इस समय बाहर की ताजी हवा से भी हमारा शरीर जो अच्छा रहेगा। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप घर की खिड़की या अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो वो विंडो ओपन करके आप बाहर की ताजी हवा का मजा ले सकते हैं। वैसे भी आज मौसम जो है थोड़ा सा भी ठीक हुआ है, हल्का सा ठंडा हुआ है। बाकी अगला शो भोर सुहानी होगा यानी सुबह 5:10 पर, और इन गानों के बाद हिंदी और इंग्लिश में समाचार होंगे और फिर मैं आपसे मिलूंगा 5:10 पर। अभी के लिए सुनिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के अरुणिमा शो का ये लास्ट गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। वो कर्नाटक के दावणगेरे स्थित यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भी शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन कल पणजी के गोवा में स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड्डी स्थित CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। वो केरलम के कोट्टायम में दीपिका मलयालम दैनिक के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी बधाई दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज से शुरू हो रहे अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान शिलांग में एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। वो इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। कल श्री मांडविया मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ राज्य की राजधानी में 132.9 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर को 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में भी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

आसमान में भी धीरे धीरे उजाला हो चुका है। सुबह के 5:10 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं पंकज हूं आपके साथ और भोर सुहानी शो अब शुरू होता है। दो गानों के बाद आपसे मिलता हूं।

जिंदगी में जब कोई पसंदीदा शख्स आ जाए ना, तो मानो जैसे घुटन से भरे कमरे में ठंडी ताजी हवा आ गई हो, ऐसा होता है प्रेम का जादू। वैसे गानों का मैजिक भी मूड बदलने का काम करता ही है, और ये गाना था फ्रॉम द मूवी किसी से ना कहना, आशा जी की आवाज में। और पता है, आपने कभी नोट किया होगा कि सुबह सुबह जो गाना आप सुनेंगे ना, पूरा दिन आप वही गुनगुनाएंगे, और अगर नहीं भी गुनगुनाएंगे ना, अंदर ही अंदर वो गाना तब तक चलता रहेगा जब तक आप उसे गा नहीं लेंगे। ऐसा होता है। खैर, सुबह हो गई है, भोर सुहानी शो शुरू हो चुका है मेरे यानी पंकज के साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। सुबह के 5:22 हो चुके हैं और मैं स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ, आसमान जो है काफी मतलब अब तो काफी विजिबल हो जाता है गर्मी में, तो अब गर्मी तो खैर बहुत ज्यादा अपने चरम पर है, लेकिन अभी जो है, अभी प्रेजेंट में मौसम जो है थोड़ा ठीक है, इसलिए आप जब भी दिन में बाहर निकलें तो अपने साथ ठंडा पानी या नींबू पानी पीते रहने के लिए जरूर ले जाएं। और आपके लिए मेरे पास बर्फ से ठंडे गाने जिन्हें सुनकर आपको ठंडक मिलेगी, तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। ऐसे ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

पता है, मैं हमारे स्टूडियो की खिड़की से बाहर देखता हूँ तो इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं, इतने हरे भरे, मतलब आकाशवाणी में इतने पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छे मतलब लगता है। विंडो से देखो तो और भी अच्छा व्यू आता है। और ये बात मैंने इसलिए बोली कि अगर हमने प्रकृति और पानी को नहीं बचाया ना, तो सिर्फ अच्छे मौसम और पानी के वीडियोज जो हैं वो हमें यूट्यूब पर ही देखकर काम चलाना पड़ेगा। और देखिए, आज 29 मई है, 1 तारीख को सोमवार है, यानी जून का महीना शुरू हो जाएगा। और जून जुलाई की झुलसाने वाली गर्मी में जो है, हम सावधानी से पानी का इस्तेमाल करें, बिजली बचाएं और अपने घर के आसपास और अपने घरों में भी खूब सारे पेड़ पौधे और जो है हरियाली लगाएं। अब पता है, जब हमारे घर में खूब सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं तो एक तो वो ठंडा रहता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में भी है, एक नीम का, एक आम का है और एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है, देखकर ही बहुत सुकून मिलता है।